सुप्रभात। मीडी वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के ठीक 5:48 और 30 सेकंड हो रहे हैं। हम हाजिर हैं आपकी सेवा में पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: प्रत्येक मनुष्य की जीवन यात्रा में चार अवस्थाएं आती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था। इन चारों अवस्थाओं में हमारे जीवन की या किसी भी युवा की युवावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। युवा किसी भी समाज का भविष्य होते हैं और युवावस्था की युवा शक्ति किसी भी समाज की रीढ़ होती है। प्रत्येक युवाओं को भविष्य का प्रतिनिधि माना जाता है। समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। एक युवा का प्रथम दायित्व बनता है कि वह अपने राष्ट्र, समाज और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करे, अपने ज्ञान, विवेक तथा सामर्थ्य का लाभ समाज को प्रदान करे। ऊर्जा से परिपूर्ण अपनी युवावस्था को देश की प्रगति के लिए समर्पित करें। किसी भी राष्ट्र की युवा शक्ति समाज को तभी सही दिशा में ले जा सकती है जब वह स्वयं सही दिशा की ओर अग्रसर हो। युवाओं में धैर्य की कमी को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना भी अनुचित है, क्योंकि आज की तेज रफ्तार जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए युवाओं के मन में थोड़ी बेचैनी और अधीरता का होना भी आवश्यक है, तभी वे जल्द से जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। कई ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने जटिल परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी में गलतियों से सीखने और स्वयं को सुधारने की क्षमता भी है। हमारे समाज में किसी भी युवा की युवावस्था की आयु 21 से 35 वर्ष तक मानी जाती है। युवावस्था सबके जीवन में आती है और मात्र एक बार आती है। जोश और ऊर्जा भरे बड़े सपने को संजोने के लिए युवावस्था हमारे जीवन का स्वर्णिम काल है। यही समय है जब हम अपने समग्र विकास के लिए अपने विचारों को मूर्त रूप दे सकते हैं। युवावस्था जीवन की प्रकृति प्रदत्त वह अवधि है जो शक्ति और क्षमता के साथ आगे बढ़ती है, परंतु जीवन पर्यंत शारीरिक और मानसिक रूप से युवा बने रहना या युवावस्था को बनाए रखना एक चुनौती है। आप हम सभी जिस वर्तमान युग में रहते हैं, जहां दिन प्रतिदिन तेजी से बदलती जीवन शैली में अपने

0: अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मन से युवा और तन से युवावस्था में बने रहने की चुनौती को स्वीकार करना अति महत्वपूर्ण है। फिर भी हमारे जीवन के हर दिन के साथ साथ हमारी उम्र तो बढ़ती ही जाती है। यद्यपि हमारे आसपास की दुनिया की तेज गति हमारी उम्र को तेजी से बढ़ाती है, लेकिन यदि हम अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति से अपनी युवा शक्ति को जागृत रखेंगे, तभी हम आज की भागती दौड़ती दुनिया में खुशनुमा जीवन जीने का आनंद ले सकते हैं। कहते हैं, आप जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। आप अपनी बढ़ती उम्र में भी सदैव ऐसे जीवन की कल्पना करें जो युवा सोच और जोश से भरा हो। आप स्वयं को हमेशा उन परिस्थितियों में क्षणों या पलों में रखकर जीवन जिए जैसे कि आप अपनी युवावस्था में रहे थे। चूंकि हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां हमारे मन मस्तिष्क द्वारा संचालित होती हैं तथा संरक्षित रहती हैं, अतः अपनी सोच सदा सकारात्मक रखें। नकारात्मक और सकारात्मक सोच का सीधा प्रभाव हमारी शारीरिक स्थिति पर पड़ता है। कहते भी हैं, मन युवा तो तन युवा। युवावस्था सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिकता की भी होती है। यदि हम मन से सृजनात्मक और शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तो बढ़ती उम्र में भी हम युवावस्था का ही संचालन करते हैं। युवावस्था ईश्वर का अनमोल वरदान है, इसे धरोहर समझकर सुरक्षित रखना चाहिए। प्रकृति के साथ सदा सहयोग करें, अर्थात नियमित योगाभ्यास तथा नियमित दिनचर्या को अपनी बढ़ती उम्र का हिस्सा बना लें। आहार सात्विक और शुद्ध लें। घर में माता पिता को अपने बच्चों के साथ हम उम्र की तरह, अर्थात पिता को पुत्र से तथा माता को पुत्री से मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए और उनके साथ अपने युवावस्था में बिताए यादगार पलों को साझा करते रहना चाहिए। अपने करियर की प्रगति पर ध्यान देने के साथ साथ आज के युवा को यह भी समझना होगा कि उन्हें समाज को भी कुछ लौटाना है। वर्तमान में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे समाज जूझ रहा है। यह सच है कि हमारा जीवन और परिस्थितियां अपने हिसाब से चलती हैं, फिर भी अपनी व्यस्त दिनचर्या में से युवा बेशक समय न निकाल पाए, लेकिन वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति स्वयं को जागरूक तो रख ही सकते हैं।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य सूचना, माफ कीजिएगा, कार्यक्रम कृषि सूचनाएं में आज हम सुनेंगे बकरियों में निमोनिया रोग। जानकारी दे रहे हैं श्रीनिवास सहाय।
2: किसान भाइयों नमस्कार। पशुओं में खास करके बकरियों में श्वास संबंधी बीमारी होती है जिनमें कि निमोनिया प्रमुख है। यह रोग बकरियों और बकरियों के बच्चों के फेफड़े और श्वास नली को प्रभावित करती है। यह रोग बकरी एवं बकरी के बच्चों में मृत्यु दर बढ़ा देता है, जिसके फलस्वरूप किसानों को और बकरी पालकों को काफ़ी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। निमोनिया रोग जो है बकरियों में कई कारणों से हो सकता है। जीवाणु जनित निमोनिया हो सकता है, और वायरस जनित निमोनिया हो सकता है, माइकोप्लाज्मा जनित निमोनिया हो सकता है, फफूंद और परजीवी से भी निमोनिया हो सकता है। जीवाणु जनित निमोनिया का रोग प्रमुख रूप से पास्चुरल्ला हीमोलाइटिका के द्वारा होता है। यह जीवाणु सामान्यतः बकरियों की श्वास नली में पाए जाते हैं। इससे 20% बकरियों की मृत्यु और 50% बकरियों के कमजोर होने का कारण देखा जाता है। यह बीमारी अधिकतर उन बकरियों में पाई जाती है जिनका वातावरण बदल दिया गया है या भोजन उचित मात्रा, संपूर्ण भोज्य तथा गुणात्मक भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया है, या मौसम में अत्यधिक तथा तेजी से मौसम का बदलना आदि होना इस बीमारी को बढ़ावा देता है। बकरी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और बकरियों के आवासीय वातावरण का उचित प्रबंध न होने से भी इस बीमारी का प्रकोप हो सकता है। प्रायः यह देखा गया है कि शुरू में वायरस क्लैमाइडिया तथा माइकोप्लाज्मा के प्रभाव से निमोनिया रोग की बकरियों में शुरुआत होती है और बाद में जीवाणु इसके कारण बन जाते हैं, क्योंकि जीवाणु का समावेश हो जाता है तब निमोनिया एक खतरनाक रोग का रूप धारण कर लेता है। इसी तरह माइकोप्लाज्मा कैपरी कैपरिकोलम तथा एग्लैम्सिया भी बकरियों के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की हानि होने पर निमोनिया रोग को जन्म देते हैं। परजीवी जीवाणुओं में के द्वारा भी यह रोग होता है और यह पहाड़ों में बहुत पाया जाता है। निमोनिया के रोगाणु, क्योंकि प्रायः श्वास नलिका के द्वारा इस बीमारी के जीवाणु अन्य बकरियों को सूंघने, छींकने और साथ में रहने से फैलता है।

0: जीवियों से जनित निमोनिया के अंडे बकरियों की मल या मैगनी के द्वारा घास तथा जमीन पर पलते रहते हैं, और एक स्वस्थ बकरी चरते समय घास के द्वारा इन्हें खाकर बीमार हो जाती है। बीमार बकरियां जो होती हैं निमोनिया से, उनकी सांस छोटी और तीव्र हो जाती है और कफ भी आ सकता है। नाक से पानी या सफ़ेद पतला पदार्थ निकलता है। यदि फेफड़ों का परीक्षण किया जाए तो सांस के समय खरखराहट की आवाज़ सुनी जा सकती है। बकरियां निमोनिया के अन्य लक्षणों में खाना पीना छोड़ देती हैं। उनका तापमान सामान्य से बढ़कर 105 से 106 डिग्री फॉरेनहाइट तक बढ़ जाता है। इन बकरियों के खून के परीक्षण से श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तथा वायरस जनित रोग में इनकी संख्या घट जाती है। खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाती है। फेफड़ों में सूजन, जिगर में सफ़ेद कीड़े धागे के समान पड़ जाते हैं, जिससे बकरी में या बकरियों के समूह में निमोनिया हो जाए उसके लिए कुछ रोकथाम के उपाय करने चाहिए। क्योंकि यह जीवाणु जनित रोग है इसलिए जल्दी ही पता लग जाता है। इसके लिए एंटीबायोटिक दवाओं से उपचार किया जाए तो इस रोग का निदान हो सकता है। वायरस जनित निमोनिया में एंटीबायोटिक देने से दूसरे सामान्य जीवाणुओं को बढ़ने से रोका जाता है, इसलिए उचित दवा का चयन अधिक महत्वपूर्ण होता है। निमोनिया को एम्पसलीन स्ट्रेप्टोपैसलीन के द्वारा रोका जा सकता है। निमोनिया के रोकथाम के लिए बरसात से पहले सुरक्षात्मक HS का टीका लगवाना चाहिए। क्लैमाइडिया जनित निमोनिया पेंसिलिन का अच्छा प्रभाव होता है, इसलिए पेंसिलिन का प्रयोग करना चाहिए। माइकोप्लाज्मा जनित निमोनिया में टाइलोसिन या ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन उपयोगी है। वायरस जनित निमोनिया में टीके या एंटीबायोटिक्स अन्य जीवाणुओं के समावेश होने से रक्षा करता है। परजीवी जनित निमोनिया में टीके बकरियों के बच्चों में 1000 पावर का खुराक मिलाकर खिलाया जा सकता है।
1: बकरियों में निमोनिया रोग, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे श्रीनिवास सहाय। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है और ये समय है हिंदी में समाचार का। इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
3: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडी वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं देश वंदना से।

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में आगे प्रस्तुत है कुछ भजन।

स्थिति से दूसरों को कितना सुकून मिलता है, उसके शब्दों में कितनी संवेदना है और उसके व्यवहार में कितनी विनम्रता शामिल है। जिस तरह एक पेड़ अपने फल और छांव का हिसाब नहीं रखता, उसी तरह सच्चा इंसान अपनी अच्छाइयों का प्रदर्शन नहीं करता। वो दूसरों के जीवन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करता है, थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश करता है,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरित मानस से पाठ, मुख्य स्वर है राजन साजन मिश्र का।

श्री रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने देववाणी संस्कृत में रचित मंगलाचरण से किया है। इन छंदों में शंकर तथा श्री राम सहित अन्य देवताओं की स्तुति की गई है। प्रथम सोपान बालकांड के आरंभ में सरस्वती, गणेश, पार्वती, शंकर, कवीश्वर वाल्मीकि तथा हनुमान की वंदना की गई है। द्वितीय सोपान अर्थात अयोध्याकांड गुरु रूप श्री शंकर तथा नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री राम की स्तुति से आरंभ होता है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा, ललाट पर द्वितीय का बालचंद्र, कंठ में हलाहल विष तथा वक्षस्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित हैं। भस्म से विभूषित शरीर, देवताओं में श्रेष्ठ

संहार करता तथा भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापी कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले ऐसे देवाधिदेव महादेव से गोस्वामी तुलसीदास अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भक्त कवि की कामना है कि रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र, जिनका मुखमंडल ना तो राज्याभिषेक से प्रसन्न हुआ और ना ही जो वनवास के दुख से मलिन हुआ, सदा मंगलदायी हों। नीले कमल के समान श्याम वर्ण और कोमल अंग हैं जिनके, सीता जी जिनके वाम भाग में अवस्थित हैं, जिनके हाथों में अमोघ वाण और धनुष सुशोभित हैं, उन रघुवंशनाथ का तुलसीदास नमन करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस से पाठ। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य सूचनाएं। विषय है महिलाओं के लिए योग। इस विषय पर सीमा गुप्ता से बातचीत कर रहे हैं अनिल कुमार तिवारी।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम की मेहमान हैं सीमा गुप्ता, जो योग प्रशिक्षक हैं। हम इनसे बातें करेंगे महिलाओं के लिए योग। जरा हमारे सुनने वालों को बताएं कि महिलाओं के लिए योग कितना ज़रूरी है। उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो रहन सहन है, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनके आलोक में।
2: सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आजकल अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिला जो होती है वो किसी भी परिवार की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है और उन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो ऐसे में उनका स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। और आजकल तो महिलाएं घर के साथ साथ बाहर भी बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, तो ऐसे में उनके फिट रहने के लिए योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। क्योंकि घर में रहते हुए सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए योग किया जा सकता है। और इस तरह से मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर वो योग का नियमित अभ्यास करती हैं तो वो ऊर्जावान रहेंगी और साथ ही साथ वो अपने दायित्वों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगी।
1: जी अच्छा, सीमा गुप्ता जी ये बताएं कि कुछ महिलाएं तो होती हैं कि वो कम उम्र की हैं, घरेलू कामकाज देखती हैं, कुछ कामकाजी महिलाएं हैं जो काम के लिए बाहर जाती हैं, साथ ही उन्हें घर की भी जिम्मेदारियां उनकी होती है, कुछ अधेड़ हो रही महिलाएं होती हैं जिनकी जिम्मेदारियां तो होती ही हैं, साथ ही वो कई सारे जो आजकल स्ट्रेस से आधारित जो रोग होते हैं उसकी शिकार होती हैं, तो इन महिलाओं को अलग अलग कुछ आप सलाह देना चाहेंगी किस प्रकार के योग इनके जीवन को आसान बनाने में, सहज बनाने में मदद कर सकते हैं।
2: सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि जो कम उम्र की महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा जो संबंधित प्रॉब्लम होता है वो मासिक धर्म से संबंधित होता है। मासिक धर्म के समय उनके पेट में दर्द का होना, चिड़चिड़ापन होना, ये बहुत सारी समस्या

0: देखने को मिलती है, तो ऐसे में योग बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। दूसरी जो अधेड़ उम्र की महिलाएं हैं, उनमें उम्र के साथ साथ तो शरीर और में और मन में बहुत सारे परिवर्तन होते ही हैं, साथ ही साथ मेनोपोज जैसी समस्या का भी सामना उनको करना पड़ता है, जिसका कि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से योग इसमें भी काफी मददगार साबित हो सकता है। और जो बीच की उम्र की महिलाएं हैं, जो कि कामकाजी हैं और साथ ही साथ घर बाहर दोनों का उन पर उत्तरदायित्व तो है, तो वैसे लोगों के लिए भी योग बहुत ही कारगर साबित हो सकता है।
1: अच्छा, कुछ ऐसे ऐसे रोग हैं, विशेष रोग जो महिलाओं को होते हैं, उससे वो ग्रसित होती हैं, लेकिन योग उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो जरा बताएं।
0: जी, महिलाओं से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, जैसे आजकल PCOS, PCOD, ऐसी समस्याएं, मासिक धर्म का रेगुलर नहीं रहना, उसमें उतार चढ़ाव का होना, या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर भी महिलाओं में देखने को मिल रहे हैं, जैसे थायराइड की समस्या है। तो महिलाओं में जो विशेषकर जो थायराइड पाए जाते हैं, उसमें उनके साथ साथ मोटापा का भी लक्षण देखने को मिलता है। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो महिलाओं में विशेषकर देखने को मिलती हैं। तो योग के द्वारा हम शरीर, मन और आत्मा तीनों में संतुलन स्थापित करके एक अच्छा जीवन, चाहे वो किसी भी एज की महिला हो, एक अच्छा जीवन में निश्चित तौर पर जी सकती हैं।
1: तो कौन-कौन से ऐसे आसन या योगासन हो सकते हैं जो महिलाओं को अच्छा जीवन, सहज जीवन, संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकते हैं? जरा संक्षेप में बताएं।
0: कुछ तो सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए जो कि उम्र के साथ साथ उनके शरीर के लचीलेपन को बनाए रखें, उम्र का प्रभाव उन पर नहीं हो। साथ ही साथ पूर्ण तितली आसन जैसे हो गया, मार्जारी आसन, गोमुखासन, कुछ आगे और पीछे झुकने वाले आसन किए जाने चाहिए। अगर संभव है तो वो सूर्य नमस्कार भी कर सकती हैं। और साथ ही साथ चक्की चालनासन, उत्तान पादासन, नौकासन, साइकिल चालन, ऐसी कुछ विशेष आसन हैं जो कि महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं।
1: जी, कितनी देर करना चाहिए प्रतिदिन? कम से कम कितनी देर योगासन
0: इसमें
1: करना
0: जहां
1: चाहिए?
0: तक समय का ताल्लुक है, तो मैं यही कहूंगी कि आप समय चाहे जितना भी दें, बट रेगुलर रहें। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन 1 घंटे कर लिया और बाकी समय में मैंने बिल्कुल उसको नील कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी होनी चाहिए इसमें।
1: नियमित होना चाहिए। सीमा गुप्ता जी, आपने महिलाओं के लिए योग विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
2: महिलाओं के लिए योग, इस विषय पर जानकारी दे रही थी सीमा गुप्ता। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हाल चाल। सात बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे गजल, कलाकार होंगे समर्थ नाहर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे सुबह 7:25 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से बांसुरी वादन।

दोपहर 12 बजे का समय है। कार्यक्रम बिहार के लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कमलेश प्रसाद सिंह और धनंजय पांडे से कुछ भोजपुरी लोक गीत। महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी जगत का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर।

युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होगा शाम 4:30 पर। मैथिली कार्यक्रम भारती आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल प्रस्तुत करेंगे शाम 6:30 पर। और खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई कृषि संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं शाम 7:00।

0: रात्रि 8 बजे प्रस्तुत करेंगे सरकार के 12 साल पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम, और रात्रि 10:30 से 11 बजे तक आप आनंद उठा सकते हैं पुनः फिल्म संगीत का। श्रोताओं, ये थे आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, इसे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपति भवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासी परिषदोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढ मापन योग्य परिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44,00,000 नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं एनडीए सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ।

0: विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदनन्तरं संपूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन संदेशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मोर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24-2000 वर्षस्य अथ च 25-2000 वर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
0: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के

0: बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, हालचाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 जून और 11 जून को मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस की बात सबसे पहले करें तो आज मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले यानी अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। बच्चों और युवाओं में खेल कूद के महत्व को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसके अलावा भारत और विश्व इतिहास में 11 जून की कुछ प्रमुख घटनाओं की बात करें तो आज ही के दिन 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। 1897 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थियां 1964 में आज ही के दिन देश भर में विसर्जित की गई थी। तो ये तो थी कुछ इतिहास की बातें, जानकारियां और भी हैं तो उसके बारे में हम बातचीत जरूर करेंगे आगे, लेकिन पहले सुनते ही एक प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में।

श्रोताओं, अगर हम अपने शहर की गतिविधियों पर एक नज़र डालें तो हमारे पास एक महत्वपूर्ण सूचना है। मैथिली की शीर्षस्थ प्रतिनिधि संस्था चेतना समिति दिनांक 11 और 12 जून 2026 को महाकवि यात्री, जिन्हें हिंदी में नागार्जुन के नाम से भी जानते हैं, इनके जन्मदिन पर साहित्य अकादमी के साथ संयुक्त तत्वावधान में द्विदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। ये आयोजन प्रातः 10:30 बजे से मिथिला भवन राजेंद्र नगर रोड नंबर 12 पटना में किया जा रहा है, जिसमें कि मैथिली के अनेक साहित्यकार के साथ साथ साहित्य अकादमी के सचिव श्री वरुण गुलाटी भी भाग लेंगे। तो साहित्य से जुड़े लोग या आप अगर इस समारोह में, इस आयोजन में शामिल होना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। प्रातः 10:30 बजे मिथिला भवन राजेंद्र नगर रोड नंबर 12 में। बता दें कि 11 और 12 जून को इसका आयोजन किया जा रहा है। कवि नागार्जुन पे यदि हम एक दृष्टि डालें तो मूल रूप से इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये आधुनिक हिंदी और मैथिली साहित्य के प्रमुख स्तंभ और जनकवि थे, जिनका जन्म 30 जून 1911 को उनके ननिहाल यानी बिहार के मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। कवि नागार्जुन अपनी प्रखर सामाजिक चेतना और जनवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। मैथिली साहित्य में इनकी कई रचनाएं हैं। इन्होंने यात्री उपनाम से विपुल लेखक किया था। इनकी कविताओं में आम जनता, मजदूर और किसानों की पीड़ा, व्यंग और करुणा का सजीव चित्रण दिखता है।

आशुतोष, खूबसूरत गाने के साथ ही हालचाल का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं गजल। कलाकार हैं सामर्थ नाहर।

सामर्थ्य नाहर से भी आप सुन रहे थे ये गजल। तबले पर संगत कर रहे थे डॉक्टर श्याम मोहन, हारमोनियम पर थे अभिषेक पाठक और स्पेनिश गिटार पर साथ दे रहे थे कुमार संभव। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से बांसुरी वादन, इनसे हम सुनेंगे राग ललित। तबले पर इनका साथ दे रहे हैं ऑनिंदो चटर्जी। तो लीजिए सुनिए राग ललित पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से।

0: अभी आप सुन रहे थे बांसुरी वादन राग ललित पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से। तबले पर इनका साथ दे रहे थे ऑनिंदो चैटर्जी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी 90 वर्ष का हो रहा है। 8 जून 2026 को आकाशवाणी की आयु 90 वर्ष पूरी हो रही है और इसके लिए हम आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं को और आकाशवाणी से जुड़े तमाम पदाधिकारियों कर्मियों को हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि यह आकाशवाणी वह एक माध्यम है कि गांव का एक गरीब भी देश की स्थिति परिस्थिति से वाकिफ होता है। और हम सब बचपन में रेडियो सुनते थे और यही रेडियो हमको देश और प्रदेश की सारी खबरें सुनाता। आज टेलीविजन के दौर शुरू हो गए हैं और आज भी टेलीविजन के दौर होने के बावजूद आकाशवाणी के खबरों की प्रासंगिकता उतनी ही है। इसलिए 90 वर्ष पूरे होने पर मैं आकाशवाणी परिवार को अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बधाई।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, अगला कार्यक्रम दिल्ली से।
4: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
8: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25

0: करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10.82 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है। जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कसूर है।
2: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों

0: ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
1: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमूज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
5: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
6: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने

0: कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
3: Measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling and creating sustainable employment opportunities across the country will also be deliberated upon in the meeting. The discussions will further focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure, convergence, partnerships and data-driven systems alongside a structured mechanism to track short, medium and long-term outcomes ensuring accountability and measurable impact. A key thrust will be on aligning state visions with the national vision on inclusive human development, reinforcing a unified and collaborative approach towards equitable and sustainable growth. The Governing Council of Niti Aayog will also focus on the recommendations of 5th National Conference of Chief Secretaries held during 26th to 28th December last year. With Anupam Mitra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a ray of renewed confidence. He said for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace. Mr. Modi said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government.

0: The findings are a further reminder to the rapidly rising global temperatures, writes the Indian Express. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sports persons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि एनडीए सरकार के गुज़श्ता 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत से बाहर लाए जाने से ये जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही समत में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशिक, मगरबी बंगाल, जेली हिमालयी खित्ते, उड़ीसा, केरला और माहे में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है। अमरीकी फौज ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। विकसित भारत के लिए टीम इंडिया के वजीर आजम के नजरिए के ऐन मुताबिक इस साल के मौजू विकसित भारत 2047 के लिए जामे इंसानी तरक्की में उम्र, खित्ते, सिन्फ या समाजी और माशी पस मंजर के कतई नजर हर भारतीय की बहबूद और तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई है। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में इस नजरिए को हकीकत की शक्ल देने और पूरे मुल्क में हर शहरी के लिए इसे ठोस और नुमाया नतीजे में बदलने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान चार बुनियादी पहलुओं के ताल्लुक से इंसानी फरोग के जामे फ्रेमवर्क पर गौरखोज करेंगे, जिसमें बुनियादी इंसानी सरमाया, मुस्तकबिल के लिए तैयार हुनरमंदी, रोजगार, छोटा कारोबार, सेहत, तग़ज़िया और बहबूद नीज सबके लिए मुसावात और वकार शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: आज की इस मीटिंग में पूरे मुल्क में कारोबार को फरोग देने, हुनरमंदी की वसत और रोजगार के पायदार मौके पैदा करने के इकदाम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा अमल दरआमद से मुतालिक खाका इज्तमाई तौर पर तैयार करने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसमें हुक्मरानी, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे, साझेदारी, डेटा पर मबनी निज़ाम, नेज मुख्तसर, दरमियाने और तवील मुद्दती नतीजों पर नज़र रखने का एक मुनज़्ज़म तरीक़ा कार शामिल होगा। इस तरह जवाबदेही और नुमाया असरात को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसके साथ साथ जामे इंसानी फरोग के ताल्लुक से कौमी नजरिए के साथ रियासतों के नजरियात को हम आहंग करने पर भी खास जोर दिया जाएगा, ताकि मसावियाना और ठोस तरक्की की समत मुत्तहदा और इज्तमाई हिकमत अमली को तकवियत मिल सके। नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल चीफ सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पर भी तवज्जो मरकूज करेगी, जो पिछले साल दिसंबर के अवाखिर

0: में हुई थी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के 140 करोड़ शहरियों की उमंगें यकीनन पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने हमेशा मुल्क के भरोसे को तकबीयत बख्शी है। जनाब मोदी कल शाम नई दिल्ली में वाकई भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2014 में उभरती हुई उम्मीद की किरण आज एक नए एतमाद की किरण में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोगों ने पहली बार इसका मुशाहिदा किया है कि जब हुकूमत सही नीयत के साथ चलाई जाती है तो तरक्की भी तेज रफ्तार से होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एनडीए हुकूमत के 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर लाया गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि हुकूमत की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और ये सही समत में गामजन हैं।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे वक्त में कि जब दुनिया भर के बड़े ममालिक इक्तिसादी मसाइल से दोचार हैं, भारत ने साल 2025-26 में 7.7% की शरह तरक्की हासिल की। उन्होंने कहा कि मुल्क 5 कमजोर मईशतों के जुमरे से निकल चुका है और अब दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक बन चुका है।
2: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना है।
1: ऐसे भारत का सफर है जिसने बड़े अहदाफ मुकर्रर करके और आलमी अदम इस्तेहकाम के हालात में भी इन अहदाफ को हासिल करने की अनथक कोशिश करके पहली बार अपनी मुकम्मल सलाहियतों को बरूए कार लाना शुरू किया। कल कौमी जमहूरी इत्तेहाद ने इकरारदाद मंजूर की जिसमें मुल्क के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर जनाब मोदी की तारीफ की गई है। बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली में एनडीए के कॉन्क्लेव में 35 सियासी पार्टियों के 75 मंदूबीन ने शिरकत की। नामानिगारों से बात करते हुए जनाब नवीन ने कहा कि एनडीए के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत के तई तशक्कुर का इजहार किया और तारीखी संग मील पर उन्हें मुबारकबाद दी और इसे मुल्क के 140 करोड़ लोगों के लिए फख्र का लम्हा करार दिया। जनाब नितिन नवीन ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत विकसित भारत के नज़रिए की समत आगे बढ़ रहा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के वज़ीर आज़म के रहनुमाई वाले मंत्र से मुल्क भर में लोग बाहम मुंसलिक हुए हैं। भारत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के वसूलों से तहरीक पाकर ज़बरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के उन्वान से एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम गरीबों की बहबूद के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
3: गुज़श्ता 12 साल के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और समाजी तहफ़ को मुस्तहकम करने के लिए कई अहम स्कीमें नाफिज की हैं। गरीबों को मकानात मुहैया करने पर मोदी हुकूमत ने खास तवज्जो दी है। खुराक की यकीनी फराहमी के शोबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज़्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए उड़ीसा के कालाहांडी की इंद्रामानी नायक ने बताया कि गरीब लोग इस स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं।
4: गरीब कल्याण अन्न योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं। अभी जो 5-5 किलो हमारा परिवार खूब खुश पूरा बहुत आराम से रह रहे हैं।
3: हिफ्जान सेहत से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी अवामी स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री

0: जन आरोग्य योजना इक्तिसादी तौर पर कमजोर कुनबों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज फराहम कर रही है। साथ ही जन औषधि केंद्रों से जेनरिक दवाएं कम कीमतों पर मुहैया की कराई जा रही हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के बारामूला के फैयाज अहमद ने बताया कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गरीबों को मुश्किल तरीन हालात के दौरान इलाज हासिल करने में सहूलत फराहम की जा रही है।
1: मैं एनडीए सरकार और मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सारी जो स्कीमें चलाई, जिसमें मुल्क के अंदर हिस्ट्री में पहली बार एक गरीब को सीधा बरह रास्त फायदा पहुंचा डिजिटलाइजेशन के जरिए। आयुष्मान भारत की बात करना चाहूंगा, मोदी जी की सरकार से पहले मुल्क में यह होता था, अचानक किसी की बीमारी का पता चलता था या बीमारी के टाइम जो ऑपरेशन सर्जरी तब्दील होती थी उन्हें या तो जमीन बेचनी पड़ती थी या घर की कोई कीमती शय बेच कर वो चीज़ों का पैसे का बंदोबस्त करके ऑपरेशन और बाकी चीज़ें कराने पड़ते थे। लेकिन जब से आयुष्मान भारत का स्कीम को मोदी जी ने लॉन्च करा है, तब से ये चीज पूरे मुल्क में नहीं है।
0: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा खवातीन को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन फराहम किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
2: इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी अपनी मेंबर कंपनियों के जरिए मगरबी बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है, जिससे रियासत की इक्तिसादी सलाहियत और तरक्की के इम्कानात में सनतों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी होती है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ब्रिजभूषण अग्रवाल की ज़ेर क़यादत सनती इदारे के एक वफद और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के दरमियान नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान इस तजवीज़ पर तबादले ख्याल किया गया। मज़कूरा ऐवानी तजारत ने कहा है कि मगरबी बंगाल में पुरउम्मीदी और मुस्बत रफ्तार का नया माहौल देखने में आ रहा है, जिससे माशी तरक्की की रफ्तार तेज करने में मदद मिल सकती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की और ओलंपिक्स खेल के बड़े मकासद मुतायन करने पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में मुनाकिदा एनडीए कॉन्क्लेव में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने नौजवान एथलीट्स की हुसूलियाबियों और भारत में खेलों की तेज रफ्तार तरक्की को उजागर किया।
3: भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये खाती और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है।
2: अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई खत्म कराने के लिए मुजाकरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बहरैन, कुवैत और उर्दुन में जहां अमरीकी फौजी मुतायन हैं, ईरान के हमलों के चंद घंटों बाद ये अमरीकी हमले हुए। ईरान के मीडिया ने मुल्क के जुनूब में बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब और किशिम जजीरे में धमाके होने की इत्तिला दी है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तंबीह की है कि ईरान को तातुल का शिकार मुजाकरात की कीमत चुकाना होगी, जबकि अक्वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे ने कहा है कि ईरान धमकियों और दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। इधर ईरान के पासदारान इनकलाब ने तेल टैंकरों और कमर्शियल बहरी जहाजों समेत हर तरह के जहाजों के लिए आबनाए हुरमुज के बंद होने का दावा किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरला, माहे, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के ज़ेली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज़ मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने और ओले गिरने का इम्कान है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
0: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तवील तरीन मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि यह भारत की तारीख में एक अहम संगे मील है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू समेत मुतअद्दिद ममालिक के सरकर्दा रहनुमाओं ने वजीर आजम को मुबारकबाद दी है। रोजनामा प्रताप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है कि जमीनी सतह पर कवानी

0: और पॉलिसियों का नफाज ही अच्छी हुक्मरानी की कलीद है। उन्होंने सिविल सर्विस में खवातीन की बढ़ती हुई नुमाइंदगी की भी सताइश की।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि एनडीए सरकार के गुज़श्ता 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत से बाहर लाए जाने से ये जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही सम्त में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशिक मगरबी बंगाल के ज़ेले हिमालयी खित्ते उड़ीसा केरला और माही में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। एक अंतराल के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
4: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
3: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: बाढ़ से बचने के उपाय। आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे शामिल। विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की आज हो सकती है घोषणा। प्रदेश के 5 कलाकारों को

0: वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के अधिकतर भागों में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान पटना, अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, सारण और वैशाली जिले में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए टीम इंडिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: ये के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्तमान में एनडीए गठबंधन 22 से अधिक राज्यों में सत्ता में है, जो देश के लगभग 75% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के उपचुनाव के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की घोषणा आज किए जाने की संभावना है। इन चुनावों के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। किसी भी उम्मीदवार के नाम वापस नहीं लिए जाने की स्थिति में विजय उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। 10 सीटों पर 10 उम्मीदवार होने के कारण सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। भाजपा ने इस चुनाव के लिए पवन सिंह, संजय

0: मयूख अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन की ओर से एक सीट पर राजद के सुनील सिंह उम्मीदवार हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग आज से 17 जून तक राज्य के सभी अंचलों में लंबित आवेदनों के निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाएगा। इस दौरान 46 लाख आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि पिछले वर्ष 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलाए गए महाअभियान के दौरान आवेदन लिए गए थे, हालांकि तकनीकी कारणों से इन आवेदन का निपटारा नहीं किया जा सका था। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। पटना उच्च न्यायालय में 7 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार इनमें 3 स्थायी और 4 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं। पटना उच्च न्यायालय की ओर से कॉलेजियम के तहत 11 अधिवक्ताओं के नाम भेजे गए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 7 नामों की अनुशंसा की है। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। प्रदेश के 5 कलाकारों को अकादमी के विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। वरिष्ठ अभिनेता सुरेश कुमार हज्जू, नाट्य निदेशक शिव नारायण झा और लोक कलाकार महेंद्र राम को राष्ट्रीय कला पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसके साथ ही युवा रंगकर्मी रोहित चंद्रा और लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव को युवा पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मोबाइल हूटर के माध्यम से अगले 3 घंटों में पटना, अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, सारण और वैशाली जिले में तेज आंधी के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि इन स्थानों पर आज सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के शेष स्थानों पर भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज के टेढ़ा गांच में सबसे अधिक 57.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नेपाल ने भारत से आम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि ये रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। मंत्रालय ने कहा है कि हालांकि नेपाल ने हाल ही में गर्म पानी से उपचार की आवश्यकता सहित कुछ आयात शर्तों में संशोधन किया है, भारत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन में निर्यात को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। इस बीच नेपाल सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि भारतीय आमों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार

0: पाल ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। श्री पाल ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 8,000 स्थानों पर अतिक्रमण की पहचान की गई है, जिन्हें जल्द ही हटा लिया जाएगा। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित फर्जीवाड़ा और जालसाजी मामले में मुंगेर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 15 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना और मुंगेर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये गिरफ्तारियां की गईं। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पटना में दर्ज दो मामलों में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए यह कार्रवाई की गई है। रोहतास जिला भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सासाराम स्थित हजरत बिजली शहीद की दरगाह पर चादर पोशी की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर एस जमशेद अहमद ने किया। किशनगंज मंडल कारा में सजायाफ्ता एक महिला कैदी उषा रानी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दहेज प्रताड़ना से जुड़े एक मामले में वो फरवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थी। जेल अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि महिला बंदी पिछले कुछ समय से मानसिक अवसाद से पीड़ित थी। अररिया जिले में भारत नेपाल सीमा पर दोनों देशों के बीच सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने और आपसी सहयोग को लेकर एसएसबी और नेपाल सुरक्षा बलों के बीच सामंजस्य बैठक आयोजित की गई। बॉर्डर एरिया मीटिंग में सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने पर सहमति बनी है। पटना जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इधर पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन और मोबाइल चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। इससे पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थीं। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, मध्यम वर्ग के लिए हर क्षेत्र में नए मौके। दैनिक जागरण ने राज्य में हुए टेंडर घोटाला मामले पर शीर्षक दिया है, ऋषु श्री के करीबी 3 अफसर गिरफ्तार, संजीव हंस फरार। दैनिक भास्कर की खास खबर है, बिहार में विकास की रफ्तार सुस्त पड़ी, सरकार ने पुल सड़क पर खर्च 38% तक घटाया, चुनावी साल में सब्सिडी पर 64% अधिक लुटाया। प्रभात खबर ने फीफा विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, फुटबॉल का महाकुंभ, एक बॉल पर नाचेगी दुनिया। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार सरकार की बैंकों को चेतावनी, सुधार न करने वाले बैंकों के सरकारी डिपॉजिट पर लगेगी रोक। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य के 94,29,000 पेंशनधारियों के खाते में पहुंचे 1,096 करोड़ रुपए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे शामिल। विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की आज हो सकती है घोषणा। प्रदेश के 5 कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के अधिकतर भागों में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के दौरान पटना, अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, सारण और वैशाली जिले में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, कई परिवारों का दर्द बन जाती हैं। इसीलिए बिहार परिवहन विभाग लेकर आया है एक नई पहल।
2: अब आम जन भी सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर कहीं दिखे 3 सवारी, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन,
1: तो फोटो या वीडियो भेजिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 पर या ईमेल करें कमांड कंट्रोल सेंटर बिहार @gmail.com पर।
2: आपकी शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई और आपकी पहचान रहेगी पूरी तरह गोप्य।

0: गोपनीय।
1: आइए मिलकर बनाएं सुरक्षित बिहार, स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

काल के ललाट पर, समय के कपाट पर कभी उभरा था एक प्रकाश स्तंभ, जो आज भी वैसा ही खड़ा है जैसा तब था। काल के थपेड़ों में कभी डूबा कभी उतराया, पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मूल मंत्र कभी न छोड़ पाया। जन जन से जोड़ा खुद को, बना प्रथम व्यक्ति से अंतिम व्यक्ति की वाणी, ऐसी है हम सबकी अपनी आकाशवाणी। साहित्य संगीत और कला को गर्भ में समेटे, लोक संस्कृति और लोक कलाओं को अपने तन पर लपेटे, गुजरी शताब्दी से दशकों तक इस देश की वाणी, मेरी अपनी आकाशवाणी अब और भी उन्नत और भी समृद्ध और भी प्रभावी हो गई है। समय की मृदुमंद मंथर गति में तिरता मेरा ये अपना संस्थान आज भी सुना रहा है अपना यशस्वी और तुमुल गान। 9 दशकों तक फैली

0: इस अद्भुत संस्था की अद्भुत यात्रा के कुछ लम्हों, कुछ पलों और एक छोटे से पड़ाव का साक्षी बना अदना बौना समय, जन जन की वाणी, इस महती महान आकाशवाणी को उसकी 90वीं जयंती पर करता हूँ शत शत नमन और अविरल वंदन। प्रार्थना है कि स्वीकार हो। शिवेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व सहायक निदेशक, आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। यह आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है। पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

चुकी तभी हमारी बोगी में कुछ लोग आकर पूछने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी ही मदर छूट गई थी? हमने हाँ में सर हिलाया। चलो हमारे साथ, तुम्हारी अम्मी दूसरी ट्रेन से आ रही हैं, घबराओ नहीं, हम लोग GRP से आए हैं। ट्रेन में जो अंकल थे वो भी हम लोग के साथ ही रहे। वो हमें ले जाकर बिठाया और चाय बिस्कुट मंगा कर दिया। हम लोग, ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उन्होंने बड़े ही प्यार से सर पर हाथ रख कर कहा, घबराओ नहीं बेटा, इंतज़ार करो, मम्मी आ जाएंगी। मेरी आँख से आंसू आ गए। धीरे धीरे करके वक्त कट रहा था, तभी ट्रेन वाले अंकल ने बताया, दूसरी ट्रेन आ गई है बेटा। फिर हम उधर ही देख रहे थे जिधर से सारे लोग आ रहे थे ट्रेन से। हमारी नज़र अम्मी को तलाश रही थी। तभी मेरी नज़र अम्मी पर पड़ी और वो भी परेशान सी चली आ रही थी।

0: फिर हम उधर ही देख रहे थे जिधर से सारे लोग आ रहे थे ट्रेन से। हमारी नज़र अम्मी को तलाश रही थी। तभी मेरी नज़र अम्मी पर पड़ी और वो भी परेशान सी चली आ रही थी। हम दोनों दौड़ गए और अम्मी अम्मी करके लिपट गए। अम्मी हम लोगों से लिपट कर रोने लगी, हम भी रोए जा रहे थे। क्या कहूँ, वो कैसा एहसास था जिन्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। देर तक इसी तरह हम लोग रोते रहे। ये लम्हा देखकर कुछ लोग रुक कर देखने लगे और पूछने लगे। जब उन्हें पता चला तो बहुत ही खुश हुए और कहने लगे, ऊपर वाले की मेहरबानी है, आपने कुछ भला ही किया होगा, अब रोए नहीं। अम्मी को लेकर हम लोग वेटिंग रूम में आए। जिन्होंने हमें ट्रेन से उतारा था वो अंकल भी आ गए और बहुत खुश हुए और कहने लगे, अब अम्मी को तंग नहीं करना, भाई का चेहरा तो देखने लायक था। सारे लोग हंस रहे थे। उस दिन को मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। जब आंखों के सामने वो मंजर याद आता है तो आंखें छलक पड़ती है। माँ की ममता ऐसी ही होती है, अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहती हैं। आज वो हमारे साथ नहीं हैं, मगर उनका प्यार और उनकी दुआ हमारे साथ है और हमेशा रहेगी। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हालात पेश आते हैं जिसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं है, मगर हो जाता है।
1: ममता, अभी आप समाप्त फरमा रहे थे ये अफसाना। अफसाना निगार थी ताजवर मुमताज। समय आज हम बात कर रहे हैं अल्लामा जमील मजहरी के बारे में। जमील मजहरी की शायरी का दायरा बहुत वसी है। उन्होंने इश्क व अरफान से लेकर समाजी मसाइल तक हर मौजू पर कलाम किया। मजदूरों के हकूक पर लिखी गई उनकी नज्म मजदूर हैं हम उर्दू शायरी में अपनी मिसाल आप है। वह मजदूरों की हालत इजार को इस तरह बयान करते हैं कि मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजबूर थे हम, मजबूर हैं हम, इंसानियत के सीने में रिश्ता हुआ एक नासूर हैं हम। दौलत की आंखों का सूरमा बनता है हमारी हड्डी से, मंदिर के दिए भी जलते हैं मजदूर की पिघली चर्बी से। हमसे बाजार की रौनक है, हमसे चेहरों की लाली है, जलता है हमारे दिल का दिया, दुनिया की सभा उजियाली है। दौलत की सेवा करते हैं ठुकराए हुए हम दौलत के, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, सौतेले बेटे किस्मत के। तो सामईन, इसी के साथ हम आपको अब लिए चलते हैं कलाम शायर की तरफ। आज अपने कलाम के साथ हैं निशात फातिमा।
2: गजल के चंद अशार आपकी समातों के नजर मतलब पेश खिदमत है। बात रखिए तो सोच कर रखिए, बात रखिए तो सोच कर रखिए, अपने लहजे को मोतबर रखिए। बात रखिए तो सोच कर रखिए, बात रखिए तो सोच कर रखिए, अपने लहजे को मोतबर रखिए। और शेर है तन्हा तन्हा तन्हा तन्हा मुसाफिरत कैसी, तन्हा तन्हा मुसाफिरत कैसी, हैं सफ़र में तो हम सफ़र रखिए, हैं सफ़र में तो हम सफ़र रखिए, और बात रखिए तो सोच कर रखिए। और शेर है इतनी जल्दी खुला नहीं करते, इतनी जल्दी खुला नहीं करते, ज़ब्त एहसास का हुनर रखिए। इतनी जल्दी खुला नहीं करते, ज़ब्त एहसास का हुनर रखिए, और सामने सर किसी के झुक जाए, सामने सर किसी के झुक जाए, सामने सर किसी के झुक जाए, शौक दुनिया न इस कदर रखिए, शौक दुनिया न इस कदर रखिए, और बात रखिए तो सोच कर रखिए। और शेर है आसमां आसमां सर बुलंद है तो क्या, आसमां सर बुलंद है तो क्या, अपनी हस्ती को बा असर रखिए,

आसमां सर बुलंद है तो क्या, अपनी हस्ती को बा असर रखिए। और मक्ता आपकी समात, हम सरापा निशात हैं हमको, हम सरापा निशात हैं हमको, जानो दिल में संभाल कर रखिए। हम सरापा निशात हैं हमको, जानो दिल में संभाल कर रखिए, और बात रखिए तो सोच कर रखिए, अपने लहजे को मोतबर रखिए। एक और गज़ल आपके पेशे खिदमत है, तवज्जो चाहूँगी। हो खफा मुझसे क्यों हुआ क्या है, हो खफा मुझसे क्यों हुआ क्या है, ऐ मेरी जान, ऐ मेरी जान, मसला क्या है। हो खफा मुझसे क्यों हुआ क्या है, ऐ मेरी जान, मसला क्या है। और शेर है, उसको देखा, उसको देखा तो ये हुआ मालूम, उसको देखा तो ये हुआ मालूम, अक्स क्या और आईना क्या है। उसको देखा तो ये हुआ मालूम, अक्स क्या और आईना क्या है। और शेर इस तरह है, बस उसे याद करके जीती हूँ, बस उसे याद करके जीती हूँ, जिंदगी जिंदगी जिंदगी इसके माँ सिवा क्या है। बस उसे याद करके जीती हूँ, जिंदगी इसके माँ सिवा क्या है। और शेर है, दिल ने उसको भुला दिया है जब, दिल ने उसको भुला दिया है जब, फिर ये आँखों से झांकता क्या है, फिर ये आँखों से झांकता क्या है, और हो खफा मुझसे क्यों हुआ क्या है। और शेर है, जीती मरती हूँ रोज़ किस्तों में, जीती मरती हूँ रोज़ किस्तों में, इससे बढ़कर मेरी सज़ा क्या है। जीती मरती हूँ रोज़ किस्तों में, जीती मरती हूँ रोज़ किस्तों में, इससे बढ़कर मेरी सज़ा क्या है। और मक्ता का शेर आपकी समात, सोचते हैं निशात हम अक्सर, सोचते हैं निशात हम अक्सर, प्यार क्या चीज़ है वफा क्या है, प्यार क्या चीज़ है वफा क्या है। और एक गज़ल तरन्नुम से पेश करना चाहूँगी।

आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म गानों का कार्यक्रम रसमंजरी। लेकिन उससे पहले एक संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रस मंजरी और कार्यक्रम में सुनते हैं पहला गाना श्रेया घोषाल की आवाज में, भूल भुलैया 3 फिल्म से।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं रसमंजरी कार्यक्रम में। लीजिए अगला गाना पेश है शिल्पा राव की आवाज में। पा फिल्म से ये गाना हमने लिया है जिसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और इनके बोल पर इस गाने की धुन बनाई है इल्ला या राजा ने।

विशाल मिश्रा, शिल्पा राव, विशाल ददलानी और शेखर रवि जैनी की आवाज में आप सुन रहे थे फाइटर फिल्म का गाना। और आइए सुनते हैं अगला गीत जुबिन नौटियाल की आवाज में, राबता फिल्म से अमिताभ भट्टाचार्य के बोले और संगीत है प्रीतम का।

आइए सुनते हैं अगला गाना राज 3 फिल्म से जावेद अली की आवाज़ में। गाने को लिखा है राशिद खान ने और संगीत भी है राशिद खान का।

रसमंजरी में आइए सुनते हैं अगला गाना राहत फतेह अली खान की आवाज़ में आजा नचले फिल्म से। इस गाने को हमने लिया है जिसे लिखा है जयदीप साहनी ने, संगीत है सलीम सुलेमान का।

आजा नचले इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। जयदीप साहनी के बोल पर इस गाने की धुन बनाई थी सलीम सुलेमान ने। श्रोताओं, इस गाने के साथ ही रसमंजरी का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में। आज हम आपको सुनवा रहे हैं समर्थ नाहर की आवाज में चंद गजलें। पेश है निदा फाजली की लिखी है गजल समर्थ नाहर की आवाज में। तबले पर संगत कर रहे हैं डॉक्टर श्याम मोहन।

समर्थनाहर की आवाज में चंद गजलें पेश है। निदा फाजली की लिखी गजल समर्थ नाहर की आवाज में। तबले पर संगत कर रहे हैं डॉक्टर श्याम मोहन, हारमोनियम पर हैं अभिषेक पाठक और इनके साथ स्पैनिश गिटार पर साथ दे रहे हैं कुमार संभव।

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं सामर्थ नाहर। आइए सुनते हैं इनसे अगली गजल, अहमद फराज के लिखी ये गजल। पेश है सामर्थ नाहर की आवाज में।

फैज़ अहमद फैज़ की लिखी ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे समर्थ नाहर की आवाज़ में, और इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी

0: 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय ठीक दिन के 11 बज चुके हैं। समय है फिल्म संगीत का, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
1: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी अस्तित्व के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार अध्यक्ष बिहार विधानसभा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवन साक्षी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरूने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी शून्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका अद्वितीय है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण भारत विविध बोलियों, लोक कलाओं, सांस्कृतिक संगीत, साहित्य को सहेजने तथा उसे नई पीढ़ी तक पहुँचाने में इसका योगदान अतुल्य है, जिसने हमारी क्षेत्रीय पहचान को वैश्विक मंच दिया है। डिजिटल क्रांति के आधुनिक दौर में भी आकाशवाणी ने खुद को निरंतर प्रासंगिक बनाए रखा है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि अद्वितीय संस्थान आगे की अपनी स्पष्टता, राष्ट्रभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा सी लगती है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाज में आइए सुनते हैं ऐ दिल है मुश्किल फिल्म का ये गाना। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत है प्रीतम का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं कमलेश प्रसाद सिंह और धनंजय पांडे।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान। गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार थे कमलेश प्रसाद सिंह और धनंजय पांडे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम नारी जगत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है।

0: इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
3: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

0: पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: नारी जगत सुनने वाले सभी प्यारी सखियों को रेडियो सखी गुंजन कुमार का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, बचपन जीवन का सबसे सुंदर, मासूम और सीखने का समय होता है। यह वह समय होता है जब बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं और अपने सपनों की उड़ान भरते हैं। लेकिन अफसोस बहनों, आज भी बहुत से बच्चे बाल मजदूर के शिकार हैं। बहनों, बाल मजदूरी एक सामाजिक बुराई और कानूनन अपराध है। हर बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अच्छे जीवन का अधिकार है। बाल मजदूरी इन अधिकारों का हनन करती है। बहनों, भारत में बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी करवाना अपराध माना जाता है। सरकार बच्चों को शिक्षा और बेहतर जीवन देने के लिए अनेक योजनाएं चलाती हैं, फिर भी समाज के सभी लोगों का सहयोग आवश्यक है। आपको बता दें बहनों, हर वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को बाल श्रम के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना और बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य दिलाने के लिए प्रेरित करना है। बहनों, अक्सर हम देखते हैं कि गरीबी, अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण बच्चों को काम पर भेज दिया जाता है। कुछ बच्चे दुकानों में, कारखानों, होटलों, खेतों और घरों में काम करते दिखाई देते हैं। इससे उनका बचपन छिन जाता है और वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। लगातार काम करने से उन्हें उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। बहनों, हमें समझना चाहिए कि बच्चे देश का भविष्य है। यदि वे पढ़ लिखकर आगे बढ़ेंगे तभी देश का विकास होगा। इसलिए बच्चों को काम पर लगाने की बजाय उन्हें स्कूल भेजना चाहिए। यदि कहीं बाल मजदूरी होती दिखाई भी दे रही है तो उसकी सूचना आप संबंधित अधिकारियों को देनी चाहिए। बहनों, बाल मजदूरी एक गंभीर अपराध है जो बच्चों के अधिकारों और उनके उज्ज्वल भविष्य को नुकसान पहुँचाती है। हमें मिलकर बाल मजदूरी का विरोध करना चाहिए और हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन दिलाने का प्रयास करना चाहिए, तभी एक खुशहाल और विकसित समाज का निर्माण हो सकेगा। एक स्लोगन भी है बहनों, बचपन बचाओ, शिक्षा दिलाओ, बाल श्रम को दूर भगाओ। और आइए बहनों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: आइए सखियों, अब सुनते हैं डॉक्टर अंजना वर्मा से काव्य पाठ।
2: आज अपनी महिलाओं के लिए मैं कुछ कविता लेकर आई हूं जिन्हें मैं सुना रही हूं। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे प्रियतम। इस कविता में गांव की एक सीधी सादी महिला जिसका पति सरहद पर गया है और उसकी कोई खबर नहीं मिलने पर वह बेचैन है, उसकी मनोदशा को मैं अपने शब्दों में व्यक्त कर रही हूं। मेरे प्रियतम, घूंघट की आड़ में, उदासी की बाढ़ में, गांव से शहरों तक, जमी से आसमां तक, ढूंढ रही है एक दीवानी अपने प्रियतम की निशानी। हवाओं को रोका, घटाओं को टोका, हर उस पहर से पूछा, हर उस शहर से पूछा, मेरे प्रियतम का घर कहाँ है कोई हमें बता दे, मेरे प्रियतम का घर कहाँ है कोई हमें बता दे। वो कौन सी है दुनिया, वो कौन सा नगर है, कोई तो हमें समझा दे। किस राह से है जाना, कोई हमें दिखा दे, मेरे प्रियतम का घर कहाँ है कोई हमें बता दे। छाई है रात अंधेरी, घटा भी घेरी है काली, बिजलियों की कड़कड़ाहट मुझे डरा रही है समझ अकेली। मेरे प्रियतम को कोई बुला दे, मेरी विरह वेदना उसे सुना दे, मेरे जीवन की लौ फिर से जगमगा दे, मेरे प्रियतम का घर कहाँ है कोई हमें बता दे, मेरे प्रियतम का घर कहाँ है कोई हमें बता दे। मेरा पी कहाँ, मेरा पी कहाँ, दर्द में लिपटी हुई उसकी ये दुहाई, बयां कर रही है उसकी तन्हाई, बहुत लंबी हो गई है पी से जुदाई, नहीं सही जाती अब जीवन की ये अदाई। कह कर गया वो मुझसे, कह कर गया वो मुझसे, जल्द आऊंगा मैं सरहद से, कुछ कर्ज है जो भारत माँ के, उसे उतार ले जाऊंगा तुझे फिर इस घर से, ले जाऊंगा तुझे फिर इस घर से। दिन

महीने साल गुजरते गए पर वो ना आए। थक गई अब आंखें, टूट रही अब सांसें, थक गई अब आंखें, टूट रही अब सांसें, होठों की लाली भी अब हो गई है काली। न दिन में चैन, न रात में सोए नैन, निस दिन बरसत है मोरे नैन। जैसे बिन फूलों के रोता है वन माली, जैसे बिन पानी के तड़पती है मछली, जैसे चांद को बिन देखे नहीं रह पाता है चकोर, जैसे प्यार और मोहब्बत पर नहीं चला किसी का जोर। व्यथा विरह की अब हो गई है भारी, जिसे नहीं सह पाऊंगी मैं वियोग की मारी। मेरे रोम रोम में वह व्याप रहा है, मेरे जीवन का हर क्षण उसे मांग रहा है, मेरी धड़कन का हर कण उसके नाम रहा है, मेरे जीने का वही तो अवलंब रहा है। कोई तो कुछ कहो, कोई तो कुछ करो, मेरे प्रियतम का घर कहाँ है, कोई मुझे बता दे, कोई मुझे दिखा दे, किस राह से है जाना, कोई हमें बता दे, किस राह से है जाना, कोई हमें बता दे। मेरी दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है मैं, एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ की आत्मव्यथा है। मैं एक खुली किताब हूँ, मन मस्तिष्क शरीर और आत्मा की लिखी हर ख्वाब हूँ। मैं कागज पर कलम से उकेरी गई बेजुबान आगाज हूँ, खुद में सिमटी हुई लोगों के अंदाज पे पन्ना दर पन्ना दबी हुई आवाज हूँ। मैं एक खुली किताब हूँ, जिसने जो चाहा जब चाहा पढ़ लिया, अपनी इच्छा अनुसार रंगों से जड़ लिया, खुद से मंथन कर लिया, किसी ने उसे फाड़ा, किसी ने उसे लथाड़ा, किसी ने सराहा, किसी ने दुत्कारा, तो किसी ने उसे सुधारा और उभारा। मैंने हर उसूलों को अपने पन्नों पर उड़ेल लिया। मैं एक खुली किताब हूँ, मैं एक खुली किताब हूँ। दुनिया के रीति रिवाजों और नाते रिश्तेदारों के तालीम की कथा हूँ, अपनी खुशियों और गमों की कही गई व्यथा हूँ। अगर कुछ सही लगे तो ठीक, वरना अन्यथा हूँ। मैं एक खुली किताब हूँ, मैं एक खुली किताब हूँ। एक ख्वाहिश मेरी भी है, मुझे तुम पढ़ना जरूर, मत करना अपनी नजरों से दूर, चाहे कहीं ताक पर ही हो पड़ी या कहीं कोने की मेज में हो खड़ी, इसे प्यार से सवार कर, पड़ी धूल को झाड़ कर, कर लेना बातें दो चार, कुछ हंसाएगी तो कुछ रुलाएगी भी, कुछ अनकही पहलुओं से, कुछ खट्टी मीठी बिसरी हुई जज्बातों से, कर जाएगी रूबरू तुम्हें हर पन्नों से, कुछ अपना कहा लिख देना तुम भी उन स्याह पड़े पन्नों पर, ताकि मिल जाए उस खुली किताब को पूर्ण होने का नजरबंद, मैं से हम होने का सुखद आनंद, मैं से हम होने का सुखद आनंद। अपने बचपन को फिर से जीने की इच्छा व्यक्त कर रही है एक नारी। जी चाहता है, जी लेना चाहती हूँ उस एक पल, उस एक लम्हे को, जहाँ हो सिर्फ मैं और मेरी पहचान, जहाँ हो सिर्फ मेरी इच्छा अनिच्छा, ना हो किसी का रोक टोक, ना हो कोई नियम कानून, ना हो कोई कर्तव्य दायित्व, सिर्फ मैं और मेरी परछाई। लंबी सांसें लेकर सारी जिम्मेदारियों को छोड़, जी लेना चाहती हूँ उस पल को, जहाँ न कोई रिश्ता नाता हो, जहाँ हो सिर्फ मैं और मेरी स्वच्छंदता, स्वयं की इच्छा से खाऊं पीऊं वो अल्लाह।

0: हर सी हंसी को फिर से दोहराऊं, वो दौड़कर खोमचे वाले के पास जाऊं, बादाम और भूंजा खाकर मस्त हो जाऊं, सखियों के संग लुका छिपी से लेकर गुड़ियों की शादी का लुत्फ उठाऊं, बेफिक्री का चादर ओढ़े सखियों संग झूमूं गाऊं, खुली छत पर चांदनी की रात हो और सर पर अम्मा का प्यारा हाथ हो, वो परियों की कहानियां और ख्वाबों का साथ हो, वो सुकून और शांति भरी जीवन का आभास हो, जहां मैं और मेरे अस्तित्व का एहसास हो, इस भाग दौड़ इस दिखावटी दुनिया के प्रपंच से दूर जी लेना चाहती हूँ कुछ पल, कुछ लम्हा, जहाँ हो सिर्फ मैं और मेरा वजूद, जहाँ हो सिर्फ मैं और मेरा वजूद। बच्चे बड़े होते हैं और देश परदेश चले जाते हैं अपनी पढ़ाई करने। एक माँ उसके बचपन को याद करते हुए उसके मनोबल को बढ़ा रही है मेरी इस कविता में। माँ की आवाज़। न जाने कब निकल गए वो दिन वो रातें, वो बच्चों संग बिताई हर बातें, न जाने कब निकल गए वो दिन वो रातें, वो बच्चों संग बिताई हर बातें, मानो कल की ही बात हो जब हर कदम पर वो चाहे माँ का साथ हो, माँ के दिल का टुकड़ा उसके जीवन का मुखड़ा उसे छोड़ चल पड़ा जिंदगी की राह पर, एक मुकाम पाने एक पहचान बनाने, अपनी वो मासूमियत अपनी वो लड़कपन अपनी वो बउआ की छवि सभी को यादों की गलियों में छोड़ खुले आसमान में चहचहाने चला, नए परिवेश नए लोगों के बीच अपना संबंध बनाने चला, जो कल तक था माँ के आंखों का तारा वो आज तारों के बीच खुद को ध्रुव तारा बनाने चला, हर माँ की अंतरात्मा की ये है आगाज, बस ये याद रखना कि तू है मेरा कृष्णा, जहां ना हो कोई मृग तृष्णा, चाहे कोई मुसीबत आए या कोई कमी सताए, तुम घबराना मत मुझसे कुछ छुपाना मत, अपने लक्ष्य को कर इतना मजबूत कि हर बाधाओं को तू कर दे भस्मी भूत, अपने इस सुनहरे पल को कर इतना अलंकृत कि उसकी झनकार पूरी दुनिया को कर दे झंकृत, अपनी मेहनत और खुददारी को अपना हथियार बना, अपनी लगन और ईमानदारी को अपना साज बना, सफलता खुद ब खुद तेरे द्वार आएगी, तेरे ख्वाहिशों को एक मुकाम पर लाएगी, तुझे दुनिया में एक नई पहचान दे जाएगी, तुझे दुनिया में एक नई पहचान दे जाएगी।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी डॉक्टर अंजना वर्मा से काव्य पाठ। उम्मीद करती हूँ बहनों, आज का ये काव्य पाठ आपको अच्छा लगा होगा। और अब चलते हैं गीत संगीत के सफर में, आनंद लेते हैं इस गीत का।

बहनों, खेल खेलना आज हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। खेल खेलने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी प्रसन्न रहता है। इसलिए कहा जाता है कि खेल खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। बहनों, जब बच्चे, युवा और बड़े नियमित रूप से खेलते हैं तो उनका शरीर मजबूत बनता है, या यूं कहें कि खेल हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाते हैं। लेकिन आज के समय में बहनों, पढ़ाई, काम और तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण लोग शारीरिक गतिविधियों से दूर होते जा रहे हैं। बच्चे भी मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं। ऐसे में खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। खेल शरीर को सक्रिय रखते हैं और हमें स्वस्थ जीवन जीने में सहायता करते हैं। बहनों, खेल खेलने से शरीर मजबूत और चुस्त रहता है। दौड़ना, कूदना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, ऐसे कई खेलों से शरीर का अच्छा व्यायाम होता है। नियमित रूप से खेल खेलने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियां स्वस्थ रहती हैं और शरीर को की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। आजकल बहुत से लोगों को मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग, बीपी जैसी बीमारियां ज़्यादा देखने को मिल रही है। खेल से ऐसे कई समस्याओं से बचाने में मदद करता है। बहनों, बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेल बच्चों की रचनात्मकता, निर्णय लेने की क्षमता और एकाग्रता बढ़ाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी आवश्यक है, क्योंकि दोनों मिलकर बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करते हैं। हमें प्रतिदिन तीन कुछ समय खेल कूद के लिए अवश्य निकालना चाहिए। विद्यालयों और परिवारों को भी बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। खेल का उद्देश्य केवल जीतना नहीं बहनों, बल्कि स्वस्थ रहना, आनंद लेना और अच्छे गुणों का विकास करना है। सच बहनों, खेल खुशी और स्वास्थ्य का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। वे हमारे शरीर को स्वस्थ, मन को प्रसन्न और व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। इसलिए हमें नियमित रूप से खेलों में भाग लेना चाहिए और स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। और खुश रहने के लिए गीत भी जरूरी है बहनों, तो क्यों ना गीत का आनंद लेते हैं।

0: बहनों, इसी गीत के साथ अब हो चला है आपसे इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो दीजिए अब रेडियो सखी गुंजन कुमार को अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे बहनों के लिए कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि

0: कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच 12:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। उद्योग जगत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भेंटवार्ता, मत्स्य पालन एक सफल उद्यम। भेंटवार्ताकार हैं हृषिकेश कश्यप, भेंटकर्ता सचिन कुमार।
3: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम उद्योग जगत में। आज के इस कार्यक्रम का हमारा विषय है मत्स्य पालन एक सफल उद्यम, और इसके विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री ऋषिकेश कश्यप जी को। आप प्रबंध निदेशक हैं बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड यानी कॉफेड के। ऋषिकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
4: मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार।
3: सबसे पहले कार्यक्रम में हम ये आपसे जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि मत्स्य पालन कितना लाभकारी है एक उद्यम के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में।
4: देखिए, मत्स्य पालन जिसको संक्षिप्त में नीली क्रांति के रूप में जाना जाता है
3: जी,
4: और बिहार में अपार संभावनाएं हैं। अकेले 8 लाख हेक्टेयर से अधिक वेटलैंड है, चौर है, जहाँ मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं। बिहार में आज 8 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है, जबकि डिमांड है 10 लाख मैट्रिक टन। आज भी हम 2 लाख मैट्रिक टन मछली आंध्र प्रदेश से मंगा रहे हैं, जिसमें लगभग 4000

0: करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिहार वासियों को भुगतान करना पड़ता है। यानी इतना बड़ा बाजार है, इतनी बड़ी अपार संभावनाएं हैं।
1: अपार संभावनाएं हैं और हम लोग डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं बिहार राज्य में, खास करके आम तौर पर देखते हैं कि लोग फसलों की खेती ज़्यादा हमारे किसान भाई कर रहे हैं। तो बिहार में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि मत्स्य पालन के लिए अनुकूल मौसम हो, या हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं?
0: देखिए, भारत सरकार ने बिहार के सभी जिलों को मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त माना है।
1: अच्छा,
0: यानी कि हर एक वैसा क्षेत्र जहाँ पानी है, हम वहाँ मत्स्य पालन के माध्यम से, नीली क्रांति के माध्यम से रोजगार का सृजन कर सकते हैं। और ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ 8 लाख हेक्टेयर वेटलैंड जो चौड़ है, अगर इसका उपयोग करते हैं तो अकेले इस क्षेत्र में 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार का सृजन हो सकता है।
1: जी, तो बिहार के सभी ज़िले लगभग इसके लिए उपयुक्त हैं मत्स्य पालन के लिए। हम अगर किसी व्यक्ति को, किसी किसान को कहें कि आप मत्स्य पालन शुरू करिए, तो हो सकता है कि उन्हें कुछ हिचक हो शुरुआती। तो प्रशिक्षण के लिए क्या सुविधाएं हैं?
0: देखिए, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ही सरकारों के द्वारा निःशुल्क मत्स्य पालन का प्रशिक्षण मछुआरों के लिए, मत्स्य व्यवसायियों के लिए, मत्स्य उद्यमियों के लिए, मत्स्य सहकारी समितियों के लिए अवेलेबल है। उन किसानों को जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं करना होता है या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जाके अपना निबंधन करा सकते हैं। देश के सर्वोच्च संस्थान सीफा, सीआईएफई, सीफ्री, कहीं भी वह प्रशिक्षण के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार सामूहिक रूप से आधा आधा खर्च वहन करती है और किसानों को 10 दिवसीय, 15 दिवसीय, 1 महीने का, जो जैसा किसान प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वह मुफ्त में उपलब्ध है।
1: जी, तो मुफ्त में प्रशिक्षण प्राप्त कर हम इसके उद्यम को शुरू कर सकते हैं और रोजगार सृजन कर सकते हैं। अब इसकी योजनाओं पर हम अगर बात करें, तो कौन कौन सी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे किसान भाई, हमारे उद्यमी ले सकते?
0: देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सह समृद्धि योजना, ये दो ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा संपोषित है। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एवं महिलाएं, किसी भी वर्ग की, इनको 60% तक अनुदान दिया जाता है। और हर एक अवयव में, अगर आप मछली पालन की बात करते हैं तो वैसे ही आता है दिमाग में कि हमको तालाब चाहिए, तालाब में पानी चाहिए, बांध चाहिए, नाव चाहिए, जाल चाहिए, भोजन चाहिए, फिर मारते हैं तो उसके लिए नेट चाहिए, फिर हम मछली को पकड़ने के बाद बाज़ार ले जाते हैं तो गाड़ी चाहिए, फिर बाज़ार की व्यवस्था, फिर मछली सरप्लस हो गई तो उसको प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए और फिर उसको एक्सपोर्ट के लिए। तो इन सभी विषयों में, इन सभी जो सब्जेक्ट मैटर है, इन सभी पर 60% अनुदान SC ST को और महिलाओं को, और अन्य वर्ग के लोगों को 40%। किसानों को बस अपना निबंधन करना है नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसे ही वो निबंधन करते हैं फिर वो अपना आवेदन कर सकते हैं और अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री चौर विकास योजना के तहत स्टेट गवर्नमेंट के योजनाएँ हैं, उसमें 75% तक अनुदान दिया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग योजनाओं के तहत 90% तक गाड़ियों पर अनुदान दिया जा रहा है। तो ये सारी सुविधाएं किसानों को उपलब्ध है। यही नहीं, अब किसानों को फसलों को ध्यान में रखते हुए फसलों का भी बीमा, मछली का जो बीमा होता है, वह भी प्रारंभ किया गया।
1: जी, आपने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जानकारी दी। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या निबंधन हम ऑनलाइन ही करा सकते हैं या ऑफलाइन भी कराने की सुविधा है?
0: देखिए, ऑनलाइन अगर आप कराते हैं तो इंस्टेंटली आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। ऑफलाइन कराएंगे तो कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके अगर आप कराते हैं तो वहाँ से भी तुरंत रजिस्ट्रेशन होए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाके अपना निबंधन करा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, क्या दोनों योजनाओं का लाभ साथ साथ लिया जा सकता है?
0: निश्चित रूप से, अभी जितनी भी योजनाएँ हैं सरकार के द्वारा ये बंदी से हटा दी गई है। अगर आप दो योजना नहीं, 3 योजना का भी अगर एक साथ आवेदन करते हैं तो तीनों ही योजनाओं में आपको अनुदान का लाभ आपको मुहैया होगा।
1: बिल्कुल, तो मछली पालन का उसके हर एक स्टेप पर अनुदान है और उसका लाभ

0: हमारे किसान भाई ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा इस उद्यम को करके प्राप्त कर सकते हैं। आपने बीमा की भी बात कही, कई बार हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदाओं से क्षति पहुंचती है, तो क्या मत्स्य पालन के लिए भी बीमा का प्रावधान है और कौन कौन से ऐसे योजनाएं?
1: देखिए, पहले ये योजना वर्ष 2011 में बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था, मत्स्य फसल बीमा योजना, जिसमें दोनों 50-50% किसान देते थे 50% और 50% राज्य सरकार देती थी।
0: जी
1: इसमें अगर मछलियों को बीमारी लग जाती है तो अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, बाढ़ की स्थिति में, सुखाड़ की स्थिति में, मछली चोरी हो गया उसके स्थिति में, और प्वाइजनिंग कर दिया वैसे स्थिति में, यानी 6 तरह की जो प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाएं हैं, इन सभी में अनुदान दिया जाता है। अभी हाल में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा मछलियों का, नावों का, तालाबों का बीमा प्रारंभ किया गया है, जिसमें 40% से लेकर 50% तक अनुदान की व्यवस्था की गई है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और इसका किसानों को आगे बढ़कर लाभ लेना चाहिए। और बीमा योजना प्रारंभ हो जाने से बैंकों को कॉन्फिडेंस लेवल जागृत हुआ, और मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड और मत्स्य पालन के क्षेत्र में जितनी भी योजना है उस सभी में ऋण उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया गया है, जो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जो नीली क्रांति के लिए एक नया आयाम साबित होगा। नवाचार की भी योजनाएं बहुत सारी है।
0: जी, हम नवाचार की ही बात आपसे करना चाह रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि पारंपरिक तरीका मत्स्य पालन का है कि केवल मछली एक तालाब में डाल दिया और उसकी देखभाल, और फिर वो क्या इसमें कुछ प्रयोग भी किए गए हैं?
1: निश्चित रूप से सचिन जी, मत्स्य पालन एक बहुआयामी धंधा हो गया है, तो समन्वित मत्स्य पालन प्रारंभ हो गया। आजकल सुनते हुए का मखाना
0: जी,
1: जो कैश क्रॉप है, और मखाना बहुत बड़ा मतलब विदेशों में
0: मार्केट
1: सप्लाई
0: बहुत हो
1: होने
0: गया है।
1: लगा है, जीआई टैग मिला है, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र खुला है, मखाना पर रजिस्ट्रेशन कोड जारी हुआ है, तो मखाना के साथ मछली की खेती प्रारंभ हो गई है, यानी आम के आम गुठली के दाम,
0: जी
1: मखाना के साथ मछली और सिंघाड़ा की भी खेती प्रारंभ हो गई है। तो ये बहुत बड़ा उद्योग का रूप धारण कर लिया है, खासकर मिथिला, मिथिला जीआई टैग नाम से मखाना का
0: जी
1: भी नामकरण हुआ। तो ये आने वाले समय में वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप के तहत भी बिहार के 6 जिलों को ये मखाना के लिए आच्छादित किया गया, मखाना के लिए चिन्हित किया गया। तो ये बहुत बड़ा मतलब डेवलपमेंट हुआ है बिहार के लिए, बिहार के किसानों के लिए। यही नहीं, अब मछली के जो विभिन्न जो वेस्टेज थे,
0: जी
1: जो वेस्ट थे, अब वो हमारे लिए वेस्ट हो गया है, यानी कि जो मछली का चोइटा हम लोग फेंक देते थे, अब उसको कलेक्ट करके कोलेजन एक्सट्रैक्ट हो रहा, उस चोइटे को हम लोग 100 रुपये किलो खरीद के हम लोग जापान की कंपनियों को भेज रहे हैं, चाइना की कंपनियों को भेज रहे हैं, फिर मछली का जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम था उस सब से खाद बना के हम लोग उसको पैक करके सप्लाई करा रहे हैं, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान से एमओयू करके हम लोग उसको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारा काम करे, उसी तरह से स्किल डेवलपमेंट से किए हैं। जो जलकुंभ भी अभी साफ होता था
0: जी
1: मछुआरों के लिए, किसानों
0: जी
1: के
0: जी
1: लिए, उसका हैंडीक्राफ्ट मटेरियल बना के हम लोग उसके रोजगार में सहायक हो रहे हैं, अब वो बर्बाद नहीं हो रहा है जलकुंभ भी।
0: जी
1: तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जो मछुआरों को आगे बढ़ के, जो नए अपने आप को बोलते हैं बेरोजगार हैं, तो उनसे भी हम अपील करेंगे कि इस व्यवसाय में आइए, और कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हैं राज्य एवं केंद्र सरकार की, उसका आप लाभ लीजिए, और बिहार के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान होगा तो नीली क्रांति का होगा, मत्स्य पालन का होगा, चूंकि मार्केट की यहाँ कोई परेशानी नहीं है, मार्केटिंग के लिए आपको अलग से बंदा रखने के लिए नहीं ज़रूरत है,
0: इसका
1: आपके
0: मार्केट
1: तालाब पर, जी
0: इतना
1: जी
0: बड़ा है,
1: बड़ा
0: डिमांड
1: मार्केट।
0: इतना ज़्यादा है कि मार्केटिंग तो हाथों हाथ हाट बाजार और जो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो एक अहम सवाल यहाँ पर ये आता है कि जिन लोगों के पास जगह की कमी है, कम ज़मीन है, तो ऐसे लोगों, ऐसे किसानों के लिए कुछ योजनाएं हैं क्या, या कोई तकनीक है क्या?
1: देखिए, जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है तो वो मार्केटिंग में आ सकते हैं, या नहीं तो वो लीज ले सकते हैं। आप 10 साल के लिए, 9 साल के लिए कम से कम अगर लीज ले लेते हैं पट्टा पर, तो भी आपको सरकारी अनुदान तालाब के लिए आपको मिल सकता है। ये भंडारण के लिए भी बहुत सारी योजना है, मखाना में ही भंडारण के लिए है, सीड के लिए है, एक्सपोर्ट के लिए है, बहुत सारी

0: योजनाएं आ गई है। सिर्फ उसका अगर वेबसाइट पर, मत्स्य विभाग के वेबसाइट पर अगर आप सर्च करेंगे या कॉफेड के वेबसाइट को देखेंगे तो आपको एक लाइन से आपको योजनाओं के बौछार लगी हुई है। मतलब सैकड़ों योजनाएं हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। आप जिस विषय में सोचेंगे कि हमको ये काम करना है उसी में है, नहीं है तो जो अगर स्कीम में नहीं है शामिल, तो अगर जो आप सोच रहे हैं तो वो इनोवेटिव आइडिया में जा जाएगा, उसके लिए भी आपको सरकार
1: जी
0: अनुदान, कुछ योजनाओं में 100% अनुदान तक सरकार दे रही है।
1: जी तो सरकारी सहयोग अगर हम कहें कि हर एक स्टेप में है और सब जगह अनुदान है, तो क्यों ना इस व्यवसाय को, इस कृषि को, नीली क्रांति को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। और जो लोग सोच रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूं, तो इसके माध्यम से हम रोजगार कर सकते हैं, मत्स्य पालन करें, इसकी मार्केटिंग करें, पैकेजिंग करें, जिस क्षेत्र में आप चाहे इनोवेशन करें, नवाचार करें, उस क्षेत्र में आपका स्वागत है, उसमें आपको अनुदान है और उसमें भी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है, उद्यम है। तो बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड कॉफेड के प्रबंध निदेशक श्री ऋषिकेश कश्यप जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थे और मत्स्य पालन के विभिन्न आयाम पर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। ऋषिकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: उद्योग जगत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, मत्स्य पालन एक सफल उद्यम। भेंटवार्ताकार थे ऋषिकेश कश्यप, भेंटकर्ता सचिन कुमार।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

0: आकाशवाणी एट 90। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है लोफर।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

लीजिए सुनिए किशोर कुमार आशा भोसले और साथियों को, फिल्म का नाम है प्रेम नगर।

लहर सुनी किशोर कुमार को फिल्म इम्तहान में। गीत मजरूह के हैं, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के अस्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के उपचुनाव के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की आज घोषणा किए जाने की संभावना है। इन चुनावों के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। किसी भी उम्मीदवार के नाम वापस नहीं लिए जाने की स्थिति में विजयी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। 10 सीटों पर 10 उम्मीदवार होने के कारण सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। भाजपा ने इस चुनाव के लिए पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भारती मेहता, शिवरानी देवी

0: प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन की ओर से एक सीट पर राजद के सुनील कुमार सिंह एकमात्र उम्मीदवार हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त आवेदनों के निपटारे के लिए आज से सभी अंचलों में विशेष अभियान की शुरुआत की है। 17 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान 46 लाख आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में प्री मॉनसून बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना, बक्सर, सिवान, सारण, बेगूसराय, सुपौल और मधेपुरा समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। पश्चिम चंपारण और कटिहार जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट के शैक्षणिक सत्र 2026-28 में नामांकन के लिए तीसरी चयन सूची जारी कर दी है। पहली और दूसरी सूची के बाद बची सीटों के आधार पर तैयार इस सूची में शामिल छात्र 14 जून तक संबंधित विद्यालयों में नामांकन ले सकेंगे। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने हाजीपुर नगर परिषद के लेखापाल मनीष कुमार के दो ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके हाजीपुर के बागमली स्थित आवास और नगर परिषद कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान लाखों रुपए मूल्य के आभूषण, आलिशान घर, संपत्ति के कागजात और वाहन बरामद किए गए। बक्सर जिले के डुमरांव और राजपुर प्रखंड में विशेष धावा दल ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर चार बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। पश्चिम चंपारण जिले के बाघा पुलिस जिला से फेसबुक पर हथियार संग फोटो वायरल करने के मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक देशी पिस्तौल भी बरामद किया गया। रोहतास जिले के डेहरी स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में दौड़ के दौरान पांच प्रशिक्षु जवान भीषण गर्मी के चलते बेहोश हो गए। इनमें से एक प्रशिक्षु सिपाही श्रीराम कुमार की पटना एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: सिंह, संजय म्यूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जेडीयू ने वजीर सेहत निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पार्टी के कारगुजार रियासती सदर अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। अजीम इत्तेहाद की जानिब से एक सीट पर आरजेडी के सुनील सिंह वाहिद उम्मीदवार हैं। महसूलात व इस्लाहात एराजी महकमा ने महसूलात मुहिम के तहत हासिल दरखास्तों के निपटारे के लिए आज से सभी सर्किलों में खसूसी मुहिम की शुरुआत की है। 17 जून तक चलने वाली इस खसूसी मुहिम के दौरान 46 लाख दरखास्तों के निपटारे का हदफ रखा गया है। वजारत सकाफत ने साल 2024 और 2025 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और उस्ताद बिस्मिल्ला खान यूथ अवार्ड का ऐलान किया है। रियासत के 5 फनकारों को अकादमी के मुख्तलिफ अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। सीनियर अदाकार सुरेश कुमार हज्जू, नाट डायरेक्टर शिव नारायण झा और लोक फनकार महेंद्र राम को कौमी कला अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। इसके साथ ही नौजवान मुसव्विर रोहित चंद्रा और लोक मौसीकारा निशा श्रीवास्तव को यूथ फनकार और उस्ताद बिस्मिल्ला खान अवार्ड दिया जाएगा। रियासत के बेशतर खित्तों में प्री मानसून बारिश होने से लोगों को शिद्दत की गर्मी से राहत मिली है। महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के मुताबिक पटना, बक्सर, सीवान, सारण, बेगूसराय, सुपौल और मधेपुरा समेत कई अजला में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के बेशतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की पेशगोई जाहिर की है। मगरबी चंपारण और कटिहार जिले में जबरदस्त बारिश की वार्निंग जारी की गई है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इंटरमीडिएट के तालीमी साल 2026-28 में दाखिले के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट के बाद बाकी मानदा सीटों की बुनियाद पर तैयार इस लिस्ट में शामिल तलबा 14 जून तक मुतल्लिका स्कूलों में दाखिला हासिल कर सकेंगे। इक्तसादी जराइम इकाई की टीम ने हाजीपुर नगर परिषद के अकाउंटेंट मनीष कुमार के 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। मौसूला इत्तला के मुताबिक उनके हाजीपुर के बागमली वाक़े रहायश और नगर परिषद दफ्तर अहाता वाक़े सरकारी रहायशगाह पर छापेमारी की गई। आमदनी से जायद इमलाक के मामले में यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान लाखों रुपये के कीमत के जेवरात, आलिशान घर, इमलाक के कागजात और गाड़ी बरामद किए गए। बक्सर जिला के डुमराव और राजपुर ब्लॉक में खसूसी छापामार पार्टी ने मुश्तरका छापेमारी मुहिम चलाकर 4 अतफाल मजदूरों को आज़ाद कराया। मगरबी चंपारण जिला के बगहा पुलिस जिले में फेसबुक पर असलाह के साथ फोटो वायरल करने के मामले में 3 मुलजमीन की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक देसी पिस्तौल भी बरामद किया गया है। रोहतास जिला के डेहरी वाक़े पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दौड़ के दौरान 5 ट्रेनी जवान जबरदस्त गर्मी के सबब बेहोश हो गए। इनमें से एक ट्रेनी सिपाही श्रीराम कुमार की पटना एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाईकोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री, डिप्लोमा हो या ओ लेवल, सी सी सी लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएल 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबाराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है।

0: ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे newzonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे।

0: पहला भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग, दूसरा भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी और तीसरा वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
0: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जोर्दा में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जोर्दान के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जोर्दान या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेस में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो

0: कहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
1: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में। सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है रिफ्यूजी। कहाँ गया?

प्लीज सुनिए अनुराधा पौडवाल और जसपिंदर नरूला को। फिल्म का नाम है दाग द फायर।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है प्रेम कहानी।

रोटी कपड़ा और मकान, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की, गीतकार हैं संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पर। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत
2: जी,
1: सब लेकर आए हैं।
2: तो आज
1: हम खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
2: बिल्कुल, और ये खेल दिवस किन का है?
1: छोटे बच्चों का।
2: बच्चों का खेल दिवस है तो आज बच्चों के लिए भी है ना।
1: तो बचपन के जो खेल होते हैं, आपने कौन कौन से खेल खेले या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर गेम, ज्यादा गेम

0: खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर,
1: जी
0: या
1: बिल्कुल।
0: माता पिता हैं किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपनी
1: बिल्कुल,
0: बातें वो जरूर
1: क्योंकि
0: बताएं।
1: आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बाहर खेलने पे जरा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते
0: जी
1: हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए, या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाती
0: तो इस बारे में बहुत सारी
1: हैं?
0: बातें और होंगी, और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए।
1: भीमव्वा डोड्डा बलप्पा शिले क्या थारा, जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
0: बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है।
1: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
0: और मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब अगर कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहाँ जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी
1: कितने
0: जिंदगी जी
1: खुश
0: रहे
1: हैं।
0: हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज़्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: तो आपके इस पे क्या विचार हैं कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो,
0: जी
1: या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको, कि लोगों के इसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है?
0: जी
1: तो इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको, कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप।
0: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या
1: बिल्कुल
0: फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे।
1: जी हाँ,
0: चलिए।
1: जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया, और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल। तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है।
0: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में वहां की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है। और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेयता, जो आपने भी बताया, जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उन कहानी को अच्छे से समझाया जा सके।
1: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना, उस तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
0: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहां लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं। और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
1: बिल्कुल। और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांवों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी, संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है।
0: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं, संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती। और बहुत दशकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ के लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
1: बिल्कुल। और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गांव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
0: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज़ उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सकें, ताकि जो तोगलू गोम्बेयता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल। और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है।
0: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं, इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके दर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो भी परंपरा है, उनसे जुड़े हुए होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है।
1: बिल्कुल। उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गोम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलू गोम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा को भारत का 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
0: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
1: जी,
0: और एक गीत सुन ले अभी।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था, और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और
1: बिल्कुल
0: खास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि
1: हाँ
0: किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतलियां होती है ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो
1: हाँ
0: डांस है वो
1: बिल्कुल।
0: देखने में बड़ा मजा आता
1: और अजीब अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं ना।
0: हाँ
1: तो हमारी एक जो श्रोता है वो लिखती है कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज और बड़े बड़े बंगला बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसा आपने बोला वो बोल रही
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है, तो बच्चों को ज़रूर वहाँ लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाएं कि कठपुतली नाम की कोई चीज़ होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है।
1: बिल्कुल
0: और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं, और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उन्हें भी इस चीज़ के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में, आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने की खेल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है

0: है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ना तो वो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित करना बहुत जरूरी है।
1: वो जिस तरीके के खेल में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना, सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है।
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने के जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सके। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जाने, पहचाने और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना जरूरी है। और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं। और यही वो समय होता है आरती, जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
1: बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी है खेल के को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका विकास होगा।
0: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी ज़रूरी नहीं है। जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी खेले होंगे,
1: दौड़ भाग है, साइकिल चलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: लुका छिपी भी खेलते थे और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा के सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की गेंद बना ली, उससे मार कर खेल रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे खेल हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दिन दुनिया की खबर नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उसे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकलकर खेलना।
0: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन लें, फिर आपको आगे बढ़ाएंगे।

0: बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में
1: और
0: बड़ी
1: मजा आता
0: रुचि रहती है।
1: है।
0: तो देखियो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना ज़रूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती हैं कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचे कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही हैं कि खेल हर चीज़ में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने
0: बिल्कुल
1: कि
0: सही
1: हम
0: बात
1: भी
0: है।
1: अपने
0: और
1: बचपन
0: इस
1: में पहुंच
0: साल
1: जाते हैं।
0: जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं। और खेल
1: बिल्कुल
0: खेल में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई समझाई भी जा सकती हैं ना।
1: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं।
0: जी
1: बहुत सी ऐसी तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि अब उनको खेलने, अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
0: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीज़ें बच्चों में विकसित करते हैं खेल। और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं।
1: बिल्कुल
0: और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है।
1: सुरक्षित
0: हर
1: नहीं।
0: बार बच्चे के साथ कोई जाए ये ज़रूरी नहीं हो पाता, तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले। तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो
1: बिल्कुल
0: बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों
1: बिल्कुल
0: का ध्यान रखना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें साथ साथ मिलके काम करना है, साथ मिलके खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीज़ें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ में मिलके खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनके से उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत
0: अभी
1: कुछ
0: जैसे
1: सीख
0: बारिश का जब
1: सकते हैं।
0: मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे, तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला
1: हाँ
0: कैसे जाता है, उनके साथ बैठकर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना
1: बिल्कुल
0: विकसित होती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है। खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है। बस
1: बिल्कुल
0: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं

0: हमारी, हम उन्हें भी खेल में बदल सकते
1: बिल्कुल। और
0: हैं।
1: हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए, और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं बैठे हुए, मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना, उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: जब
1: बहुत
0: बच्चों को
1: जरूरी है।
0: धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता है
1: बिल्कुल। और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी होता
0: जी।
1: है कभी कभी।
0: भाई बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो चलो एक गाना सुने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं,
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश है या नहीं। कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो, इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है, तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहाँ बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देखने के बारे में समझ साथ में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे। कहते हैं ना कि हमारे कपड़े, मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हम

0: माय कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
1: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है, तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
0: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद क्या है, वो क्या करता है, वो ये करने लगा लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है।
1: हाँ।

0: उसे सचमुच उसे पसंद किया है, वो क्या करता है, वो ये करने लगा लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है।
1: हाँ
0: तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव। तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूं या मैं सही हूं, वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है।
1: बिल्कुल। इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में, तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं,
0: हाँ
1: तो वहां हमें बहुत सारे एक लाइक मिले।
0: बस, आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने
1: हाँ
0: कितने लाइक्स हो गए,
1: वो
0: कितने
1: लाइक कितने
0: कमेंट्स हो
1: बढ़ गए।
0: गए
1: हाँ
0: वो उसी देख में लगे रहते हैं।
1: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती। ये चीज हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं। क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है। बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है।
0: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीजें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े बड़े पलों का इंतजार करते रहते हैं ना, कि चलो ये त्योहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अभी क्यों नहीं खुश हो जाते। तो
1: बिल्कुल
0: हर जो जो जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
1: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना, इस तरह से उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे
0: बिल्कुल
1: मिलेंगे तब खुश, यहां जाएंगे तब खुश होंगे, इसके इसके ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन वो
0: बिल्कुल
1: खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप
0: बिल्कुल, और
1: बता
0: ये
1: रही हैं
0: जीवन है, कोई ऐसा मंच नहीं है कि
1: जी।
0: हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नज़र से नहीं जीना, हमें अपनी नज़र से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
1: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है, पर रात को हम तखिया भी होते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है, जो सच में हंसता था। लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये
0: बिल्कुल
1: इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी सबकी करो, और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की,
1: क्या बात
0: क्योंकि
1: है,
0: मन से किए गए काम खुश करते हैं।
1: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा
0: एक
1: ये
0: प्यारा सा
1: प्यारा
0: गीत।
1: सा गाना।

0: बहुत मीठा, बहुत सुरीला गीत हमने सुना, और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का
1: दिखावा
0: दिखावा का।
1: करना
0: जी
1: बिल्कुल। और वैसे भी चंचल, अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें। क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है। खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। मैं जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज़ है हम खुश हैं इसमें, वो चीज़ होनी चाहिए।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगी।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए, अब हम मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है। जो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स हैं, वहां पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं। और इस बेहतरीन

0: दिखने की वहां पर होड़ सी मची हुई है। खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है। बहुत
1: बिल्कुल,
0: सही बात लिखी है।
1: बहुत सही बात। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की।
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त तो दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है, और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है, और यही सच्ची खुशी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है, तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने।
0: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहां वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है। ये
1: बिल्कुल।
0: भी
1: और
0: सही
1: एक
0: बात है।
1: बिल्कुल एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है, लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है। ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही है इन्होंने।
0: और भी संदेश हैं।
1: तो एक और जो हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अपितु तो उसके पोषक भी है। फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है, और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
0: ऐसी बहुत सी मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी हैं। कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं, और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने के, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में। एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को। जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है। दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है। इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो।
1: बहुत अच्छी बात लिखी है उन्होंने। और इसी साथ एक और हमारी श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए। खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते। दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूँ, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूँ, तो आप सभी की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं, उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
0: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है,
1: बहुत जरूरी।
0: और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीली, जैसे अक्सर
0: हाँ।
1: हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ ली हो रही, तो बस माचिस की तीली लेके करने लगे तो वो बहुत खतरनाक।
0: और महिलाएं हेयर पिन घुमाती हैं,
1: हाँ, हेयर पिन, चाबी लेता, कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना, बहुत समय तक ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज आवाज आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना,
0: जी
1: जो हमारे कानों की होती है वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा हम अगर में शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा।
0: देखो जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है, तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो चाबी नुकीली चीजें, हेयर पिन, इनका तो कभी ना
1: करें। आप इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीज़ आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, ये पुराने जो होते हैं वो बड्स, उसमें वो फंगस भी होती है तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये सब चीज़ें आप ना प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए, और क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक आवाज ही आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं, तो अब बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही,
0: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान

0: पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है। तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है, तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है, तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है। तो
1: बिल्कुल
0: ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम
1: बिल्कुल।
0: करना
1: और
0: है।
1: सबसे बड़ी चीज़ है, आप अगर आपको सुन ही रहे हैं, आप उसको बहुत ज़रूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50, उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज़्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज़ को, कि आपको बाकी आवाज़ें ना आए। और दूसरी चीज़, अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए। आप ये करिए ना, एक कान में लगा लिया, थोड़ी देर बाद आपने दूसरे कान में लगाया, इससे क्या होता है ना, कान आपका ऐसे पर्दे पर, उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो ख़राब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, कृपया करके अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज़ आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए, आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीज़ें हैं, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, अच्छे से उसकी जांच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जांच होती है वो भी जरूर करवाइए।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें, और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुशी पाठक।
2: सखी सहेली।

0: फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी, हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में। अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी बिल्कुल घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं आज के दोस्तों। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए, आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है, इस प्यार से मेरी तरफ ना दे।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: हिलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम, मैं शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की? लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेट में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग। यहाँ भी, यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं हम, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना
1: जी? इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: फिल्म है साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ, बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम
1: जी। नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी मैं फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैसल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिविजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले भी बात हुई है विविध भारती में, फरमाइश में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है मारो।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे, बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: अरे तो फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: महीने से ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर से ज्यादातर चलता नहीं था हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या?
1: खेलने की बहुत चाहत थी, फिर जिम्मेदारी हमारी गुजर गई, जिम्मेदारी घर के आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है, वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: वादा

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, एमपी से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब।
1: जी और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो भी गर्मी है भाई, बहुत उमस है।
1: जी, जी,
0: पसीना आता है, परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी
0: बताइए अरुण साहब, अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है, आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं। आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है ना, कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने? ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल।
1: नहीं ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते है ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, काटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज़ से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो

0: बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी, लेकिन बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है। जी
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का आपके गीत के जरिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं
1: जी। काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी,
0: कैसा लग रहा है अब आपको जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी, भेजे हैं।
0: ठीक है।
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी। और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ मैम, किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको
1: आज? मुझे खुदा गावा फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, रब को याद करूं पिछड़ा याद मिला दे। और अब्बा
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाते हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ, इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, कबड्डी चलता था मैडम।
0: अच्छा कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे, हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से यही जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है, कि क्या वो खेला करते थे? हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम, जब सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मतलब सरकारी महाराष्ट्र साधन का, लेकिन मैंने फिर 2.5 महीने छोड़ दिया, यानी 2 महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जेब खर्चे के लिए।
0: अच्छा छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में 10वीं पास करना लोहे के चने जमाना जैसा था। पहली से 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे वाह,
1: मैंने कसम खाया था कि मैं 10वीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने।
0: क्या
1: फिर आगे पढ़ना नहीं था 10वीं पास करके, क्योंकि उस ट्रेंड में तो 10वीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: रुद्र आसम का मैडम, कौन है जो

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 हो गए हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की दूसरी सभा। हमारी इस सभा में आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को प्रणाम। अभी आपके साथ मैं हूं जया। अभी से लेकर रात्रि के 11:10 तक हम आपके साथ रहेंगे। अपनी इस सभा में हम आपके लिए ढेर सारे कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हमारे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी से।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आकाशवाणी पटना के सभी प्रिय श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। आप सुन रहे हैं युवा केंद्रित कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपका दोस्त साजिद।
1: और मैं हूं आशुतोष। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस विशेष प्रस्तुति में, जहां अगले 1 घंटे तक हम लेकर आए हैं जानकारी, प्रेरणा, जागरूकता और मनोरंजन का शानदार संगम। युवानी एक ऐसा मंच है जहां युवाओं के विचार, उनकी चिंताएं और उनके सपने आवाज पाते हैं।
0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना मीडियम वेव 621 किलोहर्ट्ज़ 483.1 मीटर पर। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पर्यावरणीय स्वास्थ्य और उसके हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की। साथ ही जानेंगे कि स्वच्छ वातावरण किस प्रकार हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल साजिद, आज के समय में प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी चुनौतियाँ केवल प्राकृतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे हमारे स्वास्थ्य और जीवन शैली को प्रभावित कर रही है। स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और स्वच्छ परिवेश न केवल स्वस्थ जीवन की आधारशिला है, बल्कि एक बेहतर भविष्य की गारंटी भी है।
0: और इसी कड़ी में हम बात करेंगे राष्ट्रीय जीवन को सुंदर बनाने का दिवस, कि यह दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सुंदर राष्ट्र केवल भावनाओं और

0: सड़कों से नहीं बनता, बल्कि उसके नागरिकों की सोच, अनुशासन, स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी से बनता है।
1: सही कहा आपने साजिद, क्योंकि जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता का ध्यान रखता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तब राष्ट्र प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है।
0: और इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की भी। खेल केवल मनोरंजन या प्रतियोगिता का माध्यम नहीं, बल्कि यह हमें अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है।
1: और दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को, जिनकी जयंती के अवसर पर हम उनके जीवन संघर्ष और देशभक्ति से जुड़े प्रेरक विचारों पर प्रकाश डालेंगे। उनका जीवन आज भी युवाओं

0: पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को, जिनकी जयंती के अवसर पर हम उनके जीवन संघर्ष और देशभक्ति से जुड़े प्रेरक विचारों पर प्रकाश डालेंगे। उनका जीवन आज भी युवाओं के लिए साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम की अद्भुत उदाहरण है।
1: और कार्यक्रम में आगे होगी आज की प्रेरक पंक्ति, फिर सुनेंगे आपके पसंदीदा फिल्म गीत, साथ ही लेकर आएंगे खेल जगत की प्रमुख खबरें और कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपकी जानकारी में नया आयाम जोड़ देगा।
0: तो दोस्तों, अगले एक घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह सफर होने वाला है ज्ञान, प्रेरणा, जागरूकता और मनोरंजन से भरपूर।
1: और अब समय हो गया है आज के कार्यक्रम के पहले हिंदी फिल्म का। आइए फिल्म गीत सुनते हैं, आज का पहला मधुर गीत।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
4: विज्ञापन से पहले आपने सुना था मस्त पंजाबी बोल के गीत आनंद राज आनंद की आवाज में फिल्म नो प्रॉब्लम से। दोस्तों आप सुन रहे हैं युवानी। अब समय हो गया है हमारे कार्यक्रम के उस विशेष हिस्से का जिसका हम सभी को इंतजार रहता है। जी हाँ, आज की प्रेरक पंक्ति का।
5: जी हाँ दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा उतनी ही आवश्यक है जितनी किसी दीपक के लिए प्रकाश। एक अच्छा विचार हमारी सोच को नई दिशा दे सकता है और हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है।
4: तो आइए सुनते हैं आज की प्रेरक पंक्ति। एक स्वच्छ विचार, एक अच्छा व्यवहार और एक छोटा सा सकारात्मक प्रयास जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा सा परिवर्तन ला सकता है।
5: जी हाँ बिल्कुल, कितनी सुंदर बात कही आपने आशुतोष। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तव में परिवर्तन की शुरुआत हमारे छोटे छोटे कार्यों और सकारात्मक सोच से ही होती है।
4: बिल्कुल साजिद, चाहे अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना हो, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना हो या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो, हर सकारात्मक कदम हमें सफलता और संतुष्टि के करीब लेकर जाता है।
5: इसलिए दोस्तों आज का संदेश यही है कि खुद में अच्छे विचारों को विकसित करें, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और समाज में सकारात्मक बदलाव के वाहक बनें।
4: इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर।
5: और अब समय है एक और मनभावन हिंदी फिल्म गीत का। आइए सुनते हैं आज का अगला गीत।
4: फिल्म के बोल है जान से गुजरते हैं, फिल्म धुरंधर द रिवेंज से खान साहब और शाश्वत सचदेव की आवाज में।

0: ऐसे विषय पर जो हम सभी के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।
1: जी
0: पर
1: हाँ,
0: या
1: पर्यावरणीय स्वास्थ्य
0: जी
1: का हमारे जीवन पे प्रभाव।
0: जी
1: जब भी हम स्वस्थ जीवन की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में अच्छा भोजन, नियमित व्यायाम और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का विचार आता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे स्वास्थ्य की नींव को तैयार करता है, और वह है हमारा पर्यावरण। यदि हमारा पर्यावरण स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता है।
0: सही कहा आपने। पर्यावरणीय स्वास्थ्य का तात्पर्य केवल पेड़ पौधों, नदियों और जंगलों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस संपूर्ण वातावरण से जुड़ा है जिसमें हम रहते हैं। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, साफ सुथरा परिवेश, कम प्रदूषण और प्राकृतिक संतुलन, ये सभी मिलकर पर्यावरणीय स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं।
1: तो दोस्तों, शायद हमसे में से बहुत से लोग यह नहीं जानते हो कि विश्व स्तर पर होने वाली अनेक बीमारियों का संबंध सीधे सीधे पर्यावरणीय परिस्थितियों से होता है। प्रदूषित हवा, दूषित पानी, अस्वच्छ वातावरण और बढ़ते तापमान का प्रभाव हमारे शरीर पर धीरे धीरे दिखाई देता है। कई बार हम बीमारी का इलाज तो करवा लेते हैं, लेकिन उसके मूल कारण पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं।
0: और यदि हम अपने आसपास नजर डालें तो पाएंगे कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम के स्वरूप में काफी बदलाव आया है। गर्मियां अधिक गर्म होती जा रही हैं, वर्षा का चक्र असंतुलित हो रहा है और कई क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ी हैं। ये सभी संकेत हमें यह बताते हैं कि पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो रहे हैं।
1: और साजिद, इसका असर केवल प्राकृतिक तक सीमित नहीं रहता है।
0: जी
1: उदाहरण के लिए, जब तापमान अत्यधिक बढ़ता है तो हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और थकान जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं।
0: जी
1: वहीं वायु प्रदूषण के कारण सांस संबंधी रोगों में वृद्धि देखी जा सकती है। आज अस्थमा, एलर्जी और फेफड़ों की बीमारियां पहले की तुलना में अधिक आम हो गई है।
0: बिल्कुल। वायु प्रदूषण वास्तव में एक गंभीर चुनौती बन चुका है। शहरों में वाहनों की बढ़ती संख्या, उद्योगों से निकलने वाला धुआं और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। कई बार हम इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह हमारे शरीर के भीतर लगातार असर डालती रहती है।
1: सही कहा साजिद आपने, क्योंकि प्रदूषित हवा केवल फेफड़ों को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को भी बढ़ा सकती है।
0: बिल्कुल
1: विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति अधिक चिंताजनक होती है,
0: जी
1: क्योंकि उनका शरीर प्रदूषण के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होता है।
0: जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं जल की। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन यदि यही जल प्रदूषित हो जाए तो जीवन के लिए खतरा बन सकता है। कई स्थानों पर नदियों, तालाबों और भूजल स्रोतों में प्रदूषण बढ़ रहा है। घरेलू कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट और रासायनिक पदार्थ जल स्रोतों को प्रभावित कर रहे हैं।
1: और जब दूषित पानी हमारे उपयोग में आता है तो अनेक जल जंती रोग फैलने लगते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम स्वच्छ पेयजल का उपयोग करें, जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाएं और जल संरक्षण को अपनी आदत का हिस्सा बनाएं।
0: पर्यावरणीय स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वच्छता। स्वच्छता केवल घर के अंदर तक सीमित नहीं है। यदि हमारे आसपास की सड़कें, पार्क, बाजार और सार्वजनिक स्थान स्वच्छ रहेंगे, तभी हम वास्तव में स्वस्थ वातावरण की कल्पना कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, गंदगी केवल देखने में खराब नहीं लगती, बल्कि यह अनेक बीमारियों को जन्म देने का कारण भी बनती है। खुले में कचरा फेंकना, जल भराव होने देना और सार्वजनिक स्थानों को अस्वच्छ रखना हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
0: दोस्तों, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का भी गहरा संबंध है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से तनाव कम होता है और मन को शांति मिलती है। जब हम हरियाली से घिरे वातावरण में होते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है।
1: सही कहा आपने साजिद, क्योंकि आज की तेज रफ्तार जिंदगी

दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और अब समय हो गया है हमारे विशेष सेगमेंट आज की बात का। आज हम बात करेंगे एक

0: में मानसिक तनाव एक बड़ी समस्या बन चुका है। ऐसे में यदि हम कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, पार्क में टहले, पौधे की देखभाल करें और खुले वातावरण में समय बिताएं, तो इससे मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है।
1: जी बिल्कुल, और पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संबंध हमारी जीवन शैली से भी है। यदि हम अत्यधिक प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, संसाधनों की अनावश्यक बर्बादी करते हैं या ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जिम्मेदारी जीवन शैली अपनाना समय की आवश्यकता है।
0: इसमें छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: जैसे घर से निकलते समय बिजली के अनावश्यक उपकरण बंद करना,
1: जी।
0: पानी को व्यर्थ न बहने देना, कपड़े या जूट के थैले का उपयोग करना, प्लास्टिक की बोतलों और थैलियों का कम से कम प्रयोग करना और अधिक से अधिक पेड़ लगाना।
1: जी हाँ, पेड़ पौधों की बात करें तो पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षक हैं। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जलवायु संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, तो इसका सकारात्मक प्रभाव दूरगामी हो सकता है।
0: तो युवाओं की भूमिका भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों।
1: बिल्कुल,
0: युवा वर्ग समाज में जागरूकता फैलाने, पर्यावरण संरक्षण अभियानों में भाग लेने और दूसरों को प्रेरित करने का कार्य कर सकता है। आज का युवा यदि पर्यावरण के प्रति जागरूक होगा, तो आने वाला कल निश्चित रूप से अधिक सुरक्षित और स्वस्थ होगा।
1: दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण कोई अलग विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। जब हम अपने आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, पानी और ऊर्जा की बचत करते हैं और प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहते हैं, तब हम खुद के साथ साथ समाज और देश के भविष्य को भी सुरक्षित बनाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा साजिद आपने, क्योंकि वास्तव में स्वास्थ्य जीवन की शुरुआत स्वस्थ पर्यावरण से होती है। यदि हम स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और संतुलित प्राकृतिक वातावरण चाहते हैं, तो हमें अपने व्यवहार और आदतों में से सकारात्मक परिवर्तन लाने ही होंगे।
1: तो आइए दोस्तों, आज हम सभी यह संकल्प लें कि पर्यावरण की रक्षा को केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। क्योंकि जब पर्यावरण स्वस्थ होगा, तभी हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और हमारा भविष्य भी स्वस्थ और सुरक्षित होगा।
0: और इसी सकारात्मक संदेश के साथ आज की बात के इस प्रथम चरण को हम यहीं पे विराम देते हैं। थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे राष्ट्र जीवन को सुंदर बनाने की दिवस के महत्व और राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका पर।
1: लेकिन उससे पहले समय हो गया है एक और सुरीले हिंदी फिल्म गीत का। आइए सुनते हैं आज का अगला गीत।
0: गीत के बोल हैं मैं तेरा बॉयफ्रेंड, फिल्म राब्ता से अरिजीत सिंह और नेहा कक्कर की आवाज में।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं युवानी आकाशवाणी पटना से। अभी आपने सुनी पर्यावरणीय स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण चर्चा, और उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जिसका विषय है राष्ट्र जीवन को सुंदर बनाने का दिवस।
1: जी हाँ आशुतोष, यह दिवस हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि किसी भी राष्ट्र की सुंदरता केवल उसकी प्राकृतिक संपदा, आधुनिक इमारतों या विकसित शहरों से नहीं आंकी जाती, बल्कि उसके नागरिकों के विचारों, व्यवहार, अनुशासन, स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी पर निर्भर होती है।
0: बिल्कुल साजिद, क्योंकि जब हम राष्ट्र जीवन को सुंदर बनाने की बात करते हैं तो इसका अर्थ है ऐसा समाज, ऐसा वातावरण तैयार करना जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। राष्ट्र निर्माण केवल सरकारों का कार्य नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही एक मजबूत और प्रगतिशील देश का निर्माण संभव होता है।
1: दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि देश के लिए कुछ बड़ा करने के लिए बड़े पद या विशेष अवसरों की आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तव में राष्ट्र निर्माण की शुरुआत हमारे दैनिक जीवन की छोटी-छोटी आदतों से होती है, जैसे सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना, यातायात नियमों का पालन करना, समय का सम्मान करना और समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना।
0: सही कहा साजिद आपने, क्योंकि यदि हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करें, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करें और अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी समझें, तो यह राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र को की पहचान होता है, इस बात की भी सिंबल होगा।
1: बिल्कुल, और राष्ट्रीय जीवन को सुंदर बनाने में अनुशासन की भूमिका

0: का भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन केवल विद्यालयों या कार्यालयों तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। अनुशासित व्यक्ति न केवल स्वयं प्रगति करता है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बनता है।
1: और सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है। यदि हम अपने आसपास के लोगों की सहायता करें, समाज में सद्भाव बनाए रखें और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील रहें, तो हम एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके नागरिकों की एकता और सहयोग की भावना में ही निहित होती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, आज का युवा वर्ग देश का वर्तमान भी है और भविष्य भी, इसलिए युवाओं की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। युवा यदि सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों और सामाजिक सरोकारों को अपनाएं, तो वे राष्ट्र के विकास की दिशा की नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं।
1: बिल्कुल साजिद, क्योंकि आज डिजिटल युग में हमारे पास जानकारी और अवसरों की कोई कमी नहीं है।
0: जी
1: आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करें। शिक्षा, जागरूकता और सकारात्मक भागीदारी के माध्यम से हम अपने देश को और अधिक सुंदर, सशक्त और विकसित बना सकते हैं।
0: तो आइए दोस्तों, इस अवसर पर हम भी सभी मिलकर, हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि स्वच्छता, अनुशासन, ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और एक बेहतर समाज तथा बेहतर राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे।
1: इसी प्रेरक संदेश के साथ आज के इस विशेष सेगमेंट को हम यहीं विराम देते हैं।
0: और अब समय हो गया है एक और शानदार हिंदी फिल्म गीत का, तो आइए सुनते हैं आज का अगला गीत।
1: गीत के बोल हैं जिंदगी से, शफ़ाक़त अली की आवाज़ में, फिल्म राज धीरे से।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं युववाणी और अब समय है हमारे अगले विशेष सेगमेंट का। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की। खेल हमारे जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है जो न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि व्यक्तित्व के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: सही कहा साजिद आपने, क्योंकि खेल केवल जीत और हार का नाम नहीं होता है, यह अनुशासन, समर्पण, धैर्य, आत्मविश्वास और टीम भावना का भी पाठ पढ़ाते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में खेलों को स्वास्थ्य और संतुलित जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है।
0: दोस्तों आज के दौर में तकनीक ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी शारीरिक गतिविधियां भी कम होती जा रही हैं। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल साधनों के बढ़ते उपयोग के कारण लोग पहले की तुलना में कम सक्रिय जीवन शैली अपना रहे हैं। ऐसे में खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है।
1: क्या बात कही है साजिद आपने, क्योंकि नियमित रूप से किसी न किसी खेल में भाग लेने से शरीर फिट रहता है। खेल हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं और कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव में मदद करते हैं। इसके साथ ही खेल मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में सहायक होता है।
0: दोस्तों खेलों की सबसे सुंदर बात है खेल भावना। खेल भावना का अर्थ है नियमों का सम्मान करना और परिणाम चाहे जो भी हो सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। यही भावना खेलों को केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम बनाती है।
1: खेलों का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है मानसिक विकास। जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसे हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना पड़ता है। वह जीत से उत्साहित भी होता है और हार से सीखता भी है। यही अनुभव उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करता है।
0: बिल्कुल, खेल हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास, मेहनत और दृढ़ संकल्प से प्राप्त होती है। यही सीख जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी साबित होती है, चाहे शिक्षा हो, करियर हो या व्यक्तिगत जीवन। खेलों से सीखे गए मूल्य हर जगह हमारी सहायता करते हैं।
1: आज भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में युवा खेल के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की उपलब्धियां नई पीढ़ी को प्रेरित कर रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय खिलाड़ी लगातार वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पा रहे हैं।
0: और युवाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों में भी भाग लें। खेल केवल पेशेवर खिलाड़ियों के लिए नहीं है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय खेल, योग, दौड़ या किसी शारीरिक गतिविधि को दें, तो इससे हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

0: अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हमें यही संदेश देता है कि खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और सकारात्मक सोच के लिए खेलों का कोई विकल्प नहीं है। खेल हमें जोड़ते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हमें बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने आशुतोष। तो आइए दोस्तों, हम सभी यह संकल्प लें कि अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय खेलों और शारीरिक गतिविधियों के लिए अवश्य निकालेंगे तथा स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को अपनाएंगे।
0: इसी संदेश के साथ आज के इस विशेष सेगमेंट को यहीं विराम देते हैं।
1: और अब बारी है एक और मनभावन हिंदी फिल्म गीत की। आइए सुनते हैं आज का अगला गीत।
0: गीत के बोल हैं, तुझे ही सोचता हूं, फिल्म जन्नत 2 से KK की आवाज में।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवानी। अब समय है हमारे आज के अगले विशेष सेगमेंट का। आज हम स्मरण करेंगे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, कवि और राष्ट्रभक्त पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को, जिनकी जयंती पर देश उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है।
2: बिल्कुल आशुतोष, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम साहस, त्याग और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया और युवाओं के लिए एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जो आज भी प्रेरणा देता है।
1: पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस था। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन और देश भर में स्वतंत्रता की चेतना धीरे धीरे मजबूत हो रही थी।
2: जब भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लिया जाता है तब काकोरी आंदोलन का उल्लेख अवश्य होता है। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को यह संदेश दिया कि भारतीय युवा अब स्वतंत्रता के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं।
1: पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की जयंती पर हम सभी उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें और देश तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सकारात्मक योगदान देने का प्रयास करें। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गाना जिसके बोल हैं इश्क सूफियाना, फिल्म द डर्टी पिक्चर से कमाल खान की आवाज़ में।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: दोस्तों, अब समय हो गया है खेल जगत की ताजा खबरों पर नजर डालने की। स्वागत है आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स अपडेट सेगमेंट में। तो आइए जानते हैं आशुतोष से स्पोर्ट्स अपडेट।
2: स्पोर्ट्स जगत में सबसे अधिक चर्चा हो रही है फीफा विश्व कप 2026 की, जिसका दुनिया भर में फुटबॉल प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार विश्व कप कई महीनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। 2026 में पहली बार 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही यह विश्व कप अब तक का सबसे बड़ा विश्व कप होगा जिसमें 32 नहीं बल्कि 48 टीम हिस्सा ले रही है। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। 12 समूह में विभाजित टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी और इससे दुनिया के अधिक देशों को विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। हम अपने सबसे बेहद जिज्ञासु श्रोताओं का यह सेगमेंट रोचक तथ्य की ओर, जिसमें रोचक बात भी होती है और ज्ञान भी बढ़ा रहता है। आज 11 जून है, तो शुरुआत करते हैं इसी दिन से जुड़े एक विशेष रोचक तथ्य के साथ। क्या आप जानते हैं कि एफएम रेडियो के आविष्कार एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रांग ने 11 जून 1935 को अमेरिका के न्यूयॉर्क जर्सी में पहली बार दुनिया के सामने एफएम रेडियो का प्रसारण का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था?
1: जी हाँ, उस समय रेडियो प्रसारण मुख्य रूप से एएम तकनीक पर आधारित था, जिसमें शोर और व्यवधान की समस्या अधिक होती थी।
2: आर्मस्ट्रांग द्वारा विकसित एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तकनीक ने रेडियो प्रसारण की गुणवत्ता को एक नई दिशा दी, जो आज हम स्पष्ट और बेहतर ध्वनि गुणवत्ता वाले एफएम प्रसारण सुनते हैं, उसकी नींव इसी ऐतिहासिक प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आपसे बातचीत करते हुए हमें समय का ख्याल भी नहीं रहा कि 1 घंटे गुजर गए हैं और हम आ गए हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। उम्मीद है आज की यह प्रस्तुति आपके लिए ज्ञान, जागरूकता, प्रेरणा और मनोरंजन का एक संतुलित संगम रही होगी। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें अपने फीडबैक ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है feedback@patna@gmail.com। ईमेल एक बार फिर से सुन लीजिए, feedback@patna@gmail.com।
1: तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का, लेकिन यह मुलाकात यही समाप्त नहीं होती। हम फिर मिलेंगे नए विषयों, नए सोच और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सकारात्मक बने रहिए।
2: साथ ही खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन की गारंटी है और जिम्मेदार नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने

0: छोटे कार्यों में सुधार लाएं तो वही मिलकर एक बड़ा सकारात्मक नींव रखते हैं। तो दोस्तों, आप अपना बेहद ही ख्याल रखिए और अपनों का भी बेहतर ध्यान रखिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। अगला कार्यक्रम मैथिल कार्यक्रम होगा भारती।

मैथिली कार्यक्रम भारतीय सुनानिहार समस्त श्रोता के प्रभातक सादर नमन। श्रोता मित्र, आज कार्यक्रम में हम सब गीत नादक आनंद लेब। गीत नाद प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार झा, संगे डॉक्टर डॉक्टर पुतुल प्रियंपदा से काव्य रसक रसास्वादन से करब, मुदा ऐसे पूर्व किछ अपना में दुटप्पी से करब। देखू श्रोता मित्र, आजुक व्यस्त जीवन शैली में जत लोक एक ठाम बैस घंटों घंटा काज करे छथि, हुनक शारीरिक सक्रियता बड कम भ गेल छनि, एहन में स्वस्थ रहबा लेल योग व्यायाम संगहि विविध खेल बड जरूरी भ गेल छैक। ई खेल हमरा अहाँक जीवनक एक गोट अभिन्न अंग थिक। ई मात्र मनोरंजन केर साधन नहि किम्बा हमरा सभक शारीरिक आ मानसिक स्वास्थ्य केर मूल आधार थिक। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवसक मूल उद्देश्य खेल कर शक्ति के बूझब, समाज में शांति एकता के बढ़ाब, स्वस्थ आ विकसित समाज लेल खेल के बढ़ावा देव सेहो परम आवश्यक। खेल हमरा सबके एगोट स्वस्थ जीवन शैली अपनाब के लेल सेहो प्रेरित करित अछि। श्रोता मित्र, नियमित रूप से खेल आ व्यायाम कैला से शरीर के अतिरिक्त कैलोरी कम होइत अछि, अहिसँ वजन नियंत्रित रहैत छैक, संगे अहिसँ बहुतो बीमारी सेहो दूर रहैत अछि। खेलसँ शारीरिक ढांचा मजबूत रहैत छैक आ कार्य प्रणाली सेहो ठीक रहैत अछि। खेल शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह नीक राखैत अछि, जाहिसँ हृदय स्वस्थ रहैत छैक। तहिना शारीरिक रूपसँ सक्रिय रहलासँ रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ैत अछि। खेल शारीरिक संगे मानसिक रूप से सेहो स्वस्थ रखैत अछि। एहिसँ शरीर में एंडोर्फिन नाम के हार्मोन निकलैत छैक, जेकरा खुशी के हार्मोन सेहो कहल जाइत अछि। ई तनाव चिंता के कम करैत अछि, एहिसँ टीम भावना आ ओहिसँ जीवन में सब तरहक उतार चढ़ाव में स्वयं के संतुलित रखबाक शिक्षा सेहो भेटैत छैक। तहिना नैना सबके लेल सेहो खेल बड़ आवश्यक अछि, एहिसँ जोड़लासँ ओ सब स्वस्थ आ तंदुरुस्त सेहो रहता। ताओ हम सब अपना जीवन में योग आ खेल के अपनाबी आ स्वस्थ रही। ई तो छल किछु।

ना में दुटप्पी आओ अब हम सब कार्यक्रमक आंगन में प्रवेश करी आ सर्वप्रथम अपने सबके सुनबै छी ई देवी गीत कलाकार छथि अशोक कुमार झा सुनल जाए।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: विराम से पूर्व सुन रहल छलहुँ देवी गीत अशोक कुमार झा के स्वर में, इनका धन्यवाद दियन। कार्यक्रम में हिनका से आर हम सब गीत नादक आनंद लेब, मुदा एखन सुनै छी काव्य पाठ। कवियत्री छथि डॉक्टर पुतुल प्रियंवदा।
4: हमर पहिल कविता अछि

जखन मारल चान कुहरे धरा झमारल लाज पुनि पुनि एते।

छे हम सब जता देल जय राम संतत छे हम सब जता देल जय रीन मैटियो के किछु त सधा देल जय।

उदत जखन शत्रु होय, राखी मस्तक की हेतै कटा देल जाय, राखी मस्तक की हेतै कटा दे।

आओ उजरल घर कहू बसा देल जाय, आओ उजरल घर कहू बसा देल जाय, ऋण मटियो के किछु तऽ

किछु तऽ सदा देल जाय, पीर कतबो प्रबल मीत जँ हो नबल।

किछु तऽ सधा देल जाय। जाति आ धर्ममे हम नहि फँसबै पुतुल, जाति आ धर्ममे हम नहि फँसबै पुतुल, से जन जनके पुनि पुनि चेता देल जाय। से जन जनके पुनि पुनि

0: किछु तऽ सधा देल जाय।
1: काव्य पाठ सुनि रहल छलहुँ। कवयित्री छली डॉक्टर पुतुल प्रियंवदा, हिनका धन्यवाद दियनि। एखन आओ श्रोता मित्र कार्यक्रममे सुनै छी हमसब महेश वाणी अशोक कुमार झा केर स्वरमे।

महेशवाणी सुनि रहल छलहुँ एखन। देखू श्रोता मित्र, ईमानदारी के मनुखक जीवनक सबसँ उत्तम नीति कहल गेल अछि। ई मात्र साँच बाजब नहि, किम्बा अपन काज, विचार आ रिश्तामे पारदर्शी आ विश्वस्त बनब सेहो अछि। ई जीवनके सरल आ तनाव मुक्त बनाबैत छैक। ईमानदारीवला गुण भेलासँ लोक मानसिक शान्तिके अनुभव करैत छथि। हुनका बेर बेर झूठ नहि मोन राखऽ पड़ैत छनि, किएक तऽ ओ सतत साँच बजैत छथि। एहिसँ रिश्ता मजबूत होइत छैक। व्यक्ति अपना नजरिमे सदिखन ऊँच रहैत अछि। झूठसँ तात्कालिक लाभ भेट जायत, मुदा दीर्घकालिक लाभ साँच दियाबैत अछि। ई गुण चरित्रके निखारैत छैक, एहि गोट मनुखके सफल सेहो बनाबैत अछि। तैँ एहि ईमानदारीवला गुणके अवश्य अपना जीवनमे अपनाबी। एखन आउ कार्यक्रमक

समापनसँ पूर्व अपने सबके सुनबैत छी ई नचारी। कलाकार छथि अशोक कुमार झा। आनन्द लेल जाय।

के संगे ठनका सेहो खसि सकैत अछि बहुत रास ठाम। तैं हमरा सबके घर से बाहर निकलैत काल विशेष रूप से जखन अन्हर तूफान आ बरखा होइत रहे तो घर से बाहर हमसब सतर्कता के संगे निकली, संगे बरखा के आनंद ली। आजुक भारती कार्यक्रम में एतबे, पुनः अगला कार्यक्रम में अपने सबसे भेंट होयत, ढेर रास गीत नादक संग उपस्थित होयब। प्रभात के विदा देल जाय, बेस्त शुभ साँझ।

अभी आप सुन रहे थे मैथिल कार्यक्रम भारती, ये आकाशवाणी पटना है। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की।

अब से कुछ ही देर के बाद आप सुन सकेंगे भोजपुरी बुलेटिन। संस्कृत समाचार का वक्त होगा 6:20 पर और ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल आप सुन सकते हैं 6:30 पर। खेती गृहस्थी का वक्त है संध्या 7:00।

सुगम संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:52 पर सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण रात्रि 8 बजे किया जाएगा और सुगम संगीत का वक्त होगा 8:35।

समाचार क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में प्रसारित किए जाएंगे। 8:45 से प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाता है और कंट्री वाइड यह कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 9:30 पर। इनसाइट्स, इसका प्रसारण 9:45 पर किया जाएगा।

श्रोताओं, ये संक्षिप्त जानकारी थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आगे आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन।

प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ निखिल आनंद गिरी से भोजपुरी में समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले बाड़न कि दुनिया में मचल उथल पुथल और अस्थिरता के दौर में भी भारत पूरा भरोसा और मजबूत इरादा के साथे विकास के राह पर आगे बढ़ रहल बा। श्री मोदी नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वां शासी परिषद के बैठक के अध्यक्षता करत घड़ी ये बात कहले। प्रधानमंत्री कहले कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़त बा, वैसे ही केंद्र और राज्य सरकारन के सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़त जात बा। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत सभ्य राज्यन और केंद्र शासित प्रदेशन के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल लोग शामिल रहे। बिहार विधान परिषद के 10 सीट खातिर सभ्य उम्मीदवार लोग निर्विरोध चुन लिहल गइल बाड़न। 10 सीटन पर भयली चुनाव में एनडीए 9 सीट पर और महागठबंधन 1 सीट पर जीत हासिल कैले बा। भाजपा से भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित के जीत मिलल बा। ओहिजा जदयू से स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद जीतल बाड़े। चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी के जीत मिलल बा। महागठबंधन की ओर से 1 सीट पर राजद के सुनील कुमार सिंह जीतल बाड़न। बिहार में मॉनसून अपन दस्तक दे दिले बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार आ मधुबनी जिला में पहुंच चुकल बा। ए बार मॉनसून अपन तय समय से 6 पहले बिहार पहुंचल बा। विभाग कहलस कि मॉनसून के फैलाव खातिर अनुकूल परिस्थितियन बनल बा आ अगला 2-3 दिन में पूरा राज्य में मॉनसून के बुन्नी पड़ल शुरू हो जाए। ए दौरान पिछला 24 घंटा में मॉनसून के प्रभाव से किशनगंज जिला में भारी बरसात दर्ज कैल गई बा। तैयबपुर में रिकॉर्ड 148 मिलीमीटर बरसात भइल बा। विभाग अपना पूर्वानुमान में कहले बा कि काले राज्य के बेसी हिस्सा में बरसात के संभावना बा। ए समय पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आ गोपालगंज जिला में बहुत भारी बरसात के चेतावनी जारी कैल गइल बा। साथ ही अररिया, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया आ सहरसा समेत 14 जिला में भारी बरखा के अलर्ट भी जारी बा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग राजस्व महाअभियान के तहत आयल अर्जियन के निपटाए खातिर आज से सभ्य अंचलन में विशेष अभियान के शुरुआत कैले बा। 17 जून तक चले वाला ई अभियान के दौरान 46 लाख आवेदन के पूरा करे के लक्ष्य रखल गइल बा। पटना के डुमरी में 100 एकड़ में खेल सिटी के निर्माण कैल जाए। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह आज विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान ई जानकारी दिले। उ बतौली कि अरवल, मधेपुरा और किशनगंज जिला में 15 जून से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू हो जाए। साथ ही सीवान, मुंगेर और जमुई में फुटबॉल खातिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनावल जाए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट के शैक्षणिक स्तर 2026-28 में एडमिशन के खातिर तीसरा चयन सूची माने थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर देले बिया। पहली और दूसरी लिस्ट के बाद बच्चल सीट के आधार पर तैयार कल गई सूची में शामिल छात्र लोग 14 जून तक अपन अपन स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले सकी हैं। आर्थिक अपराधी

0: कई ईओयू के टीम हाजीपुर नगर परिषद के अकाउंटेंट मनीष कुमार के दू गो ठिकाना पर छापेमारी कैलस। मिलल जानकारी के मुताबिक उनके हाजीपुर के बागमली स्थित घर और नगर परिषद ऑफिस कैंपस में बनल सरकारी आवास पर छापा मारल गई। कमाई से ज्यादा संपत्ति के मामला में ई कार्रवाई कैल गई बा। छापेमारी के दौरान लाखों रुपया के गहना, आलिशान घर, संपत्ति के कागजात और गाड़ी बरामद कैल गई बा। रोहतास जिला के डेहरी स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दौड़ के दौरान 5 को ट्रेनी जवान भारी गर्मी के चलते बेहोश हो गए हैं। एमे से एगो ट्रेनी सिपाही श्रीराम कुमार के पटना एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। पश्चिम चंपारण जिला के बगहा से फेसबुक पर हथियार के साथे फोटो वायरल करे के मामला में 3 गो आरोपी लोग के गिरफ्तार कैल गई बा। इनकर पास से एगो देसी पिस्तौल भी बरामद भइल बा। बक्सर जिला के डुमराव और राजपुर प्रखंड में विशेष टीम संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चला के 4 गो बाल मजदूरन के मुक्त करौलस। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।
1: ये आकाशवाणी पटना है, आइए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शिकार का ये गीत, मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

इस कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश की आवाज में, फिल्म छलिया से, कमर जलालवादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई है।

0: कार्यक्रम कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

0: कारितम् वित्तमन्त्रालयेन एकया अधिसूचनया प्रकाशितं यत् द्वाविंशतितः त्रिंशत् प्रतिशन्मितं एथनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पादं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क श्रेण्यात् पूर्णतया विमुक्तम्। मन्त्रालयेन उक्तं यत् अस्य शैथिल्यस्य उद्देश्यं भारतीय एथनॉल मिश्रण कार्यक्रमं सुदृढीकरणमस्ति। षड्विंशत्यधिक द्विसहस्रतम वर्षस्य फीफा विश्व चषक क्रीडायाः आरम्भः अद्य रात्रौ मेक्सिको नगरस्य ऐतिहासिके एस्टाडियो एजेटेका क्रीडागृहे आरभ्यते। इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम। तो प्रीति बहन हम हाजिर हो गए हैं ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर
1: जी।
0: के।
1: बिल्कुल अतुल भाई, और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो इस कार्यक्रम को सुनकर कुछ तो नई जानकारी उन्हें मिले, और साथ
0: बिल्कुल
1: में मनोरंजन तो हमारा हिस्सा रहता ही
0: बिल्कुल।
1: है।
0: देखिए मनोरंजन क्या, आज का जो हमारा प्रोग्राम होता है गुरुवार का दिन है, गुरुवार के दिन होता है हमारा SMS पर आधारित लोक संगीत का
1: जिसका
0: सर्वाइवल
1: इंतजार भी बहुत
0: कार्यक्रम,
1: रहता है
0: जिसका इंतजार
1: हमारे
0: रहता है हमारे सभी दर्शकों को,
1: श्रोताओं को।
0: श्रोताओं को।
1: और क्योंकि आज एक खास दिन है, वैसे तो हमारे देश में हमारी जो मातृभूमि है उसमें कई ऐसी शख्सियत रही हैं जिन्होंने बलिदान दिया हमारे देश को बचाने के लिए, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, हमेशा ही करते हैं, लेकिन आज है राम प्रसाद बिस्मिल जी का दिन, जो कि एक बड़े क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने मैनपुरी और काकोरी घटना में शामिल होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंका था आज़ादी का।
0: बिल्कुल। और देखिए एक स्वतंत्रता संग्रामी होने के साथ साथ

0: गोर लागत नहीं चंपा बहिन?
1: हाँ खुशी रह सुखिया बहिन, बहुत दिन के बाद भेट गयो अहाँ।
0: हाँ बहुत बहुत लंबा समय का सब कुछ व्यस्तता तो रहबे न करेला।
1: हाँ देखियो अपन काज काज के अलावा भी किछ सामाजिक काज किछ मनोरंजन के काज रहबे करे छै, तो सही में ही आदमी उलझ जाइए। हाँ आई एकटा बहुत खास दिन अछि, विश्व नाट्य दिवस है ना। विश्व नाट्य दिवस मनाबे के शुरुआत 29 अप्रैल 1982 में भेल छल। एकरा मनाबे के उद्देश्य अछि कि लोकक बीच नृत्य के या नाटक के महत्व बताएब अछि। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट के अंतर्राष्ट्रीय डांस कमिटी अकर ई नाम देलक अछि। नृत्य नहीं सिर्फ एक कला के रूप में अछि, बल्कि ई व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य

0: के लिए भी बेहद फायदेमंद
1: होय छे।
0: ई एक आनंददायक आ प्रभावी फिटनेस व्यायाम से हो गई छे।
1: सही बात बा। और देखिए जैसन रोआ कहनी कि भाई एकर शुरुआत जन बा है ना डांस कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा कल गए रहे और सबसे बड़ा चीज बा कि नृत्य हो के नाटक हो के एकरा
0: मनोरंजन के साथ साथ ई कला जीवंत रहे
1: जीवंत रहे
0: लोग के बीच में अखनो एकर महत्व किछ लोग के बुझा में कनी कम अवैया एकर वैल्यू नहीं कि नचनिया छे एकर कला के अनादर करने जखन की सही में जे डांस करिए नृत्य करैत छथ हुनकर अहाँ फिटनेस शरीर के देख लेब एक तरह से वो जाने अनजाने में बहुत बढ़िया व्यायाम भ जाए छे।
1: सबसे बड़ा चीज बा कि समाज में जो भी कृति बा के एक सशक्त माध्यम बा कि मंच पे जाके है ना
0: हाँ।
1: इसे देश समाज

0: जाने अनजाने में
1: हाँ
0: बहुत
1: एकदम
0: बढ़िया
1: एकदम
0: व्यायाम भ
1: सही कहा।
0: जाइ
1: और
0: छे।
1: सबसे बड़ा चीज बा कि समाज में जो भी कुरीति बा ओकरा के एक सशक्त ये माध्यम बा कि मंच पे जाके है ना,
0: हाँ,
1: इसे देश समाज और लोग के विचार धारा में जो परिवर्तन
0: दर्शकों
1: बा।
0: भी
1: हाँ
0: अपनापन आबि जाइ छै, एक
1: हाँ
0: दूसरा से मिललक, एक दूसरा के रुचि जानलक,
1: हाँ
0: एक दूसरा के प्रति अपन भाव प्रकट भेल,
1: करेक्ट
0: तो
1: करेक्ट
0: ई एकटा साधन। 24 घंटा तो आदमी काजे में व्यस्त नहीं रह सकियो, कोनो
1: हाँ
0: मशीन तो छै नहीं,
1: ना भाई
0: ओ मशीन के कनी आरामो चाहिए, कनी वातावरण अलगो चाहिए।
1: हाँ थोड़ा
0: तो ऐ सब के लेकर के सही में ई नाट्य आर्ट जे अच्छे ई बहुत ही प्रभावकारी अच्छे, लोक एकरा भी अपनावे, लोकक बीच अखनो ई अच्छे।
1: हाँ सही सही बात
0: देखियो, जाहिमे भारी वजन उठाएब वा दर्दनाक खिंचाव के आवश्यकता नहि होइत अछि। विश्व नृत्य दिवस की पूरा दुनिया में मनाबे के उद्देश्य अछि कि जन साधारण के बीच नृत्यक महत्व के अलख जगाएब,
1: सही
0: संगहि लोकक ध्यान विश्व स्तर पर एहि दिस आकर्षित करब अछि, जाहिसँ लोक के नृत्यक प्रति जागरूक पसरे। एकरा अतिरिक्त सरकार द्वारा पूरा विश्व में नृत्यक शिक्षा के सब प्रणाली में एक उचित जगह उपलब्ध कराएब अछि। वर्ष 2005 में नृत्य दिवस के प्राथमिकता शिक्षा के रूप में केंद्रित कयल गेल। आप तो देखबे कि सब स्कूल कॉलेज में
1: हाँ
0: एक नृत्य के शिक्षक या शिक्षिका अछि,
1: एकदम
0: आ
1: हाँ
0: एकटा पर्याप्त क्लास एकर होइत अछि,
1: बिल्कुल बिल्कुल होबे करत
0: ताकि बच्चा सबके शुरू से ही
1: हाँ
0: एकरा प्रति जागरूक रहे,
1: जागरूक
0: आई
1: रहे
0: चीज के
1: हाँ एक रुझान रहे। और
0: हाँ
1: देखिए सबसे बड़ा चीज ये भी बा चंपा बहिन कि कहे के मतलब कि रुआ समझ ली कि हिंदी में नाटक के शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के मानल जाला। भारतेंदु हरिश्चंद्र समकालीन नाटककार लोक चेतना के विकास खातिर सामाजिक समस्या के नाटक के अभिव्यक्ति होके के एक अच्छा अवसर एकरा से जोन बा हमनी के व्यक्त कर सकतनी, और समाज में जो कुरीति बा ओकरा से हमनी के निजात भी पाई, लोग के विचारधारा के हमनी के बदल सकतनी। हाँ हाँ हाँ हाँ सही सही बात बा।
2: आई खुशी में
1: हाँ
2: एकटा गीतो है
1: एकदम एकदम काहे नहीं,
2: तो
1: चली
2: नीतू कुमारी नूतन से
1: हम
2: सुनी गीत
1: सुनल जाओ।

0: बहुत बढ़िया है ना चंपा बहन।
1: बढ़िया लगा कि एक और गीत सुन ली।
0: हाँ हाँ एकदम एकदम मन के बात चल जाओ सुनल जाओगे और गीत नचारी।

0: कार्यक्रम के समय से हो बहुत ही कर रही
1: हाँ
0: थी
1: हाँ हाँ एकदम
0: सुनी प्रायोजित कार्यक्रम
1: आयुष्मान।
0: आयुष्मान।
2: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

0: आयुष्मान पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में आप सबों का एक बार फिर से राजेश, जी हाँ मेरा नाम राजेश है, स्वागत करता है। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके घर आंगन में लेकर आते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं आपके इस कार्यक्रम में। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सारे लोगों की बात होती है, हेल्दी रहने की बात होती है। विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलने वाला मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। बहुत ही उम्दा अस्पताल, 1200 बेड का ये अस्पताल है और NMCH अपने आप में पूरे इलाके के हेल्थ सेक्टर को संभाले है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पर भी यहां इलाज किया जाता है। ऐसे इस अस्पताल की एक विशेषता बताएं कि यहां से पैसे के लिए कोई वापस नहीं जाता। नोट करें नंबर कि अगर आपके पास कोई समस्या है, घर में, बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, यानी जहां भी समस्या है, इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और सही लगे तो जाकर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नंबर है 6206803040। जी हाँ, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 6206803040। आप दिल खोल कर, हाँ, कहीं से संकोच नहीं कीजिएगा कि हाँ क्या इस समय फोन करें कि कब फोन करें। नहीं नहीं, हमने आगे से आपके लिए ये नंबर दिया है, फोन करने के लिए नंबर दिया है, तो शर्माने की या सकुचाने की या संकोच करने की या आहा इफ बट ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, हमारा पहला और अंतिम मकसद यही है। हम बच्चों की भी बात करते हैं, समय समय पर डॉक्टर रजत कालरा को भी लेकर आते हैं क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए, उसके हृदय के इलाज के लिए अगर कोई समस्या है बच्चे के हृदय में, तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बहुत ही उम्दा व्यवस्था है। आज हमारे साथ रजत कालरा है, लेकिन हम कहेंगे कि वो खुद से अपना परिचय दें क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ, इस कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं क्योंकि फोन कॉल्स बताते हैं। कोई कहता है पहली बार मैंने सुना, कोई दूसरी बार सुना, कोई कहता है हमने आपको फोन किया था। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना परिचय पहले खुद से दीजिए पूरे बिहार और झारखंड के लोगों को।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत कालरा है। मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, यानी मैं हार्ट के ऑपरेशन करता हूँ, खासकर बच्चों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका हम नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में अब इलाज कर रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग दिल्ली एम्स से करी थी और उसके बाद खासकर बच्चों की ट्रेनिंग के विषय में मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया आया और नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में हम बच्चों के हार्ट का फ्री इलाज कर रहे हैं।
0: डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ क्या कहना चाहिएगा इस पर?
1: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गाँव जैसे जगहों पे। पर अब धीरे धीरे खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ, रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है।

0: बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम्स बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है, जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है, और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं। बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
1: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
0: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामढ़ी, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली NCR से भी पेशेंट आ रहे हैं।
1: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबों के घर आंगन में, आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे, कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नंबर है 6206803040। जी हाँ, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 6206803040। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके, और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
0: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना, तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहाँ पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे, उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायने नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन हैं, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
0: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर OT है, ICUs में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, मॉडलर ICUs है, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास है। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों के इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों क्यों होता है ये ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में, कैसे आती है?
0: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है, तो ये पता तभी लगता है, ऑफ कोर्स जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे की हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है, तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है, तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहां पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है, तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है। और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए,
1: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका।

0: डॉक्टर साहब का कहना है, कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नंबर है 6206803040। जी हाँ, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं 6206803040। ये नंबर है, इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहाँ इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है, क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
1: देखिए, मैल न्यूट्रिशन जहाँ तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मैल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयाँ जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट के बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
0: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी हम लोग एक तो आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामढ़ी, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो एक दूसरे को बताएंगे, बहुत पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
0: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी रीच हरेक सप्ताह करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नंबर है 6206803040। जी हाँ, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं 6206803040। तो बस आज हमें, यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
2: आयुष्मान,
0: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
3: तो चंपा बहन, अभी
4: हमने सुन लो हमसे।
3: प्रायोजित
4: कार्यक्रम आयुष्मान।
3: हाँ तो
4: यही के संगे

0: आंगन के।
1: आंगन के समय संपन्न भ रहा है कि
0: हाँ हमने
1: कनी
0: के
1: कालक बाद हम सब खेती के बात कर।
0: करब।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हाँ चंपा बहन,
1: हाँ
0: तब आजकल सब का कुछ हो रहल बा देखी भाई।
1: देखियो अखन तो समय जे छे से खरीफ फसल के लेल खेतक तैयारी, फसल के कोन
0: हाँ
1: खेत में कोन बीज बुआते, आ
0: हाँ
1: खास करके धान के बात कैल जाए। फसल में सबसे पैघ राजा मानल जाइत अछि धान के, है
0: धान के। हाँ हाँ
1: ना।
0: हाँ
1: तो अखन धान के नर्सरी तैयार करे के समय अछि,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: ओकरे तैयारी में लागल छी।
0: लाग। अच्छा।
1: धान के नर्सरी तैयार करे के लेल सबसे पहिने खेतक जुताई कर माटि के भुरभुरी बना ली, एकर बाद उचित मात्रा में बीज उपचार कर अंकुरित बीज के क्यारी में समान रूप से छिड़क दी। धान के नर्सरी तैयार करे के लेल मई के अंतिम सप्ताह से जून माह के पहल पखवाड़ा एकदम अखन प्रयुक्त
0: एकदम पर
1: समय है।
0: हाँ एकदम उपयुक्त
1: हाँ,
0: जगह कहल जाला एकदम समय
1: पहल
0: जोन।
1: पखवाड़ा के समय सबसे उपयुक्त मानल जाइत अछि। मध्यम आ सामान्य धान 5 जून से 15 जून सही समय अछि,
0: अच्छा
1: ओकरो
0: हाँ
1: लेल इहे मास काफी अछि।
0: हाँ हाँ हाँ
1: स्वस्थ आ मजबूत पौधा प्राप्त करे के लेल सही तरीका से नर्सरी तैयार करब बहुत महत्वपूर्ण अछि। नर्सरी तैयार करे के मुख्य आ आधुनिक विधि एना अछि, स्थानक चुनाव पहिने।
0: हाँ सबसे पहला बात
1: हाँ,
0: वही बा।
1: नर्सरी के लेल एहन जगह के चयन करी जतय रौद अबैत हुए, धूप
0: हाँ,
1: अबैत हुए,
0: जरूरी बा।
1: पानक निकासी नीक हो आ आसपास कीड़ा व दीमक के प्रकोप
0: ना
1: नहीं
0: होके
1: हो।
0: के चो बिल्कुल।
1: जमीनी क्यारी, अब ओकरा क्यारी पर आबि जाऊ। खेत में 1 मीटर चौड़ा, 3 मीटर लंबा आ जमीन से 15 सेंटीमीटर ऊंच
0: हाँ
1: क्यारी बनाबी। क्यारी के बीच में पानक निकास के लेल 30 सेंटीमीटर के नाली बना ली।
0: हाँ
1: माटि में नीक जकाँ सड़ल गोबर के खाद व बर्मी कंपोस्ट मिला दी।
0: डाले के चाहिए। हाँ
1: धानक बीज तैयार करे के प्रक्रिया में मुख्य रूप से बीज के चुनाव, खारा पानी से छटाई, अंकुरण आ नर्सरी के तैयारी शामिल अछि।
0: बहुत
1: नर्सरी शुरू करे के लेल एक सटीक कार्य योजना आवश्यक अछि। सबसे पहिने अपन क्षेत्र में पौधा के कतेक मांग अछि से बुझि ली। एकरा लेल कम से कम 500 वर्ग फीट जगह के चयन
0: हाँ
1: करी।
0: अच्छा
1: एकर बाद स्थानीय कृषि व उद्यान विभाग सँ नर्सरी के लाइसेंस लऽ कऽ
0: हाँ
1: नर्सरी के पौधा लगाबी। एक बात हमेशा ध्यान में राखी कि सही समय एवं सही बीज से नीक नर्सरी तैयार भ
0: तैयार
1: सकत।
0: होके बहुत
1: लोग
0: बहुत।
1: कहै छै कि जे
0: हाँ हाँ
1: जखन पौधे आ बीज
0: हाँ
1: खराब रहते
0: कमजोर
1: तऽ ओ
0: होए
1: फसल केना
0: कोई
1: हेतै,
0: कोई एकदम ना, वो तो
1: ताहि लऽ कऽ
0: फसल
1: ये अखन आरंभिक समय अछि,
0: समय सही समय
1: तो
0: बा।
1: एकरा
0: हाँ
1: नीक
0: हाँ
1: जकाँ देखरेख
0: हाँ करे
1: करी।
0: के चाहिए। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया। और देखिए धान के कहलो जाला कि अच्छा पैदावार खाती जोन बा उन्नत बीज के, जो रोआ बात
1: हाँ
0: कहतनी
1: हाँ
0: ओकर चुनाव बहुत जरूरी बा, ओकर खास करके जोन रोआ बतौनी कि उपचार भी जरूरी बा, है ना। और बीज के तो सही बात बा कि बीज के जो बात करनी, अगर सही में अगर वो स्वस्थ ना हुई तो भाई हमने के वो धान के जोन पैदावार बा जोन
1: फसल
0: फसल
1: नहीं
0: बा वो
1: बढ़िया
0: ना हो
1: ना हो
0: सकता। सही
1: सकते,
0: बात। और
1: खाखिए भ गेल,
0: हाँ
1: धान
0: हाँ
1: आके लागत लेकिन ओकरा अंदर से चाउर गायब
0: हाँ
1: रहै छै,
0: गायब हो जाए तो कोनो
1: तो
0: फायदा
1: इस
0: ना।
1: कोई कोनो किसान के मेहनत समय
0: हाँ,
1: सब
0: सही
1: बर्बाद करते।
0: सही सही बात।
1: नर्सरी तैयार करब में बहुत बात के ध्यान देव के अच्छी
0: हाँ
1: और
0: जरूरी
1: ध्यान
0: बा
1: देव के चाहिए।
0: चाहिए। हाँ तो अब का विचार चंपा बहन?
1: हाँ, गीत नाद के बात है।
0: एकदम एकदम काहे ना। तो आज हमने के

0: वाह वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर गीत, बोल भी उतना ही सुंदर, स्वर भी उतना ही
1: हाँ,
0: सुंदर
1: समय रहा
0: है।
1: तिनका
0: हाँ,
1: साहू से हो सुनो,
0: सुना जाए। हाँ
1: अखन एक वार्ता सुनी।
0: हाँ हाँ
1: विषय पशुओं में रेबीज रोग, वार्ताकार डॉक्टर रविकांत निराला।
0: सुने के।
2: मैं डॉक्टर रविकांत निराला, पशुओं में रेबीज रोग कारण लक्षण रोग जनन निदान नियंत्रण वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बातें बताने के लिए आया हूं। मैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। रेबीज विश्व का सबसे प्राचीन घातक एवं सर्वाधिक भयावह जूनोटिक रोग है जो सभी स्तनधारी पशुओं को प्रभावित कर सकता है। यह रोग रेबीज लाइजा वायरस के संक्रमण से उत्पन्न होता है जो मुख्य रूप से संक्रमित पशु के लार के माध्यम से काटने, खरोचने अथवा खुले घाव के संपर्क में फैलता है। रेबीज वायरस अत्यंत न्यूरोट्रोपिक होता है और यह विशेष रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से संक्रमित होकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डेवलप होता है और वहां पर नेगरी बॉडी बनाता है और वही सबसे घातक होता है। नेगरी बॉडीज क्या है, न्यूरॉन्स जो सेल्स हैं उसमें साइटोप्लाज्म में इसिनोफिस और बैसोफिस काफी बढ़ जाता है। इस तरह से तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, आक्रामकता, लकवा और इरेक्टाइल पेनिस भी होता है 4-5 घंटे तक और इसमें हाइड्रोफोबिया होता है, अंततः पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। जितना नजदीक बाइटिंग होगा, जितना नजदीक खरोच आएगा CNS से, उतना तेजी से ये प्रभावित करता है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होकर के आगे बढ़ता है और अल्टीमेटली CNS तक पहुंचता है। एक बार लक्षण दिखाई देने पर यह रोग लगभग 100% मृत्यु दर रखता है, अतः इसकी रोकथाम के लिए टीकाकरण एवं जैव सुरक्षा उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक, या यूं कहें कि 10 दिन से लेकर के 3 महीने तक होता है। कभी कभी 3 महीने के बाद लक्षण दिखते हैं। जितना सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूरी में इसका अटैक होगा उतना ज्यादा देर इसको वहां पहुंचने में लगेगा। भारत सहित विश्व के अधिकांश विकासशील देशों में रेबीज एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। भारत में लगभग 36% मानव रेबीज मृत्यु विश्व में होती है। पशुओं में रेबीज का प्रभाव केवल जैविक स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्तर व्यापक हानिकारक परिणाम उत्पन्न करता है। रेबीज की उत्पत्ति लाइजा वायरस से होती है जिसको रेबिड वायरस भी कहते हैं। विभिन्न पशुओं में रोग की अभिव्यक्ति, निदान, तकनीक, रोकथाम, नियंत्रण, जैव सुरक्षा उपाय तथा भारत में इसकी वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई है। यह स्तनधारी पशुओं, मनुष्य दोनों में होता है और अपने आप में विशिष्ट है क्योंकि लक्षण विकसित होने के बाद इसका कोई उपचार संभव नहीं है। यह रोग एक बहुआयामी समस्या है जिसमें पशु स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण कारक और सामाजिक व्यवहार सभी सम्मिलित होते हैं। इसको मैड डॉग डिजीज नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अधिकांश मामलों में आवारा या संक्रमित कुत्ते ही संक्रमण के प्राथमिक वाहक होते हैं। WHO, OIE और FAO के अनुसार यह रोग वन हेल्थ एजेंडा का महत्वपूर्ण भाग है। रेबीज के इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, प्राचीन ग्रंथों में भी उसका उल्लेख है मिस्र में। आधुनिक समय विज्ञान ने इसकी संरचना, संक्रमण चक्र और नियंत्रण उपायों को समझाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन विकासशील देशों में अभी भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर जहाँ कुत्तों की संख्या अधिक है वहां पशुओं में रेबीज का प्रसार और अधिक देखा जाता है। आमतौर पर समझते लोग हैं कि कुत्ते से ही रेबीज फैलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भी रेबीज से ग्रसित होगा, इवन गाय, बकरे, बिल्ली, रोडेंट्स, कई ऐसे वाहक हैं, बैट भी एक सबसे बड़ा वाहक इसका है। और इन्फेक्शन कोई जरूरी नहीं है कि इसको काटने से ही, सलाइवा से हो, हवा से भी ये संक्रमित होता है। और जब संक्रमण हो जाता है तो बाइटिंग टेंडेंसी होती है। बाइटिंग टेंडेंसी में क्या है कि वायरस ट्रांसफर करना चाहता है अपने नेक्स्ट जीन पूल को, इसीलिए बाइटिंग टेंडेंसी होती है। और दूसरा सबसे प्रमुख लक्षण इसमें हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया पानी से डर, पानी से डर इसलिए होता है कि इसमें लैरिंग्स का इन्फेक्शन होता है, लैरिंजाइटिस होता है, तो पानी पीने में काफी मुश्किलें होती हैं। आमतौर पर गांव में जो प्रचलन होता है कि कुत्ता काट देने के बाद उसको साथ कुआं और पानी के स्तर पर ले जाता है दिखाने के लिए इसको डर है कि नहीं, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। चूंकि इन्फेक्शन में और उसको CNS तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचने में काफी समय लगता है, इसलिए उस समय ही टेस्टिंग होगा जब इन्फेक्शन इसका होगा। और इसका

100% इन्फेक्शन है और कैजुअलिटीज है, इसमें मोर्टिलिटी 100% है। एक बार एबीज हो जाने के बाद मृत्यु निश्चित है। और वैक्सीन अगर हम पहले कर दें, या इसका वैक्सीन का शेड्यूल है, दो तरह से देते हैं, सबकुटेनियस देते हैं, मस्कुलर देते हैं, तो 3 days, 1 day, 0 days, 3 days, 7 days और 24 days, इस तरह से इसका वैक्सीन देते हैं। पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़े आदि में भी यह रोग गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसमें रैबिड वायरस जो है, लाइजा वायरस है, इसी के कारण रैबिज होती है। ये मोनो निगेटिव वायरल रैबिडो वायरस लाइजा वायरस से होती है। रैबिज वायरस बुलेट शेप का होता है। ये सबसे यूनिक फीचर है कि वायरस बुलेट शेप का होता है। इसमें सिंगल आरएनए जीनोम, लिपिड एनवेलप, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोकैप्सिड पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन वायरस के मेजबान कोशिका में प्रवेश में प्रमुख निभाता है। प्रॉपर्टीज अत्यंत न्यूरोट्रॉपिक है, जैसे बताया इसमें कि जो न्यूरॉन्स हैं, गैंग्लियंस हैं, तो न्यूरॉन्स के जो साइटोप्लाज्म में है उसमें इसनोफिल और बेसोफिल्स की काफी ये हो जाती है, जिसके कारण ये नेग्री बॉडी बनाता है और डैमेज करता है। प्रत्यक्ष सूर्य, साबुन, फिनाइल, ब्लीच आदि से जैसे ही इस बाइटिंग हो, या लार्वा का कुत्ता कभी कभी या बिल्ली चाट जाती है, तो उससे भी हो जाता है। तो इसमें हाइड्रोफोबिया के साथ एरोफोबिया भी होता है। खैर, जब भी इस इन्फेक्शन हो तो तुरंत इससे धोएं, जितना जल्द हो, और 15 मिनट तक कम से कम धोएं, ताकि तंत्रिका ऊतकों में लंबे समय तक ये जीवित न रहे, क्योंकि तंत्रिका तंत्र से ही फैलता है। गर्मी और शुष्क वातावरण में अस्थिर होता है। संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, जंगली जीव जैसे भेड़िए, लोमड़ी, सियार, चमगादड़, गाय, भैंस, बकरी, भेड़े, घोड़े इत्यादि कई एनिमल्स इसके वाहक होते हैं। रेबीज का संचार काटने के माध्यम से, खरोंच लगने से, संक्रमित लार के खुले घाव, आंख, नाक एवं मुंह में जाने से भी होता है। हवा से भी फैल जाती है कभी सामने अगर इसका ड्रॉपलेट्स पड़ता है तो। चमगादड़ में तो ये एरोसोल मार्ग से जाते हैं। एक बार वायरस शरीर में प्रवेश कर जाए तो नसों के माध्यम से मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र तक पहुंचने में समय लेता है, जिसे उष्मायन अवधि कहते हैं। रेबीज के रोग जनन, उसकी विशेषता क्या है? वायरस का प्रवेश एवं प्रसार। वायरस घाव से प्रवेश करता है, पास के ऊतकों में सीमित प्रतिकृति होती है, फिर यह परिधीय नसों में प्रवेश करता है। नसों के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क में सूजन, इंसेफ्लाइटिस, इसका कोई पैथोलॉजिकल एविडेंसेज नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें हम ब्रेन को के सेल्स को निकाल नहीं सकते हैं। जैसे ही CNS को हम इंटरवेंशन करते हैं तो उसमें मौत हो सकती है या डैमेज हो सकता है, इसीलिए इसका बिना लक्षण लिए कुछ पता नहीं लगता है। पास के ऊतकों में सीमित प्रतिकृति होती है, फिर यह परिधीय नसों से प्रवेश करता है, नसों के माध्यम से स्पाइनल कोड से CNS पहुंचता है। मस्तिष्क में सूजन, न्यूरॉन्स की क्षति, व्यवहार में परिवर्तन, आक्रामकता या उदासी, और पैरालिटिक, ये दो तरह के हैं, अस्ट्रिट और पैरालिटिक, जिसको मिक्स्ड कहते हैं, स्ट्रिट को और पैरालिटिक। पैरालिटिक 30% और 70% स्ट्रिट ही होते हैं। और इंक्यूबेशन पीरियड कभी कभी 3 महीना से भी ऊपर, 6 महीना तक भी और 1 वर्ष तक भी हो सकता है। और इसका प्रभाव काटने की गहराई, काटने का स्थान और वायरस का अमाउंट, ये पर निर्भर करता है। तो जो फ्यूरियस फॉर्म है और पैरालिटिक फॉर्म है, ये दोनों ज्यादा घातक होता है। फ्यूरियस फॉर्म में आक्रामकता, तीव्र उत्तेजना, किसी को काटने का प्रयास करना, इवन जिस समय इसका आवेग आता है, मोमेंटम आता है, तो अपने परिवार के सदस्यों को भी आदमी काटने का कोशिश करता है, क्योंकि उस समय उसका कोई बैलेंस नहीं होता है। और ऐसा वायरस ह्यूमन को इस तरह से, या एनिमल्स को इंसाइट करता है कि वो काटने पर मजबूर हो, ताकि अगला जो वायरस है उसका जनरेशन कंटिन्यू रहे। पशु अत्यंत शांत होता है। पिछले टांगों का लगवा, निगलने में कठिनाई, लार टपकना, आवाज भारी होना, बाइटिंग टेंडेंसी इन एयर, और अंत में मृत्यु होती है। सभी स्पेसीज में अलग अलग लक्षण दिखते हैं। गाय और भैंस में दूध में अचानक गिरावट, अत्यधिक लार, आक्रामक या अत्यधिक शांत व्यवहार, लकवा। बकरियों, भेड़ में बेचैनी, मुख कम होना, कपकपी, टांगों का लकवा। कुत्तों में, बिल्ली में अचानक व्यवहार परिवर्तन, मालिक को भी काटना, आवाज बदलना, पानी देखकर डरना, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। एरोफोबिया भी होता है, हवा से भी कभी कभी डर लगती है। घोड़े में बेचैनी, अचानक गिरना, गर्दन पर लकवा होना। हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो क्लिनिकल निदान लक्षणों, काटने के इतिहास और व्यवहार के आधार पर, और संदेह के आधार पर डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट और RT-PCR से, नेगरी बॉडीज से भी इसकी पहचान और एलिजा से भी की जा सकती है। पोस्टमार्टम परीक्षण, मस्तिष्क में 3 भाग, हिप्पोकैम्पस, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम में परीक्षण किया जाता है। तो इस तरह से हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट, लक्षण आने के बाद ये तो इनक्यूरेबल डिजीज, असाध्य रोग है, इसीलिए रोकथाम

0: की ही एकमात्र उपाय है। इससे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में अगर देखेंगे तो केस में तत्काल पीपी उच्च जोखिम क्षेत्रों में प्रिवेंटिव टीकाकरण, काटे जाने पर प्राथमिक उपचार में साबुन पानी सोडा 15 मिनट तक धोएं, आयोडीन डिटॉल लगाएं, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, संक्रमित पशु का प्रबंधन अलग रखें आइसोलेटेड, सुरक्षा उपकरण पहने, मृत्यु पर गहरा गड्ढा हो तो उसका धोएं, और कुत्तों की जनसंख्या बिल्ली की जनसंख्या में अगर एवरेज्ड स्थान है, एवरेज्ड पैर है और फिंगर है तो हाथ है तो उससे बचें। टीकाकरण, नसबंदी, आवारा कुत्तों का और जानवरों का प्रबंधन, किसान में जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण, स्कूलों में अवेयरनेस, पशु मालिकों को बाइट प्रोटोकॉल बताना, बायोसिक्योरिटी मेजर्स में पीपीई किट, संक्रमित पशुओं से दूरी, सुरक्षित पशु हैंडलिंग, ये सब करके हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, खास करके हाई ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में, और जहां हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया में है इसमें काफी ज्यादा इन्फेक्शन है, और टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन में कम है, क्योंकि जितने स्मॉल एनिमल्स हैं और खास करके बैक्टीरिया, वायरस, ऑर्थोपोड्स, इसका सबसे ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में है, इसीलिए जो इक्वेटोरियल रीजन्स के और ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उसमें ज्यादा संख्या में पाई जाती है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर रेबीज का वायरस नहीं मिलते हैं, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसमें नहीं पाई जाती है। इंडिया में भी देखें तो कुछ आइलैंड हैं, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप, गोवा में रेबीज का प्रकोप बहुत कम है। पशुओं के मृत्यु, दूध उत्पादन गिरावट, पशुपालन की आय का कम होना, उपचार एवं टेस्टिंग की लागत, डेयरी उद्योग का प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर भारी खर्चा, ये सब मुख्य इनसे प्रभाव है। और भारत में रेबीज की स्थिति देखेंगे तो विश्व के 30% मानव रेबीज भारत में ही होते हैं। निष्कर्ष ये है कि रेबीज का पूर्णतः रोकथाम योग्य लेकिन अत्यंत घातक रोग है। यह केवल पशुओं को नहीं बल्कि मानव जीवन और समाज की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। पशुओं में समय पर टीकाकरण, आवारा कुत्तों का प्रबंधन, वैज्ञानिक जागरूकता, सुरक्षित पशु प्रबंधन पद्धतियां और वन हेल्थ जो प्रोग्राम अभी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, इसको इंटेंसिफाई करके अपना कर इस रोग पर पूर्ण नियंत्रण संभव है। भारत सहित पूरे विश्व का लक्ष्य 2030 तक जीरो ह्यूमन डेथ फ्रॉम डॉग मेडिएटेड और कैट मेडिएटेड रेबीज प्राप्त करना है। यह तभी संभव है जब पशुपालक, चिकित्सक, वैज्ञानिक और सरकार मिलकर एक इंटीग्रेटेड प्रयास करें। धन्यवाद।
1: अखन हम सब वार्ता सुनल विषय छल पशु में रेबीज रोग। वार्ताकार डॉक्टर रविकांत निराला।
2: विचार तो यही कि गौरी गीत हमने के सुनल जाओ।
1: हाँ, तो सुनो नीतू कुमारी नूतन सा।
2: हाँ,
1: झूमर
2: सुनेंगे।

0: तो चल।
1: वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर बोल। मेहंदी काहे के रचाई जब तू चलिए जीवना। झूमर रहे चंपा भाई, तो इस सभी गीत खाते यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद कहते नहीं नीतू कुमारी नूतन के, है ना। और देखिए समय भी अब हमनी के भाई इशारा कर रहा हलवा कि अब एजा से चले के हो कि, है ना।
0: अच्छा
1: प्रणाम चंपा बहन।
0: हाँ, खुशी रहो सुगिया में।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवल्यूशन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के सपने को साकार करने में केंद्र और राज्य सरकारों का सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। एनडीए के खाते में 9 और महागठबंधन के खाते में आई 1 सीट। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने का प्रयास कर रही है। और बिहार में मॉनसून ने दी दस्तक। किशनगंज के तैयबपुर में रिकॉर्ड 148 मिलीमीटर बारिश हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अस्थिरता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल थे। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। द्विवार्षिक चुनाव के तहत 9 और 1 सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद इन सभी उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई। सभी प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: 10 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए के खाते में 9 जबकि महागठबंधन के खाते में 1 सीट आई है। भाजपा से भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को जीत मिली है। जदयू से स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद विजयी हुए हैं। ललन प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट के लिए उम्मीदवार थे। चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को जीत मिली है। महागठबंधन की ओर से 1 सीट पर राजद के सुनील कुमार सिंह विजयी हुए हैं। निधि श्री, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि वे बिहार को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगे।
3: पिताजी की जो नीतियां रही हैं, उनकी जो विचारधारा रही है विकास को लेकर बिहार का, उसको मैं जारी रखने की कोशिश करूंगा। मेरा सौभाग्य है कि जिस सदन में पिताजी बैठे उसमें मैं बैठूंगा और जो भी बिहार के लिए समृद्ध बिहार, विकसित बिहार बनाने के लिए जो भी उसे हो सकेगा मैं करूंगा। जो भी पिताजी के बिहार को समृद्ध बनाने का सपना उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा।
1: राजद के नवनिर्वाचित विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि वे पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
4: मैं पुनः आज वादा करता हूं कि जिस विश्वास के साथ राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे सदन में भेजा है उसमें 100% खरा उतरने का काम करूंगा। मुद्दा चाहे किसानों का हो, मुद्दा चाहे बेरोजगारों का हो, मुद्दा चाहे अल्पसंख्यकों का हो, कभी भी राष्ट्रीय जनता दल का झंडा सदन में झुकने नहीं दूंगा।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगले 1000 दिनों में मास्टर प्लान बनाकर आकाशवाणी और दूरदर्शन का कायाकल्प किया जाएगा।
5: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से

कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधें। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है जो आप

0: एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करे। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
1: राज्य सरकार ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के कोचिंग, निजी ट्यूशन और व्यावसायिक संस्थानों में काम करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आड़ ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र निर्गत किया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कठोर और अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त आवेदनों के निपटारे के लिए आज से सभी अंचलों में विशेष अभियान की शुरुआत की है। 17 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान 46 लाख आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पटना में आयोजित कार्यक्रम में विभागीय सचिवों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत जल संकट प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार से 18,894 करोड़ रूपए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस राशि से आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन प्रभावित क्षेत्रों में भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। पटना के डुमरी में 100 एकड़ में खेल सिटी का निर्माण किया जाएगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने आज विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अरवल, मधेपुरा और किशनगंज जिले में 15 जून से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू हो जाएगा। साथ ही सिवान, मुंगेर और जमुई में फुटबॉल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। बैठक में BCCI द्वारा चयनित बिहार के खिलाड़ियों को मेडल लॉ नौकरी पाओ योजना के तहत शामिल करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार और मधुबनी जिले में पहुंच चुका है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से 6 दिन पहले बिहार पहुंचा है। विभाग ने कहा है कि मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पूरे राज्य में मॉनसून की बारिश शुरू हो जाएगी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मॉनसून के प्रभाव से किशनगंज जिले में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। जिले के तैयबपुर में रिकॉर्ड 148 मिलीमीटर बारिश हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है।
1: पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। सारण एवं सिवान जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में मधेपुरा जिले के खापुर पंचायत के परेल गाँव में एक दंपति की मौत हो गयी। ग्रामीणों ने बताया कि दंपति मक्का फसल की तैयारी के लिए खेत में गए थे और उसी दौरान यह घटना हुई।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियों का कार्य केवल घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अतुलनीय योगदान देती हैं। न्यायालय ने कहा कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह शब्द समाज में उनके योगदान को कम आंकता है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि देखभाल और घर के प्रबंधन सहित घरेलू काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने हाजीपुर नगर परिषद के लेखापाल मनीष कुमार के दो ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके हाजीपुर के बागमली स्थित आवास और नगर परिषद कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान लाखों रुपए मूल्य के आभूषण, आलीशान घर, संपत्ति के कागजात और वाहन बरामद किए गए। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत एनटीपीसी पार्ट में 48 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। इंडक्शन कार्यक्रम में एनटीपीसी पार्ट के कार्यकारी निदेशक सी सत्यराम कृष्णा ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्हें सीखने और पेशेवर विकास के इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भवन रावत ने पटना के बोरिंग रोड में मेन होल की सफाई के दौरान एक मजदूर की मौत और एक अन्य के बीमार होने के मामले में राज्य सरकार से 30 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। साथ ही उन्होंने दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की भी मांग की। रोहतास जिले के डेहरी स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में दौड़ के दौरान 5 प्रशिक्षु जवान भीषण गर्मी के चलते बेहोश हो गए। इनमें से एक प्रशिक्षु सिपाही श्रीराम कुमार की पटना एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत कठरंग गांव में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान घायल हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला से फेसबुक पर हथियार संग फोटो वायरल करने के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक देशी पिस्तौल भी बरामद किया गया। बक्सर जिले के डुमरांव और राजपुर प्रखंड में विशेष धावा दल ने छापेमारी अभियान चलाकर 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। मधुबनी जिले के जयनगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 3 अवैध लॉटरी कारोबारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शेखपुरा के एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने आज ऑपरेशन मुस्कान के तहत 25 लोगों के गुमशुदा मोबाइल उन्हें सौंपे। मुंगेर के किला परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम में आज से 4 दिवसीय पुस्तक मेले की शुरुआत हुई। मेले में विभिन्न प्रकाशकों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के सपने को साकार करने में केंद्र और राज्य सरकारों का सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। एनडीए के खाते में 9 और महागठबंधन के खाते में आई 1 सीट। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने का प्रयास कर रही है। और बिहार में मॉनसून नीति दस्तक, किशनगंज के तैयबपुर में रिकॉर्ड 148 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर। और इस गीत के बाद
3: छाया गीत
4: मिले।

This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी पटना है, प्रस्तुत है अरवल जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार का है और इसे पेश कर रहे हैं निखिल आनंद गिरी। आज सुबह अरवल जिले के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश होने से पिछले कुछ दिनों से अरवल जिला में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। अचानक बदले मौसम ने जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर तेज हवाओं के कारण जिले के कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। इधर आंधी तूफान की वजह से जिले के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले पूरा जिला भीषण गर्मी और उमस की चपेट में था। बारिश के कारण जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इधर रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद अरवल जिले में इन दिनों किसान अपने खेतों में धान के बिचड़े डालने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर चुके हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 46,154 हेक्टेयर में खरीफ की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत धान की सबसे अधिक 45,573 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अरहर और अन्य दलहन फसलों की खेती 373 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा बीज पर अनुदान भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में 187 क्विंटल धान बीज किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए पंजीकृत किसान बिहार राज्य बीज निगम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर बीज प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिले में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके तहत यूरिया 3,133 मैट्रिक टन, डीएपी 713 मैट्रिक टन सहित अन्य उर्वरक किसानों को निर्धारित दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर जिला भाजपा कार्यालय में स्थानीय विधायक मनोज कुमार के नेतृत्व में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सरकार की नीतियों और किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई की ओर से बीते दिनों 2 दिवसीय भाजपा प्रशिक्षण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक कार्यों, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं तथा पार्टी की विचारधारा से और अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ना बताया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, सांसद शिवेश राम तथा विधायक मनोज शर्मा ने संयुक्त रूप से इस अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं के लिए संगठन की रीढ़ को मजबूत करने का माध्यम है, जिससे वे जनता के बीच सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को बेहतर तरीके से पहुंचा सकें। राज्य सरकार के सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत जिले के आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिनों जिले के करपी प्रखंड के खजूरी पंचायत में प्रभारी मंत्री दीपक प्रकाश द्वारा सहयोग शिविर का उद्घाटन किया गया तथा प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। वहीं जिले के प्रभारी सचिव अमीशा जैन ने कुर्था प्रखंड के मानिकपुर और निघवा

0: पंचायत में सहयोग शिविर का निरीक्षण किया। जिले में आयोजित शिविरों में कुल 1328 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 478 आवेदनों का निष्पादन मौके पर ही कर दिया गया। शेष आवेदनों को 30 दिनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का निर्देश प्रभारी सचिव द्वारा दिया गया। बीते दिनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा अरवल शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कोरियम से बैदराबाद तक सोन नहर के किनारे लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बाईपास का विधिवत शिलान्यास किया। इस बाईपास के निर्माण से शहर में यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है, जिससे आवागमन अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगा। साथ ही यह परियोजना स्थानीय विकास को गति देने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने में भी सहायक होगी। इस अवसर पर पूर्व सांसद अरुण कुमार और स्थानीय विधायक मनोज शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिले में मधुश्रावणी मलमास मेला पारंपरिक धार्मिक आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक उल्लास के साथ भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह मेला स्थानीय धार्मिक परंपराओं और लोक आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर पूजा अर्चना और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। बीते 17 मई को इस मेले का विधिवत ध्वजारोहण स्थानीय विधायक मनोज शर्मा, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। अरवल जिले में महिला विकास निगम द्वारा समाहरणालय स्थित सभागार में बीते दिनों वर्ष 2026 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी अमृषा वैश ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिलाओं का शिक्षित होना समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभी आप सुन रहे थे अरवल जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार का था और इसे प्रस्तुत कर रहे थे निखिल आनंद गिरी।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको गजल सुनवा रहे हैं समर्थ नाहर से।

0: इस कार्यक्रम
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
2: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद आपका।
2: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
3: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूँ। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला। उनको बहुत बहुत बधाई।
2: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
3: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और ये भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
2: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
3: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा ना चुनाव की बात, ना मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
2: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
3: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से

इसी के साथ संपन्न हुआ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में समर्थ नाहर से ही आप गजल सुन रहे थे। आपके साथ तबला पर संगत दे रहे थे डॉक्टर श्याम मोहन, हारमोनियम अभिषेक पाठक और स्पेनिश गिटार संगत कुमार संभव। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष

0: अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहाँ देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
0: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
0: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि ये दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी? कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना एक साल भी नहीं चलेगा।
0: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन को?
0: हकीकत तो यही, जनता जान देखिए, हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए,

0: हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं, लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इम्पोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचा। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगह पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूँ तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल ही देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे। प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें।

0: उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम तीन मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो तीन बड़े लक्ष्य हमारे, एक देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है, दूसरा पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: अलनीनो के भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अलनीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने AI के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया है। उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी, अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी AI की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूं, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहां पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहां कम संभावना है, कहां ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की, एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ

0: कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ। और वो चीज़ मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो काम करो काम करो, चलते रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरैवेति के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत। अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
4: धन्यवाद।
3: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
4: माने प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई, या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं, और वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सबको

0: अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहां किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी, उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पे रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेंजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के, नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ एआर वीआर एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ हैं, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है, ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर

0: हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर, आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी, और अपने ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम बच्चे थे, और आज जब आप इस दौर में ही संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
1: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है जब विदेश में जाते हैं, तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं, तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है, मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है, बल्कि भारत के सभी मिशन्स, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशन्स, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है, उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है, तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
0: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज, उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना, सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
0: तो हम बात कर रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

सुन रहे थे सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए सुनिए सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको गुलाम अली की आवाज में ये गजल सुनवा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार प्रसारण, हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियु रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इसे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति

0: इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: The visit will provide an opportunity.
2: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
1: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
0: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
3: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
5: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
4: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
6: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
4: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरतेहाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने उमान के साहिल के नज़दीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जानें तलफ हो गईं। उसने अमरीका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं और

आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। मैक्सिको के स्टेडियो एस्टिका में पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया की बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल और इकतसादी चैलेंजों का सामना है, भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को लगातार तहरीक दे रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने खुद किफालत के तईं मुल्क के अज़्म को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत को उजागर किया और दुनिया की बेहतरीन अमल आवरियों बिलखसूस काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के तौर तरीकों को इख्तियार करने और उन पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि अब जबकि भारत विकसित भारत के तसव्वुर की ताबीर की हुसूलयाबी की जानिब पेशरफ्त कर रहा है, मरकज और रियासतों की इज्तिमाई जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वजीर आजम ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की स्कीम पर तवज्जो मरकूज करें और इसके ताल्लुक से बरामदात के लिए मौजू हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को एक उभरता हुआ सेक्टर करार दिया जिसमें भारत अपनी इम्तियाजी शनाख्त कायम कर रहा है और रियासतों को तरगीब दी कि वो इस तरक्की से रूनुमा होने वाले मौके से फैज उठाने के लिए पॉलिसियां वजा करें। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी ने आज कहा कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की गरज से बुनियाद के तौर पर एक हुनरमंद और बाइख्तियार आबादी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब लहरी ने कहा कि विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए शमूलियाती इंसानी फरोग के मौजू पर तबादला ख्याल में तमाम 28 रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। इसमें तालीम सेहत देखभाल और रोजगार जैसे कलीदी शोबों का अहाता किया गया। जनाब लहरी ने कहा कि नीति आयोग ने वज़राए आला के बामकसद नजरियात और उनकी मुतालिका रियासतों में किए जा रहे काम से इस्तिफादा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने इस मीटिंग से तफसीली खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि एक बेहतर तालीम याफ्ता और हुनरमंद आबादी भारत की तरक्की के लिए लाजमी है। मगरबी एशिया के बुहरान से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब लहरी ने कहा कि वजारत खारजा सूरत हाल को मुनासिब तरीके से हैंडल कर रही है जबकि अफरादी कुव्वत की तरक्की पर मरकूज तवज्जो में कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि तबादला ख्याल के दौरान शमसी तवानाई जोहरी तवानाई और मैनुफैक्चरिंग पर भी खास तौर पर तवज्जो दी गई। नीति आयोग के रुकन राजीव गौबा ने कहा कि तबादला ख्याल में एक और कलीदी शोबा मंसूबा बंद शहरकारी था। उन्होंने वाजे किया कि नीति आयोग मुल्क में शहरी हुक्मरानी की काया पलट की गरज से एक एजेंडा तैयार करने के सिलसिले में मुख्तलिफ वजारतों के साथ काम कर रहा है। मरकज और आसाम और नागालैंड की हुकूमतों के दरमियान आज एक सह फरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए ताकि आसाम नागालैंड सरहद पर खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार की सहूलियात शुरू की जा सकें। इस माहदे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के वजीर आला निफियो रिव्यू की मौजूदगी में नई दिल्ली में दस्तखत किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने इस माहदे को एक तारीखी कदम करार दिया जो तआवुन पर मबनी वफाकियत और कौमी मफाद के जज्बे का मजहर है। उन्होंने कहा कि इस कदम से खित्ते में तेल और गैस की तलाश को खातिर खा फरोग मिलेगा और इस तरह भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी को इस्तेहकाम मिलेगा और दरामदात पर इन्हिसार में कमी आएगी। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि इससे शुमाल मशरक में अमन और इस्तेहकाम में भी बेहतरी आएगी, इससे सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए साजगार हालात पैदा होंगे। भारत ने आज अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया और ओमान के साहिल के करीब पालाउ झंडे के हामिल टैंकर एमटी सेटबेलो पर हुए हमले के सिलसिले में सख्त एहतजाज दर्ज कराया। इस हमले में तीन भारतीय बाशिंदों की जानें तलब हुई हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने खित्ते में जहाजरानी पर जारी हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया और कहा कि इसका ताल्लुक जारी तनाजे से है। उन्होंने इस तरह के वाकयात पर फौरन रोक लगाने पर जोर दिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बहाल करने की गरज से मुजाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया।
خلیجی ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اسیم آر مہاجن نے کہا کہ حکومت مغربی ایشیا کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور بھارتی مشنوں سے 24

0: घंटे हेल्प लाइन चलाई जा रही हैं और ये मिशन मकामी हुक्काम के साथ तालमेल कायम किए हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि MT मैरीवैक्स पर सवार अमले के सभी 24 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया है और उनके जल्द ही भारत वापस आने की उम्मीद है। इस जहाज को इस माह की 8 तारीख को उमान के साहिल के नजदीक निशाना बनाया गया था। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी रास्तों की वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने कहा कि MT सेटेबेलो से बहिफाजत निकाले गए अमले के 21 भारतीय अफराद महफूज हैं, जबकि हलाक होने वाले 3 मल्लाहों के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि MT जलवीर पर सवार अमले के सभी 22 भारतीय अफराद महफूज हैं और उन्हें बहिफाजत निकालने की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि कीमियावी खाद और ईंधन की सप्लाई मुस्तहकम रहेगी, इसका खातिर खा जखीरा दस्तियाब है और मुल्क की रिफाइनरीज अपनी ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश के साथ काम कर रही हैं। शहरियों से जोर देकर कहा जाता है कि वो घबराहट में खरीदारी से गुरेज करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 14 तारीख से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां वो G7 समिट में शरीक होंगे। आज से पहले नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि ये इंतहाई समर आवर और वसी तर मामलात पर मुश्तमिल दौरा होगा। उन्होंने मजीद बताया कि इस दौरे में फ्रांस के 3 मकामात नाइस, एवियान और पेरिस शामिल हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने बताया कि इस दौरे से वजीर आजम को G7 समिट में शरीक होने वाले आलमी लीडरों के साथ भारत नीज आलमी जुनूब के लिए अहमियत के हामिल मामलात पर तबादले ख्याल का मौका मिलेगा। हुकूमत ने इथेनॉल मिले पेट्रोल की कई किस्मों पर एक्साइज ड्यूटी को खत्म कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में मरकजी वजारत खजाना ने ऐलान किया है कि 22%, 25%, 27% और 30% इथेनॉल मिले पेट्रोल को मरकजी एक्साइज ड्यूटी से मुस्तस्ना कर दिया गया है। वजारत ने कहा है कि ईंधन की इन चारों किस्मों पर अब कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी। इस इकदाम का मकसद भारत के इथेनॉल मिले ईंधन के प्रोग्राम को मजबूत करना है, जिसका मकसद दरामद किए गए खाम तेल पर इन्हिसार में कमी करना, कार्बन अखराजात में तखफीफ करना और मुल्क में ही तैयार किए गए इथेनॉल की मांग को बढ़ाना है। ये आकाशवाणी है। इत्तिलात व नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने आज जयपुर में वाक़े आकाशवाणी की इमारत में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान राजस्थान के जैसलमेर में रामगढ़ के मकाम पर वर्चुअल तरीके से 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। इस इजाफे के साथ रियासत में FM ट्रांसमीटरों की कुल तादाद बढ़कर 39 हो गई है। नए ट्रांसमीटर से सरहदी इलाकों के 80 किलोमीटर के दायरे में रेडियो नशरियात सुनी जा सकेंगी, जिससे लोगों को वसी तर मालूम, तालीमी मवाद और तफरीही प्रोग्रामों तक रसाई हासिल होगी। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए मरकजी वजीर वैष्णो ने कहा कि मुल्क के पूरे सरहदी इलाकों में कश्मीर से लेकर कच्छ तक आकाशवाणी और दूरदर्शन की कवरेज को मुस्तहकम करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत नए FM ट्रांसमीटर और नशरियाती बुनियादी ढांचे की तामीर की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भारत में सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर फराइज अंजाम देने पर मुबारकबाद दी है, जो कि मुल्क के जमहूरी सफर में एक तारीखी संगे मील है। सोशल मीडिया की एक सीरीज में शेख मोहम्मद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जदीद भारत की तारीख में हुकूमत के मुंतखब सरबराह के तौर पर सबसे तवील मुद्दत तक खिदमत अंजाम देने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने भारत की क्यादत करने में जनाब मोदी की मुसलसल कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और हालिया बरसों में मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान ताल्लुकात में नुमाया पेशरफ्त को उजागर किया। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदामात किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम गरीबों की बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
1: पिछले پچھلے 12 برسوں میں نریندر مودی حکومت نے غریبوں کی بہبود اور سماجی تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے بہت سی اہم اسکیمیں نافذ کی ہیں۔ غریب کے لیے مکان مودی حکومت کی توجہ کا اہم شعبہ ہے۔

0: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रियासतों को 4 करोड़ से ज्यादा मकानात देही इलाकों में इक्तिसादी तौर पर कमजोर कुनबों के लिए सौंपे गए हैं। गजा की यकीनी फराहमी के शुबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी इसी दौरान पीएम सेवा निधि स्कीम के तहत अभी तक खांचा फरोशों को 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा कर्ज फराहम किए गए हैं। भारत के समाजी तहफ़ का अहाता जो 2015 में 19% था, इसमें तेजी के साथ इजाफा होकर 2025 में 64% से ज्यादा हो गया है। आकाशवाणी से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े हमलों से खबरदार किया है और उसने मुतनब्बे किया है कि वो ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के अहम हिस्सों का कंट्रोल हाथ में ले लेगा। इस तरह मगरबी एशिया में कशीदगी और ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान पर इंतहाई सख्त हमला करेगा और बिलाखिर तवानाई के अहम असासों का कंट्रोल हासिल कर लेगा, जिसमें खर्क जजीरे का ऑयल टर्मिनल शामिल है। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमरीका और ईरान लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इधर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत, बहरीन और उर्दून में निशाना बनाकर जवाबी हमले किए और इस तरह खित्ते में तनाजे के वसत इख्तियार करने के सिलसिले में तशवीश पैदा हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से उत्तराखंड के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो रही हैं। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी में 158वीं रेगुलर कोर्स और 141वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की परेड का जायजा लेंगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 2 मरतबा ओलंपिक मेडल याफ्ता सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में ईशा रानी बरवा को 22-20, 21-12 से शिकस्त दी। अब उनका मुकाबला चेन सू यू से होगा। एक और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, जिसमें दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने थे, तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड़ को 21-13, 21-15 से शिकस्त दी। फीफा आलमी कप 2026 का आगाज आज मेक्सिको शहर के तारीखी स्टेडियम स्टेडियो एस्टिका में होगा। इसके साथ ही एक माह से ज्यादा अरसे तक चलने वाले इस अजीमुशान टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा। इफ्तिताही मुकाबले के ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। अब तक का ये सबसे बड़ा आलमी कप होगा, जिसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसमें 104 मैच खेले जाएंगे, जो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होंगे। आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जान तलब हो गई। उसने अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Betty White. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एनडीए अधिवेशन में प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो आशुतोष जी, जैसा कि कल हमने सुना, प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था और जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात की, देश के अंदर जो हमारे सामने समस्याएं हैं, जो विकास के मुख्य आयाम हैं,

0: और वैदेशिक संदर्भ में भारत की क्या मुख्य भूमिका है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पिछले 12 साल में सरकार ने काम किया है और देश को किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचागत विकास की उन्होंने बात की, डिजिटल सेवाओं की बात की, वेलफेयर स्कीम्स की बात की, आप इसके बारे में और क्या जोड़ना चाहेंगे?
1: पिछले 12 साल जो काम हुए हैं राजग काल में, एनडीए के काल में, उसकी जो बात की वो तो की कि उपलब्धियां गिनाई जाए। ये उपलब्धियां मुझे लगता है कि दो स्तर पर दिखी। एक तो कि जो जमीन पे जो चीजें आपको बदलती हुई दिख रही हैं वो, कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और दूसरा है सोच के स्तर पर बदलाव कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो जो पहले की सरकारों में 60 सालों में जिस तरफ हमारा, जिस सेक्टर पे फोकस नहीं होना चाहिए था और नहीं गया, उसको कैसे सुधारना है, वो एक लेवल वो था कि कैसे बदलना है। और जो तीसरा जो एक लेवल था जो मुझे दिखा और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात भी की, वो ये है कि भारत की जो 140 करोड़ जनता है उसके मन और दिमाग में कुछ चीजें असंभव सी थी जो कि बैठी हुई थी कि ये चीजें असंभव है, बाकी चीजें तो हम करेंगे। उस असंभव को पार करना, जिसमें कि उन्होंने फिर वो 370 और 3 तलाक, जो इस तरीके की बात की जो समाज से भी जुड़ते थे, देश की सुरक्षा से भी जुड़ने वाले इशू थे, और जो आम जन की जनभावना से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो, तो ये 3 तरीके के बदलाव जो पिछले 12 साल में हुए, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने इससे बहुत खुल के बात की।
0: आशुतोष जी, अगर हम खासतौर से बात करें आर्थिक प्रगति की, हम सभी देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, निवेश की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, और खासतौर से पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक जगह बनाई है, और न सिर्फ एक जगह बनाई है, हमने लगातार कोशिश की है इस सरकार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हम बाकी दुनिया से एक कदम आगे चलें। तो आइए सुनते हैं इस बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है, और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाना, हमें ये समय गंवाना नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, यही समय है, सही समय। हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है।
0: तो आशुतोष, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अगर हम देखें कि किस तरह से जो देश का विकास हुआ है और जो 2047 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, क्योंकि 100 साल हमारे देश की स्वतंत्रता के हो जाएंगे, और उसमें आर्थिक विकास से लेके जो टेक्नोलॉजी का विकास है, जो सोशल इंक्लूजन की बात है, सामाजिक समावेश की बात है, और एक अच्छे प्रशासन और गुड गवर्नेंस की बात है, इस बारे में आप आशुतोष जी और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
1: आज देश को किस चीज की जरूरत है? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो बात हो रही है ना कि पश्चिम एशिया का संकट आया और पूरे विश्व पे इस संकट का असर दिख रहा है, यहाँ पर विपक्ष में बैठे लोग कुछ ज्यादा उसे तूल दे रहे हैं, ऐसा लगता हो कि सिर्फ इंडिया का वो एक इशू है, लेकिन फिर भी जो समस्या अभी आपको दिख रही है ये और कम दिखती अगर कुछ कदम पहले उठाए गए होते, जिसका कि जिक्र अभी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था, और उन्होंने कहा था कि भाई जो सप्लाई चेन में जो इंडिया पर कई बार दिखता है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, ये कोविड के टाइम में भी ये चीजें दिखी थी और अभी भी चीजें दिख रही है, वहां कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में मुख्य भूमिका में इंडिया को आना है। एक टाइम आप याद कीजिए कि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां हम पहले से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे कि दवाइयां, और ये 80-90 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे उस समय कुछ इस तरीके से निर्णय लिए गए कि भाई हम मार्केट इकोनॉमी में किस तरीके से घुस जाए, और हम वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उस समय में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा करना था वो नहीं किया गया। अब शुरुआत हो रही है इसकी, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे तरीके से किया, और मुझे वो चीजें बहुत सही लगी आज के परिप्रेक्ष्य में कि क्यों नहीं भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है, जिसकी बात उन्होंने की। ये आत्मनिर्भरता ही जो है वही कड़ी है और वही आप समझिए सबसे बड़ी कुंजी है जिसमें कि आप वित्तीय

राजकीय रूप से बहुत संभल, जो बात हो रही है ना बार बार विकसित भारत बनने की, विकसित भारत ऐसा नहीं है कि एक शब्द में जुड़ के कहीं खत्म हो जाए, कई लेवल पे जो स्टेप्स लेने हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि भाई ये ग्लोबल सप्लाई चेन बनना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है। आज से 8-9 साल पहले तक आप याद कीजिए तो यहाँ आपके हाथ में, हमारे हाथ में जो भी फोन है वो बाहर से ही आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अब स्थिति बदली हुई है कि आज अमेरिका वहां के जो यूजर है उसमें से एक फोन मेड इन इंडिया हो रहा है।

0: बाहर से ही आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अब स्थिति बदली भी है कि आज अमेरिका वहां के जो यूजर है उसमें से एक पॉइंट मेड इन इंडिया हो रहा है। ये जो बदलते हैं माहौल, उसकी बात उन्होंने की कि हमें किस तरीके से आर्थिक पावर के रूप में उभरना ही पड़ेगा, यही सबसे बड़ी कुंजी है। उसी के साथ समाज का भी ग्रोथ होगा। भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है उसमें वेलफेयर स्टेट का जो एक बहुत बड़ा बोझ होता है, आप जान रहे हैं कि आज के दिन हम लोग करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं, आखिर कहां से कर पाएंगे अगर जब तक आप एक आर्थिक ताकत के रूप में नहीं उभरेंगे। और आर्थिक ताकत के रूप में उभरने के लिए इसकी भी जरूरत है, और साथ ही साथ सभी राज्यों को भी लेना चाहिए जो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की बात है।
1: जी जी,
0: तो भाई ये हेल्दी कॉम्पिटिशन सिर्फ राज्य और राज्य में ना हो, ये हेल्दी कंपटीशन गांव से शुरू हो सकता है। एक गांव दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम अपने गांव को कैसे ज्यादा बेहतर बना पाए, एक शहर दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम कहां पर ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए। और उन्होंने कहा कि राज्यों को तो ये कॉम्पीट करना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में हु विल बी द फर्स्ट स्टेट जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट होगा।
1: तो आशुतोष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए और प्रधानमंत्री ने सहभागिता की बात भी की, क्योंकि उनका ये मानना है जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि सारी जनता मिलके और सारे राज्य मिलके ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जन विश्वास की जो बात है, जन भागीदारी की बात है, इस पर प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति, ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजैक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का, संयम का आग्रह किया तो देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है।
1: आशुतोष जी, जैसा कि अभी हमने सुना, प्रधानमंत्री ने इसके अलावा हाउसिंग की बात की, वित्तीय समावेशन की बात की, सफाई का भी जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया। खास तौर से जिस तरह से गरीबी उन्मूलन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं और काफी लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: न सिर्फ गरीबी से, जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, और साथ में उन्होंने कहा कि हमें इसका विशेष प्रयास करना चाहिए, एक साथ मिल करके प्रयास करना चाहिए कि ये फिर से उस गरीबी के दलदल में ना जाए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही होती है जब आप इस तरीके की योजनाओं पर काम करते हैं, स्लिपेज की बात, कि आपने कुछ चीजें ठीक की और वो फिर से धीरे धीरे वहीं चला जाए, तो वो प्रयास वहां पर विफल होता है। और देखिए, ये गरीबी की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कारक हुआ करता था वो है बीमारी, कि एक बार कोई घर में एक बीमार हो गया किसी गरीब के घर और वो फिर से लोन और इसके दुष्चक्र में फंसता हो वहीं जाता था। बीमारी को लेकर के सरकार ने पहले ही एक कदम उठाया, आज से 5 साल 6 साल पहले जब आयुष्मान योजना की बात हुई थी उससे बहुत सारी चीजें सुधरी थी। और ये जो 25 करोड़ का आंकड़ा अभी आ रहा है कि इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, वो नियो मिडिल क्लास में और थोड़ा सा उससे नीचे में प्रवेश कर चुके हैं, अब उनकी आकांक्षाएं और बढ़ रही हैं। ये आकांक्षा बढ़ना ही तो है विकसित भारत के लिए जरूरी है।
1: जी जी, और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से कुछ समय पहले हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हम बहुत ही त्वरित गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गए हैं। और जैसा आपने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किस तरह से एक ऐसा भारत बनाया जाए जहां गरीबों के सपने भी पूरे हो पाए। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: जैसा कि हमने सुना आशुतोष जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जब 100 साल पूरे

0: देश के, तो एक नए तरह का भारत हो जो बहुत विकसित हो और विकसित श्रेणियों और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो पाए। आप इस बारे में क्या और कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
1: ये जो विकसित भारत की कल्पना की गई, और उसी समय ये भी है कि विकसित भारत क्या होगा। विकसित भारत का अर्थ ये है कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा, एक आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत खड़ा होगा। भारत की तुलना आप किसी छोटे कंट्री से नहीं कर सकते। बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या आप देख लें तो वो पूरे के पूरे भारत में समाएंगे। तो यहाँ की सोच अलग है और उसी तरीके से इसका ग्रोथ किया जा रहा है। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही दिशा सही है
0: जी।
1: थोड़ी गति की बात है जो उन्होंने कही, जहाँ हमें गति और बढ़ानी है और जिसमें सबके प्रयास की बात की उन्होंने, ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे लगता है दिशा और गति दोनों मिलकर जो है सो इच्छित परिणाम भी देंगे।
0: आशुतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरह से सरकार ने विकास के लिए जो भी जरूरी फैसले हैं वो समय पे लिए, चूंकि राजनीतिक स्थायित्व तो है और सरकार के पास ये इच्छा शक्ति है कि वो देश को विकास की ओर आगे ले जाना चाहती है। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: आशुतोष जी, आप और क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो बात की कि देश हित में जो भी फैसला जरूरी होगा वो ये सरकार करेगी जिससे कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ पाए।
1: मैं आपको एक तो एग्जांपल दूंगा
0: जी।
1: 370 की बात इन्होंने की और आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तो उस समय में किस तरीके की बातें कही जा रही थी। मैं अभी अभी कश्मीर से लौट के आया, बारामूला और शोपियां जैसे जिले, आप वहां भी खुलेआम घूम सकते हैं एक सामान्य नागरिक की तरीके से, वो भी कश्मीरी नहीं, आप बाहर से जाकर भी घूम सकते हैं और सुरक्षित घूम सकते हैं, लोग खुश हैं। उसी तरीके से जो 3 तलाक वाली जो बात कही, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपको नौकरी दे दे, सरकार का काम ये भी होता है कि वो इस तरीके के प्रयास करे कि समाज में भी बदलाव आए।
0: जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर NDA कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए सुनिए कार्यक्रम परिचर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रानू सिंह। श्रोताओं, आकाशवाणी का साथ 1927 से चला आ रहा है। ये साथ इतना खास है कि इसकी आवाज से ही हमारी सुबह की शुरुआत हुई है। चाहे परिस्थिति जैसी भी रही हो, इसकी आवाज़ ने हमें उसका एहसास कराया है। यह वह आवाज़ है जिसने देश की स्वतंत्रता का जश्न भी मनाया और कोरोना के स्थिरता का भी साक्षी बना। यह किसानों की वाणी बना तो सिपाहियों का हौसला भी। यह बच्चों, युवा, बुजुर्गों सबका साथी बना। देश विदेश यहाँ तक कि क्षेत्रीय खबरों को भी इसने प्रमुखता से प्रसारित किया। आकाशवाणी से ही हमने सीखा कि आकाशवाणी में नाटकों की क्या स्थिति है और किस तरीके से नाटकों को एहसास किया जा सकता है। संगीत की दुनिया का सैर हमने यहीं किया, बहुत सारी यादें हमने यहीं बनाई हैं। तो आज की परिचर्चा का विषय इसी पर केंद्रित है, क्योंकि आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो आज की परिचर्चा का विषय है आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा। इसमें भाग ले रही है हमारे साथ रीना सोपम, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं और कला से भी जुड़ी हुई हैं। इनके साथ ही हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं अमलिंदु अस्थाना, जो कि पत्रकार है और वो भी साहित्यकार की भूमिका में प्रमुखता से नजर आते हैं। जो भूमिका थी वो मैंने बांधने की पूरी कोशिश कर ली है। और ये आकाशवाणी के 90 वर्षों की बात हो रही है, तो ऐसे जब स्थिति आती है तो भावनात्मक होकर ही बातों का जो सिलसिला होता है वो प्रारंभ होता है। तो सर्वप्रथम

0: रीना जी से ही इस परिचर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि रीना जी, अगर आपके स्मरण में मैं बात करूं तो आकाशवाणी कहाँ है?
1: नमस्कार। सबसे पहले मैं आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा अभिवादन करती हूँ और आकाशवाणी को धन्यवाद भी देती हूँ कि ऐसे स्पेशल ओकेजन पे, ये विशेष अवसर है, 90वां वर्ष है आकाशवाणी का, और इस अवसर पर आपने हमें याद किया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अब रानू जी, आपने जो सवाल किया कि आकाशवाणी का महत्व क्या है मेरे जीवन में, तो मैं ये कहूँगी कि आकाशवाणी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है मेरे बचपन के दिनों से अभी तक की यात्रा में। मतलब ये कही कि हमारी दिनचर्या का ये अभिन्न हिस्सा हुआ करता था, हमारी शुरुआत आकाशवाणी के कार्यक्रमों से ही होती रही है, सुबह की शुरुआत, और दिन भर इसके जितने भी कार्यक्रम होते रहे हैं, और तो हम लोग इससे जुड़ते रहे हैं, बल्कि रात तक जो शास्त्रीय संगीत के जो कार्यक्रम होते थे वो सुनते सुनते फिर हमारा जो होता है उस दिन, वो दिन समाप्त हुआ करता था। तो बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत कुछ सीखा है मैंने आकाशवाणी से, और आज जो कुछ भी हूँ इसमें आकाशवाणी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: बहुत यादें हैं आपके साथ और अमलेंदु सर के साथ भी बहुत सारी यादें होंगी। तो अमलेंदु जी, अब आप अपने स्मरण से कुछ बातें बताइए कि आपके लिए आकाशवाणी कहाँ है।
2: सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे 90 वर्ष की पूरी यात्रा की परिचर्चा में शामिल किया। रेडियो का जिक्र आते ही कई चेहरे साकार होने लगते मेरे आगे, और हर चेहरे की अपनी अलग-अलग कहानी है। अगर मैं रेडियो की बात करूँ तो रेडियो मेरे बचपन का प्यार है, यौवन की मोहब्बत है, अकेलेपन का साथी है और उलझन की सुलझन है रेडियो। रेडियो गमे खार का मरहम है, मेरे गमे खार का नामावर है, और जो टूटे हुए रिश्ते हैं, जो बिखरा हुआ प्रेम है, उसकी पाती है रेडियो। रेडियो यूं कहें तो मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी मौसी की याद है। मैं आपको यूं बताऊं कि रेडियो का जिक्र आते जो सबसे पहले मेरे सामने दृश्य उभरता है, आप अगर इजाजत दे तो मैं वो दृश्य
0: जी
2: आपसे
0: जरूर।
2: साझा करूं कि आलमीरा पे एक रेडियो रखा है, माँ मेरे लिए सेवई बना रही है और रेडियो पे गाना आ रहा है, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधाना, और माँ साथ में गुनगुना रही है कि सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी, ये माँ गुनगुना रही है साथ में, और वो जो सेवई, हम बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि वो सेवई बनेगा, मुझे खाने को मिलेगा। तो वो जो सेवई में स्वाद था, वो स्वाद आज मतलब माँ की याद दिला देता है रेडियो जैसे ही, तो वो स्वाद उभर आता है। और दूसरी भूमिका मेरे रेडियो में मेरे बेटे की है। मेरे बेटे से ऊपर वाले ने या किस्मत ने तो सब कुछ छीन लिया, लेकिन रेडियो उसकी परिधि है। वो संगीत इतना सुनता है कि उसके साथ मैं अब भी, और मेरे उसी बेटे के चलते रेडियो हमेशा मेरे घर में बजता है। तो रेडियो की इतनी भूमिका, इतनी यादें, अभी मैं आगे और चर्चा करूंगा कि मेरे व्यक्तित्व को उसने कैसे गढ़ा।
0: जी, मतलब लोग भावुक होते जा रहे हैं, चाहे रीना
1: बिल्कुल
0: जी हो चाहे अमलेंदु जी हो, भावुक बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं रेडियो को लेकर। और हम धीरे धीरे करके हर विषय पर, हर क्षेत्र में जाएंगे इसके बारे में। लेकिन जब अमलेंदु जी ने गीत के तान छेड़ दिए हैं, तो अब रीना जी से शास्त्रीय संगीत के बारे में चर्चा तो करनी होगी। रीना जी,
1: बिल्कुल
0: आप शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता भी हैं, आपको जानकारी भी है और आप इससे जुड़ी हुई हैं, तो
1: जी जी
0: शास्त्रीय संगीत का संरक्षण आकाशवाणी में किस तरीके से हो रहा है, इस पर और भी आप शास्त्रीय संगीत से संबंधित क्या जानकारी देना
1: जरूर
0: चाहेंगे?
1: जरूर, ये बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने और बहुत जरूरी प्रश्न भी है। आकाशवाणी को कहें तो मेरे दृष्टिकोण से आकाशवाणी ने शास्त्रीय संगीत परंपरा और शास्त्रीय संगीतकारों के लिए संरक्षक की भूमिका निभाई है, उसको संरक्षण दिया है। और मुझे याद है वो बचपन के दिनों का वो समय, जब आज़ादी के बाद के वर्षों में, जब बहुत सारे दरबार के कलाकार जब वहाँ से दरबार से निकल गए थे, तो उनके पास जो एक संरक्षक की कमी महसूस हो रही थी उन्हें, आकाशवाणी उस समय बहुत बड़ा संबल बनकर उभरा था उन कलाकारों के लिए। मुझे याद है एक बात, मैं घटना का जिक्र करना चाहूंगी। पंडित राम

0: शेतुल मल्लिक हमारे बिहार के देश के दिग्गज ध्रुपद गायक, वो आकाशवाणी पटना के कलाकार थे। और वो जब दरभंगा से पटना आते थे तो पटना आने से पहले ही हमें सूचित कर देते थे कि मैं पटना पहुंच रहा हूं, रिकॉर्डिंग है आकाशवाणी में। और वो घर आते थे और इस बात की चर्चा ज़रूर करते थे कि आकाशवाणी ने कितने कलाकारों को, शास्त्रीय संगीत के कलाकारों को मैं कह रही हूं, उन कलाकारों को संरक्षण दिया है। उनके सहारे शास्त्रीय संगीत के कलाकार जीवित हैं, फल फूल रहे हैं। और इससे बड़ी बात ये रही थी कि उस कालखंड में शास्त्रीय संगीत परंपराएं जो थीं वो आकाशवाणी के माध्यम से संरक्षित हो रही थीं। वो आज हम उन रिकॉर्डिंग को सुन के महसूस कर पा रहे हैं कि कितना बड़ा काम किया आकाशवाणी ने। वो आर्काइव में सारे रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। तो शास्त्रीय संगीत के लिए मैं विशेष रूप से कहूँगी, संगीत और संगीतकारों के लिए आकाशवाणी ने जो भूमिका निभाई है वो अतुलनीय है। इसमें
1: मैं थोड़ा सा एक चीज जोड़ दूं कि शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम आता था संगीत सरिता करके
2: जी,
1: जिसको मुझे लगता है पद्मजा शर्मा और कमल शर्मा प्रस्तुत किया करते थे। अब जैसे गाना है बैया ना धरो रे भल, मतलब ये किस राग पे है
2: उसकी पूरी जानकारी
0: अभी भी आ रहा है ये कार्यक्रम
1: जी। अभी
0: संगीत समय बदल गया है उसका, ये कार्यक्रम चल रहा है। और संगीत सरिता की बात आपने कही, संगीत सरिता के बहाने बहुत सारे ऐसे लिसनर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पर शास्त्रीय संगीत से नहीं जुड़े हुए हों, लेकिन वे राग संगीत से परिचित हो रहे हैं और कलाकारों से परिचित हो रहे हैं।
2: मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कहीं ना कहीं लिसनर्स की जिज्ञासा बढ़ती जा रही
0: हाँ,
2: है
0: बिल्कुल।
2: कि संगीत के मतलब अंदरूनी जो उनकी उसकी बारीकियां उसको जानने की, ये किस ताल में था
0: हाँ,
2: इसमें कौन सा राग इस्तेमाल हुआ
0: हाँ। आजकल एक लय पे कार्यक्रम हो रहा है, ताल और लय पे, तो जैसे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है लोगों, श्रोताओं के लिए ये बात। कोई गाना वो सुन रहे हैं, किसी फिल्म का गाना सुन रहे हैं और उनको ये जानकारी हो जाए कि देखिए ये इस लय में जा रहा, इस ताल में निबद्ध है, तो तब वो बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, या ये इस राग में है,
1: राग मालकोस है या राग भैरवी,
0: बिल्कुल कोई भी हाँ,
2: यमन
0: हाँ, तो आम लोगों में संगीत सरिता कार्यक्रम के बहाने आम लोगों में बहुत प्रचार प्रसार हुआ है राग सामरी शास्त्रीय संगीत का, इस कार्यक्रम के बहाने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है आकाशवाणी ने।
1: और इससे कहीं ना कहीं अपनी भारत की जो संस्कृति है, गायन परंपरा है शास्त्रीय संगीत की, वो युवा पीढ़ी तक पहुंचती है।
0: हाँ, आकाशवाणी ने युवा पीढ़ी को हमारी शास्त्रीय संगीत परंपरा से जोड़ा है।
2: अमरेंदु जी ने जब परंपरा शब्द को जोड़ा है तो वही आकाशवाणी इसमें अहम भूमिका निभाता है कि भाई परंपरा से हमें मिट्टी से अपने जुड़े रहना है। तो इसके लिए एक खास सवाल मेरा अमरेंदु जी से ही रहेगा, भाषा की जो भूमिका है वो आकाशवाणी किस तरीके से अभी भी उसे कायम रखे हुए है, क्योंकि आप अगर आकाशवाणी को सुनते हैं लगातार तो आपको ये पता होगा कि क्षेत्रीय भाषाओं को भी वो नजरअंदाज नहीं करता, दरकिनार नहीं करता। भाषाई स्तर पर अगर मैं कहूं तो आकाशवाणी किस तरीके से श्रोता के अंतिम पायदान तक वो पहुंच रहा है।
1: ये बहुत अच्छा सवाल है। भाषा पे मेरा खास जोर इसलिए होता है, थोड़ा सा एक दो मिनट का वक्त अगर ज्यादा हो जाए तो आप यूं समझिए कि हम उस भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं जहाँ कई भाषाएं हैं, मैथिली है, मगही है, बज्जिका है, अंगिका है, और इन क्षेत्रीय भाषाओं के बीच में हिंदी के जो मानक है उसको बनाए रखना बड़ी चुनौती है। तो मैं जब दरभंगा से कभी बिहार की सरहद से बाहर जाता था तो भाषा ये अच्छे लगते हैं, अभी भी लगते हैं, लेकिन आकाशवाणी, जैसा कहा गया अभी तो चर्चा हुई, आकाशवाणी को विविध भारती को देश की सुरीली धड़कन कहा जाता है
2: जी जी।
1: तो वो जो भाषाई सुर है उसमें मेरी भूमिका इस तरह से है कि मैं सुबह में समाचार सुन रहा हूँ, रामानुज प्रसाद सिंह जो मेरी जानकारी है, रामधारी सिंह दिनकर के भतीजे हैं, वो उनकी आवाज़ बड़ी दमदार थी, राजेंद्र त्रिपाठी साहब जो सुबह हिंदी का समाचार पढ़ते थे, उसके बाद इंग्लिश का समाचार आता, तो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों का संतुलन होता था, वो पूरा लगभग अनुवाद होता था, उसमें जो लिंग की मात्रा स्त्रीलिंग पुल्लिंग की वो और व्याकरण वो बहुत संतुलित होते थे, और जो उच्चारण होता था जिसको उर्दू में तलफ्फुज भी कहते हैं, प्रोनंसिएशन, वो भी मैंने वहीं से सीखा। और आकाशवाणी शब्द, मैं श्रोताओं को ये बताता चलूं कि आकाशवाणी शब्द जो है वो मैसूर के एक रेडियो स्टेशन में एक कविता लिखी थी रविन्द्रनाथ।

0: एगोर ने, वो कविता प्रसारित हुई थी और 1957 में फिर ऑल इंडिया रेडियो ने तय किया कि नहीं, वो जो आकाशवाणी पे कविता थी इसका नाम आकाशवाणी किया गया। ये एक जानकारी मैं अपने श्रोताओं
1: जरूरी है।
0: अब ये देखिए कि ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस में सुन रहा था, मेरा ये मानना है कि हिंदी भाषी जो हैं उनमें उर्दू के शब्द अगर आप मिलाते हैं तो एक तहजीब और एक नज़ाकत की भाषा, उसमें एक आकर्षण आता है। अब देखिए कि उर्दू का एक कार्यक्रम आ रहा है, उसमें एक गाना चल रहा है, जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें। अब मैं डायरी लेके बैठा हूँ, मैंने बज्म शब्द नोट कर लिया। इसको शहरयार ने लिखा है इस गाने को, और तलत अजीज ने इसको बड़ी खूबसूरती से गाया है। तो मैंने बज्म शब्द नोट किया। अब उसमें बशीर बद्र साहब का अगला मुशायरा होता था, मुशायरा में बशीर बद्र साहब का एक शेर चल रहा है कि किताबें रिसाले नाखवार पढ़ना, किताबें रिसाले नाखवार पढ़ना, मगर दिल को हर रात एक बार पढ़ना। तो मैंने रिसाले शब्द उसमें नोट कर लिया। उसके बाद आ रहा है रेखा का एक गाना कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दिल चीज क्या है आप में, उमराव जान का गाना है
1: जी।
0: इसको भी शहरयार ने ही लिखा है। तो मैंने अंजुमन शब्द नोट कर लिया। अब दिलचस्प क्या है कि हमारे समय में भिक्षाटन के लिए लोग आते थे तो दरवाजे पे दस्तक होती है, फकीर बाबा भी आते थे, तो मुझे लगता था कि फकीर बाबा जो हैं वो इस शब्द का मुझे अर्थ बता देंगे
1: जी।
0: तो मैं डायरी लेके पहुंचता था कि इसका अर्थ मुझे बज्म का अर्थ बता दीजिए, चूंकि उर्दू का। तो बोलते थे कि बेटा, कोई कोई आते थे जानकार तो बता देते थे कि बज्म महफिल, अंजुमन मतलब भी महफिल, और रिसाले का मतलब छोटी छोटी किताब या छोटी लघु। तो इस तरह से मैंने पूरे ऑल इंडिया रेडियो की शब्दावली से, उर्दू से मैंने उर्दू के शब्द सीखे, जैसे मुस्तकबिल है। हाँ, एक और चीज़ है, गालिब का एक शेर आ रहा है कि बागीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो बागीचाए अतफाल मैंने नोट कर लिया
1: जी,
0: है ना। और फिर एक हवा महल में कोई सा एक प्रहसन छोटा नाटक आ रहा है, वो उसमें गालिब साहब की बेगम करें कि आप आगरे से दिल्ली जाएंगे तो आपको लोग मकबूल नहीं होने देंगे वहाँ। तो मैंने मकबूल शब्द नोट कर लिया। तो मकबूल का मतलब स्वीकार किया जाना। तो इस तरह से आकाशवाणी ने, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस ने, समाचारों ने, गानों ने, ये मेरे पूरे व्यक्तित्व को और पूरे भाषा के तौर पर मुझे बहुत समृद्ध किया। तो मैं तो युवाओं से आग्रह करूंगा कि आकाशवाणी सुने, इसमें बहुत ठहराव अभी भी है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपकी भाषा, आपके लय, आपके प्रवाह, आपके व्यक्तित्व, आपके उच्चारण को बहुत स्ट्रांग, बहुत सशक्त बना सकता है।
1: रीना जी, जैसा कि सर ने भी तो बहुत सारी बातें बताई, और सर ने ये भी बताया कि जब वो समाचार खास तौर पर सुना करते थे तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता था, और जो उनके उच्चारण में जो तब्दीली आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ अमलिंदु जी, तो शायद उसका श्रेय भी बहुत हद तक आकाशवाणी को जाता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई, खबरों के मामले में हम आकाशवाणी पे जो विश्वसनीयता दिखा पाते हैं वो शायद हम कहीं और नहीं दिखा पाते।
2: बिल्कुल।
1: इसकी विश्वसनीयता पे आप क्या कहना चाहेंगे? जब भी कोई खबर आकाशवाणी से प्रसारित हो रही है तो हम सोचते नहीं ये सच होगा, इसमें आपको शक नहीं करने की आवश्यकता है।
2: बहुत सुंदर सवाल किया, बहुत इम्पोर्टेंट है ये।
1: आप लोग पत्रकार हैं, इस वजह से मुझे लगा कि ये सवाल बहुत जरूरी है।
2: नहीं नहीं, मैं अपना निजी अनुभव बता रही हूँ। अभी तो हम लोग बहुत सारे सोर्सेज हो गए जिससे कि बहुत खबरों के लिए बहुत सारे सोर्सेज से क्रॉस चेक कर लिया करते हैं। ये अभी का जो समय है, संचार माध्यम बहुत सारे उपलब्ध हैं, लेकिन वो एक वो समय था जब केवल आकाशवाणी था और प्रिंट अखबार थे केवल। उस वक्त जो लोग किस तरीके से किसी सूचना को कैसे ऑथेंटिक मानते थे, क्योंकि भ्रम भी होते थे, कुछ सूचना आ गई, कुछ अफवाह आ गई, बहुत सारी ऐसी बातें थी। मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूँगी, एक बहुत बड़े नेता का निधन हुआ था, तो मेरे पिताजी के पास फ़ोन आया कि आपको जानकारी है दास साहब की उनका डेथ हो गया है। अब ये ऐसी सूचना थी कि सारे लोग शॉक्ड थे, हमारे परिवार में भी, और मतलब कि जो चर्चा हुई, कुछ लोग और भी बैठे हुए थे हमारे ड्राइंग रूम में, हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो तुरंत ही ये दिमाग में ये एक बात आई, तुरंत हमने आकाशवाणी रेडियो ऑन किया और आकाशवाणी से वो सूचना आ रही थी, वो न्यूज़ आ रहा था, तो फिर कन्फर्म हुए कि हाँ, ऐसी ये जो खबर है ये सच्ची खबर है और सही खबर है। तो हम लोगों ने ये महसूस करते रहे हैं हम सभी कि आकाशवाणी पर जो खबर आती है उसको लोग ऑथेंटिक मानते रहे हैं, और कन्फर्म करना है किसी सूचना को कि कोई भ्रम ना हो, कोई र्यूमर ना हो, तो फिर आकाशवाणी ही सुनते रहें।

0: बल्कि मुझे याद है जेपी के निधन के समय भी ऐसी ही बात हुई। बहुत समय से कुछ अलग हैं, काफ़ी बीमार चल रहे हैं, लेकिन जब उनका निधन हुआ और आकाशवाणी पर ये सूचना आई तो उसको ऑथेंटिक माना गया कि हाँ ये ऑथेंटिक सूचना है। तो इसकी विश्वसनीयता मैं ये कहूँगी कि बाकी दूसरे संचार माध्यम जो भी हों, अभी बहुत सारे संचार माध्यम हैं, लेकिन आकाशवाणी के जो श्रोता हैं और आम लोग जो हैं अभी भी आकाशवाणी को सुनकर ही किसी सूचना से कन्फर्म्ड होते हैं। ये चीज़
1: अभी जो रील और रेडियो और सोशल मीडिया है उसमें रेडियो के समाचार और अखबार की प्रामाणिकता और भी बढ़ गई है
2: जी,
1: क्योंकि इतने फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे बिना जो अभी जो भी है वो न्यूज़ बनाते हैं उनमें जो पाठक हैं या फिर जो हमारे समाज के लोग हैं वो अभी भी इस बात पे विश्वास करते हैं कि रेडियो से जो खबर आ रही है या अखबारों में जो खबर छप रही है, जो खासकर जो प्रामाणिक जो अखबार हैं, जो स्टैब्लिश्ड हैं, व्यवस्थित अखबार हैं, उनकी प्रामाणिकता ज़्यादा है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया साइट्स पे जो अभी कुछ जो सूचनाएं आ जाती हैं बहुत जल्दी उपलब्ध तो हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हाँ बिल्कुल हाँ। उनकी प्रामाणिकता पर लोगों को शक हो जाता है और मुझे लग रहा है वो बहुत हड़बड़ी में होते हैं, लोग बहुत जल्दीबाजी में होते हैं,
2: दौड़ में हैं, उन्हें बस लग रहा है कि किस तरीके से उनकी व्यूअरशिप बढ़ जाए,
0: बिल्कुल
2: लाइक बढ़ जाए, कमेंट्स आने लगे, वो एक रेस से चल रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं कितनी जल्दी मैं सबसे पहले ये सूचना शेयर करूं, तो उसमें क्या होता है ना कि आप क्रॉस चेक नहीं कर पाते हैं। मुश्किल ये होता है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, क्या सच है, क्या कितना सच है, ये मुश्किल है
1: समाचारों को तय करना। जो सोशल मीडिया ने जो एक कंटेंट क्रिएटर को हम लोगों के सामने रखा है उसमें ऐसे ऐसे टैलेंट उभर के आए हैं, पढ़ाने वाले भी, गाने वाले भी, सिखाने वाले भी, वो अद्भुत है। लेकिन समाचारों को लेकर के प्रामाणिकता पे संशय जरूर है।
2: इसलिए मैं यहाँ पे अपने श्रोताओं से एक आग्रह जरूर करूंगी कि अगर आप समाचार किसी भी एक भी खबर को अगर आप शेयर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जान लीजिए कि वो सही है, गलत है, कितना है, आपका वो सोर्स कहाँ से आ रहा है,
0: बिल्कुल
2: क्या वो इतना प्रमाण कर दे रहा है, आपको प्रमाणित कर रहा है कि हाँ आप ये समाचार बिल्कुल सही है, आप इसे शेयर करें, क्योंकि एक छोटा सा शेयर कितने जगहों पर वो जाता है, कितने लोगों के साथ वो बंटता है और किस तरीके का इम्पैक्ट लाता है।
0: बिल्कुल,
1: ये
0: बहुत बिल्कुल।
1: राणू जी, इस पे मुझे राहत साहब का एक शेर याद आ गया कि मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ, मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। और अंतिम पंक्ति कि हूँ तो एक अखबार, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। तो अखबार आग लगा सकता है, इसलिए शब्दों को पाठकों तक, लोगों तक पहुंचाने के पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
2: बहुत सही कहा आपने, बहुत सारी बातें हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जवानों के बारे में बातचीत आकाशवाणी पर जरूर होनी चाहिए भाई, क्योंकि उनकी वजह से ही हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं और उनके बारे में बातचीत तो होनी ही चाहिए। तो आकाशवाणी से जवानों का एक खास रिश्ता है,
0: बिल्कुल
2: अलग अलग कार्यक्रम उनके लिए आते थे, तो जरूर से बताया रीना जी।
0: ये मुझे याद आ रहा है, जयमाला कार्यक्रम विशेष रूप से फौजी भाइयों के लिए होता रहा है और मुझे जैसी जानकारी मिली है कि नरगिस जी पहली कलाकार थी जिन्होंने जयमाला कार्यक्रम में शामिल हुई थी और उन्होंने प्रोग्राम प्रस्तुत किया था और वो प्रोग्राम हम लोगों ने अपने बचपन के दिनों में सुना भी था, तो मुझे याद
2: है सुना है।
0: तो और जयमाला कार्यक्रम इतना खूबसूरत हुआ करता था और इतना हिट कार्यक्रम था वो, उस कार्यक्रम के लिए लोग पहले से तय करके रखते थे कि हाँ उस वक्त ये जयमाला कार्यक्रम है, उस वक्त और कहीं कुछ नहीं करना है, बस एक जयमाला ही कार्यक्रम सुनना है। तो वो कार्यक्रम मुझे लग रहा है कि एक दोनों बातें हो गई थी उसमें, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी थी, इमोशनल भी था कि हाँ फौजी भाइयों के लिए जो कलाकार प्रस्तुत कर रहे थे, उनसे जो संवाद कर रहे थे, उनके लिए जो सरहद पर हमारे जो फौजी भाई बैठे हुए हैं और वो किस तरीके से क्या महसूस करेंगे, उनकी भावनाओं को समझते हुए कलाकार प्रस्तुत करते थे। और हमारे लिए, श्रोताओं के लिए एक बात है कि फौजी भाई क्या सोच रहे होंगे ये गाना सुनकर, वो क्या महसूस कर रहे होंगे, ऐसा हम लोग सोचते रहते थे।
2: भावनात्मक तौर पर अगर देखा जाए तो उसमें ये कार्यक्रम जाते थे तो किस तरीके की चीजें होती
1: नहीं, उसमें एक चीज यूं है कि एक तो देशभक्ति हमारी जागती थी और वो है भी, पैट्रियोटिक फीलिंग है, वो जगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हम उनसे रूबरू होते थे। और शनिवार के दिन खास तौर पे कोई जो स्पेशल

0: सेलिब्रिटी
1: स्पेशल
0: होते
1: हुआ
0: थे,
1: करता
0: अमिताभ बच्चन, चाहे कभी आमिर खान, कभी लता मंगेशकर जी, ये लोग उस कार्यक्रम को प्रस्तुत करती थी। 1 घंटे का मुझे याद है
2: था।
0: कि वो
2: बड़े पर्दे
0: कार्यक्रम,
2: के जो नायक होते थे
0: हाँ,
2: वो
0: हाँ,
2: असली
0: हाँ,
2: नायकों से
0: हाँ,
2: मिलते
0: वो
2: थे।
0: एक सेल्यूलाइट के सितारे भी हो
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो ये बहुत भावनात्मक,
1: बहुत सुंदर कार्यक्रम था वो, और बहुत आकाशवाणी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम था वो।
2: कार्यक्रमों पे जब आ रहे हैं तो नाटकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है आकाशवाणी पे। मतलब किसी दृश्य को देखकर आप भावना को समझ पाना वो अलग चीज होती है, लेकिन जब आप आवाज के द्वारा किसी घटनाक्रम को समझ रहे हैं या फिर उसके भाव आपके अंदर समाहित हो रहे हैं, आपके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लग रही है, आपके अंदर खुशी जागृत हो रही है, ये हमने आकाशवाणी से सीखा। तो ये नाटकों का जो रोल है वो कहाँ है?
0: मुझे मुझे जो याद है, स्मरण है, हवा महल कार्यक्रम
2: जी, तो मैं इसी के बारे में बातचीत
0: हवा महल में प्रश्न। मैं एक पुराने जो निदेशक बाद में बने उनको सुन रहा था, वो कहेगा कि अब तो बड़ी सहजता है, आप कहीं से कोई साउंड इफेक्ट ले आते हैं। लेकिन मुझे उन्होंने बताया कि मुझे एक रात का सीन नाटक में देना था, तो हम लोग रात में रिकॉर्डर लेके झिंगुर की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए गए, कई दिनों तक गए। अब जैसे मुझे बैल की घंटी की आवाज होनी करनी होती थी रिकॉर्ड, तो हम बैलगाड़ी पे बैठते थे रिकॉर्डर लेके, और तब जाके रिकॉर्ड करके वो नाटक बनता था। इतना श्रम करना पड़ता था नाटक को तैयार करने के लिए, तब वो श्रोताओं तक वो नाटक पहुंचता था। अभी तो बहुत सारी सहजताएं आ गई हैं, लेकिन आकाशवाणी कितनी चुनौतियों से, संघर्ष से गुजर के इस मुकाम तक पहुंचा, और अभी भी इसका वजूद कायम है। वो हम भटक गए हैं, आकाशवाणी वहीं ठहरा हुआ है। आप लौटिए आकाशवाणी की ओर, तो उसी स्वरूप में मिलेगा।
1: युवाओं के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे हैं आकाशवाणी में, और मुझे लग रहा है, मैं तो खुद भी शामिल होती रही हूँ उस कार्यक्रम में। मेरी दीदी जो है वो मुझे याद है अपने कॉलेज के दिनों में, उनके कॉलेज में कि जो उनकी सहेलियाँ थी वो बहुत शौक से सुनती थी, क्योंकि वो दीदी जो है वो शामिल होती थी इसमें, अपनी कविताएं पढ़ती थी। तो युवा पीढ़ी को एक मौका दिया गया था इस कार्यक्रम के बहाने आकाशवाणी से जुड़ने का, और सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी जो प्रतिभा थी युवा पीढ़ी में, कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों को एक मौका दिया गया था कि आप अपनी कविताएं सुनाएं, कहानियां सुनाएं, जो भी आप कर सकते हैं इसमें, अपनी क्षमता, अपनी जो है प्रतिभा दिखाएं इसमें। तो युवावाणी बहुत पॉपुलर रहा है युवा पीढ़ी के बीच में, मुझे लग रहा है आकाशवाणी ने बहुत प्रतिभाओं को निखारा है।
2: युवाओं की बात की तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि बाल मंडली हमारे पटना से प्रसारित होता
1: बिल्कुल,
2: है, वो बच्चों को इतना
1: बच्चों
2: अच्छा अवसर प्रदान करता है कि छोटे छोटे बच्चे जो शायद अभी ठीक से स्कूल में कविताएं भी नहीं बोल पाते हैं, वो भी प्रयास करते हैं, चाहे वो अपनी तोतली जुबान में ही सब करें, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं कि हम भी कुछ बोल लें,
1: कोई कविता पढ़ दें। एक शौक रहा है बच्चों में आकाशवाणी को लेकर, जो क्रेज रहा है आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों के बहाने वो क्रेज क्रिएट किया था बच्चों में और युवाओं में।
2: अमलेंदु जी, मैंने लगभग सब वर्ग के बारे में बातचीत कर ली है, तो ऐसे में किसान भाई पीछे कैसे रह सकते हैं? और मुझे याद है कि जब आपसे चर्चा हो रही थी तो आप गांव में किस तरीके से बातें बदल रही है, भाषा में किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है, वो आपने मुझसे थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, वो आप जरूर बताएं।
0: हाँ, ये देखिए भाषाई उपनिवेशवाद तो है और रहेगा भी, और अब जैसे हमारे यहाँ मैथिली में हम लोग बोलते हैं कि तनी कात भौ का चल, कात मतलब किनारे। तो पहले जो घास काटने वाली महिलाएं, खेत से पगडंडियों से गुजरने वाली महिलाएं कहती थी कि हगे तनी कात भौ का चल, अब वही महिलाएं बोलती हैं तनी साइड भौ का चल, तो कात शब्द का गौण हो गया।
2: आकाशवाणी की बात आए और धुनों की बात ना आए, आवाजों की बात ना आए, तो वो कैसे हो सकता है? तो संगीत एक ऐसा शब्द रहा है जिसके बारे में जितनी भी बातें की जाए शायद ये आधे घंटे बहुत बहुत ही कम पड़ेंगे, हम शायद एक दिन
0: बहुत,
2: दो
0: बहुत
2: दिन 10 दिन भी लगा ले तो शायद कम पड़ेगा, लेकिन संगीत से यादें बहुत ज्यादा है। तो मैं सवाल इस पर नहीं पूछूंगी, लेकिन आपकी यादों में संगीत और आकाशवाणी का क्या साथ रहा है, वो उस पर बात जरूरी है।
1: बहुत सुंदर सवाल कहा, सुरीला सवाल है ये। और ये कहिए कि आकाशवाणी की शुरुआत तो हुई होती थी एक सिग्नेचर ट्यून से, तो शुरुआत तो उस धुन से हो रही है। उसके बाद होता यह था कि पहले आज भी भूले बिसरे गीत होते हैं जो हिंदी सिनेमा के जो 50 के दशक के हों और उसके पहले के दशक के भी जो गाने हों वो बजते हैं भूले बिसरे गीत में। लेकिन मुझे याद है कि

0: उन गीतों के बहाने हमारी पीढ़ी ने, और या कहें कि आम श्रोताओं ने, हिंदी सिनेमा के जितनी खूबसूरत आवाज़, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, कलाकार, कंपोजर्स, सब हर किसी को सुना और समझा। और मुझे, मैं फख्र है ये कहने में कि मैंने उस पीढ़ी के जितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, जैसे अभी के डायरेक्ट म्यूज़िक डायरेक्टर को तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन उस गानों के बहाने से उस पीढ़ी के जितने कलाकार थे, उन कलाकारों को और म्यूज़िक डायरेक्टर को, जो सिंगर थे वो और म्यूज़िक डायरेक्टर, दोनों को हम जान समझ रहे हैं। ये अच्छी बात रही
1: ना जी कि हेलो फरमाइश एक कार्यक्रम अपने यहाँ आता था, भूले बिसरे गीत। मैंने एक बार सुना, लता मंगेशकर जी अपने इंटरव्यू में कह रही थी कि मैं उसमें चिट्ठी भेजती थी और मैं इंतजार करती थी कि ये गाना लता मंगेशकर ने भेजा है, वो सुनती थी घर में। तो हेलो फरमाइश जो कमल शर्मा
2: जी
1: प्रस्तुत किया करते थे, वो सुनता ही सुनता था मैं।
2: परिचर्चा अब समाप्ति की ओर है और चाहे हम कितनी भी बातें कर ले, वो बहुत कम होने वाली, क्योंकि ये विषय ही इतना खास है और हमारे जहन से इतना जुड़ा हुआ है ये विषय कि हम इसके बारे में बातचीत करते रह जाएंगे। लेकिन चलते चलते बस एक छोटा सवाल आप दोनों से, और कम शब्दों में, क्योंकि हमारा समय जो वो समाप्त हो चुका है। इस डिजिटल युग में जहाँ इतनी होड़ मची हुई है अपने आप को साबित करने में, ऐसे में आकाशवाणी को रीना जी आप कहाँ देखती हैं?
0: आकाशवाणी पहले भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत बहुआयामी है। इसका इतना विस्तार है, इतने विषयों को लेकर चलता है और समाज की इतनी पीढ़ी को लेकर चल रहा है कि इसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं हो सकता है। तो मैं ये मानती ही नहीं हूँ कि इसको कभी रिप्लेस किया जा सकता है।
1: नहीं, मैं मुझे तो एक गाना याद आ रहा है कि

0: सफर,
1: ये रेडियो के लिए मैं कह रहा हूँ, ये मेरा हम सफर रहा है
0: जी। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये हम सफर है और हम इसके साथ ही हमेशा ही बने रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज की परिचर्चा की हम समाप्ति करते हैं। रीना जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
0: अमलेंदु जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, कुछ नए अतिथियों के साथ। तब तक के लिए रानू सिंह को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आप सुनेंगे फिल्म संगीत इस छोटे से विराम के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं जया। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म दुश्मन के इस गीत के साथ लता मंगेशकर की आवाज़।

0: अच्छा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया, चलो घर चले।
1: नहीं मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

अब आपको सुनवा रहे हैं सलमा आगा की आवाज में फिल्म पति पत्नी और तवायफ का ये गीत।

0: आकाशवाणी पटना से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुली नंबर 1 से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। सुनिए ये गीत।

जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और सुनिधि चौहान की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में।

इस गीत के साथ ही संपन्न हो रहा है फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार।

0: साथ में रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय

0: किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and developed export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life including education, health and employment.
3: The topic for the Governing Council meeting was Inclusive Human Development for Viksit Bharat 2047. And it was about details. The states talked about what they are doing. Inclusive Human Development covers all the 4 stages of life, from childhood to youth to working life to old age. A skilled population is the key to success.
2: A tripartite memorandum of understanding MOU was signed between the centre and the governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas along the Assam-Nagaland border. The MOU was signed in New Delhi in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Nagaland Chief Minister Nephew Rio. Speaking on the occasion, Mr.